फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: Vaishnavi. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोकेगे को, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरेना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन स्वामी विवेकानंद का कथन है, ज्ञान स्वयं के भीतर है, इंसान केवल उसका आविष्कार करता है। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में लीजिए, सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती। झरोका में लीजिए सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 307। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। इस प्रोग्राम का 10वां भाग आज आप सुनेंगे। कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भर ने, समय सुबह व शाम 6:45 से। सात बजे से लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम है राही प्यार के। त्रिवेणी का समय होगा 8 से और दोपहर 2 से। चित्रलोक 8:30 से और रात्रि 8:15 से आप सुनेंगे। आज के फनकार आज केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक महबूब खान पर। सुबह व रात्रि 9:30 से आप ये प्रोग्राम सुनेंगे। दस बजे पिटारा में आज के मेहमान कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत आज आप सुनेंगे। ग्यारह बजे से रंग तरंग, 12:05 से यादों की महफिल। एक बजे से लेकर आएंगे प्रोग्राम सुरीला सफर। 2:30 से सदाबहार नगमे में

दिन में 3 बजे से सखी सहेली सुनिएगा, चर्चा होगी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर। बाकी के विषय होंगे घर की सफाई, नोकझोंक या साझेदारी। कहानी पद्मश्री में जोधई बाई बेगा की कहानी आप सुनेंगे। मुझे कुछ कहना है में बस 5 मिनट बनाम घंटों की बातें। उपयोगी टिप्स में जब बनानी हो रेसिपी। चार बजे से हेलो फरमाइश, 5 बजे से छाया गीत। शाम 5:30 से आप सुनेंगे तराने नए पुराने। 6:35 से संध्या रंजन। शाम 7 बजे से लेकर आएंगे फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विवेक विजय तांबे से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आज आप सुनेंगे इस प्रोग्राम में। आठ बजे से सुनिए हवा महल में झलकी मुरादाबादी, लेखक और निर्देशक गुरमीत रामल मीत। 9 बजे से लेकर आएंगे प्रोग्राम आपके लिए। 10 बजे वक्त होगा छाया गीत का और 10:30 से प्रोग्राम ढलती जाए रात।

कर्ण फूल के कटकर गिरने से मंदोदरी सोच में पड़ गई थी। वो श्री राम के व्यापक स्वरूप और पराक्रम की कल्पना भली भांति कर सकती थी। शिव जिनके मान, ब्रह्मा बुद्धि, चंद्रमा मन और विष्णु चित्त हैं, उन्हीं जगदीश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया है। वो पति को ये सब कुछ समझाने की भरसक चेष्टा करती है, किंतु रावण उसकी बात हंसकर ये कहते हुए टाल देता है, सच ही कहते हैं कि नारी के हृदय में छल, भय, चंचलता, झूठ, अविवेक, अपवित्रता तथा निर्दयता का निवास होता है। मंदोदरी द्वारा वर्णित भगवान के विश्वरूप के तत्व तो स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, अतः उनसे भय कैसा हो। न हो, अपने कथन से वो उसकी प्रभुता की ही महिमा बखान रही है। रानी की गूढ़ बातें रावण के लिए विनोद का हेतु बन गईं। आमोद प्रमोद के क्षण बीत जाते हैं, सवेरा होता है। जिस प्रकार बादलों द्वारा बरसाया गया जीवनदायी जल पाकर भी बेंत फल फूल नहीं सकता, उसी प्रकार मंदोदरी समझ लेती है कि उसका पति काल के वश में हो गया है, उसकी मति मारी गई है। ऐसे में तो ब्रह्मा जैसा गुरु भी उन्हें ज्ञान नहीं दे सकता। इधर श्री राम की सभा में वृद्ध जांबवान ये परामर्श देते हैं कि अंगद को दूत के रूप में रावण की सभा में भेजा जाए।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में। डॉक्टर शकुंतला भरणे हमारे साथ हैं। शकुंतला जी,
2: हाँ जी।
1: किराना घराने की राग प्रस्तुति का जो एक तरीका है जिसे भावपूर्ण प्रस्तुति कहते हैं, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
2: कल ही हमने इसके बारे में थोड़ा सा
1: आलाप की चर्चा हुई थी।
2: जी जी। जब हम आलाप करते हैं
1: जी,
2: राग का जो प्राण है वो आलाप है, और इसमें स्वर में भी भाव रहता है।
1: जी,
2: ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्द में भाव रहता है, स्वर का भी एक स्वभाव रहता है, और हर एक राग के स्वर का एक अलग स्वभाव रहता है।
1: हाँ।
2: राग भाव को सर्वोच्च स्थान इधर शास्त्रीय संगीत में है, और किराना घराने में केवल राग गाना ही इसका उद्देश्य नहीं है, तो उसका भाव, उसका रस और उसका वातावरण, ये सब को श्रोता तक पहुंचाना यहाँ पे मुख्य लक्ष्य होता है। स्वर के माध्यम से हम हमारी भावाभिव्यक्ति
1: जी
2: दिखाते हैं, शब्दों से अधिक स्वरों के माध्यम से ये की जाती है। शब्द तो जरूरी है इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं।
1: हाँ।
2: लेकिन स्वर जो है, स्वर में जो प्राण है, स्वर में जो भाव है, वो भाव प्रत्येक स्वर में संवेदनशीलता और माधुर्य यहाँ पे झलकता रहता है। विलंबित लय का सहारा हम लेते हैं इसीलिए।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक एक विस्तार होने से प्रत्येक स्वर को हम ठहराव करते हैं। वो ठहराव मिलने से क्या होता है, राग का भाव एकदम स्वाभाविक रूप से उभर कर आता है।
1: अच्छा।
2: और एक गाना जो है उसकी गहराई समझ में आती है क्या है।
1: तो किस राग की बंदिश से आप इसे स्पष्ट करना चाहेंगी?
2: हम तो गोरख कल्याण सुनाएंगे आपको।
1: क्या बात है,
2: लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा और कुछ बोलना है इसके बारे में।
1: जी जी जी, बिल्कुल।
2: स्वरों के बीच कोमल मींड तथा श्रुतियों का सूक्ष्म प्रयोग इस भावपूर्ण अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावशाली बनाता है। राग का विस्तार धीरे धीरे और संतुलित ऐसे गाके किया जाता है जिससे श्रोता राग के भाव में सहज रूप से डूब सके। किराना घराने की गायकी श्रोता के मन को सीधे स्पर्श करती है। इसकी प्रस्तुति केवल सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है। तानों से अधिक स्वर सौंदर्य पर बल, जहां अनेक घरानों में जटिल जटिल तानों का अधिक महत्व होता है,
1: जी
2: वही किराना घराने में जो स्वर है उसकी शुद्धता है, मधुरता है और भाव अभिव्यक्ति है, उसे प्राथमिकता दी जाती है।
1: अच्छा।
2: एकदम छोटे छोटे आलाप, एकदम सिंपल आलाप, लेकिन उससे इतना स्वर का गुंजन होता है, इतना उसको हम गा गा के उसकी गोलाई इतनी अच्छी करती है कि एक गान सुनने को मन करता है।
1: क्या बात।
2: चलो,
1: तो हमारे श्रोताओं को इंतजार है राग गोरख कल्याण की बंदिश का।

0: वाह वाह, बहुत ही सुंदर।
1: अभी तो गोरख कल्याण आपने सुना
0: जी, जी
1: लेकिन हमेशा बोलती हूँ मुझे ऐसा कंप्लीट नहीं लगता है, क्योंकि हमें भी कुछ रह गया है क्या, ऐसा लगता है कलाकार के नाते। अगर आप सुनते हैं माणिक वर्मा का स्वर
0: जी,
1: भावनिक स्पर्श अथवा भावपूर्ण गाना, परिपूर्ण गायिका इसे हम कहते हैं।
0: अच्छा,
1: ये माणिक वर्मा है, एकदम घरंदाज मुलायम स्वर लगाने वाली, अत्यंत सौंदर्यपूर्ण गायकी दिखाने वाली गायिका। उन्होंने गाया हुआ एक सुंदर राग है श्याम कल्याण,
0: जी,
1: और ये राग सुनकर ही आपको पता चलेगा कि आलाप चीज क्या होती है, राग को कैसा आगे लेके जाना है।

0: श्याम कल्याण तो आपने सुन लिया
1: जी बिल्कुल। लॉरे से सुनते हुए एक गीत जो मन में गूंज रहा था, वो बहुत ही लोकप्रिय गीत है मुगले आजम फिल्म से, मोहे पनघट पे नंदलाल।
0: अरे वाह, लेकिन डायरेक्ट इसमें श्याम कल्याण नहीं मिलेगा हमको, श्याम कल्याण की कुछ छटा हमें ये गाने में मिलती है। वैसे तो फिल्मी गीत ऐसे ही रहते हैं, प्योरिटी नहीं रहती है, फिर भी राग की छटा रहती है।
1: तो सुनते हैं ये गीत।
0: हाँ

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने 20,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख मार्गों पर लाइन क्षमता बढ़ाना, परिचालन दक्षता में सुधार करना और भीड़भाड़ कम करना है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 10,783 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को कवर करेंगी। इसके साथ ही मौजूदा रेलवे नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर का विस्तार होगा। लगभग 1,021 करोड़ रुपए की लागत वाली अन्य 5 परियोजनाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों को कवर करेगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार ने लगभग 11,000 किलोमीटर लंबे सभी 7 उच्च घनत्व वाले रेलवे कॉरिडोर को चौगुना करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी पहल के अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ये अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्त करने संबंधी कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्त करने संबंधी आदेश पारित किए गए। मंगलवार को भी MCD ने कार्रवाई करते हुए 17 संपत्तियों को ध्वस्त किया और 5 अन्य संपत्तियों को सील किया था। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उनकी इस यात्रा के दौरान सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ चल रहे सहयोग की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही विकास और सामुदायिक पहलों पर सहयोग की संभावनाओं का भी पता चलेगा। आगा खान विकास नेटवर्क के अध्यक्ष प्रिंस रहीम आगा खान उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन के निमंत्रण पर इस महीने की 15 तारीख तक भारत दौरे पर हैं। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे पिछले 3 दिनों से पड़ रहा भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। शुक्रवार और शनिवार के लिए 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ने आज से कल सुबह तक तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय इलाकों में ऊंची लहरों और समुद्र के कटाव को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका ओपन टेनिस में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के लिए 10,783 करोड़ रुपए की 3 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर अवैध शराब हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए। संभागायुक्त और आईजी भी बदले गए। न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। आज मध्य प्रदेश के 30वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। और प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार नहीं, शुक्रवार तक हल्की बौछारों की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश समेत 5 राज्यों को रेलवे का बड़ा तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 10,783 करोड़ रुपए की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 656 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। इस फैसले के तहत एमपी में कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन का निर्माण होगा, जिससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सागर में हुई घटना के पीड़ितों और बीमार लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और प्रशासन के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने ऐसे मामलों में कड़े कानून बनाए हैं जिनमें हत्या के आरोप से लेकर उम्र कैद और मौत की सजा तक के प्रावधान है।
1: भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें कानून बनाया कि अगर इसमें 49 का और बाकी 304 जोड़ते हुए इसमें हत्या से लगा करके आजम कारावास और फांसी तक की सजा देने का प्रावधान है, जो इस प्रकार की घटना में लिप्त है, हमने प्रशासन को फ्री हैंड दिया कि वो इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करे।
0: मुख्यमंत्री ने सागर में अवैध शराब से मृत्यु के मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्री दिलीप कुमार ने सागर संभाग के आयुक्त पद की कमान संभाल ली है। वहीं श्री इरशाद वली को सागर पुलिस रेंज का नया पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में 9वीं आसियान भारत कृषि और वानिकी मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं और दोनों पक्षों की किसानों की छोटी जोत, महंगी मशीनरी, बदलते मौसम और बाजार तक पहुंच जैसी चुनौतियां समान हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान, नवाचार और किसानों के अनुभव के जरिए इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।
2: हमारी सभ्यता है अपनी करता हमें अपना समझी थी, हमारी समाज किसी चुनौतियां हमें साफ काम करने के कारण थे और विज्ञान नवाचार तथा किसानों का अनुभव हमें समाधान दे। आइए इस बैठक से संदेश क्या है कि भारत और आसियान खाद्य सुरक्षा, किसान समृद्धि, जलवायु लचीलापन और प्रकृति के संरक्षण के लिए साथ खड़े हैं। विश्वास है कि हमारी चर्चा से ठोस मापने योग्य और किसान केंद्रित परिणाम निकलेंगे।
0: उज्जैन नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण की जद में आए प्राचीन खड़े हनुमान मंदिर की मूर्ति को सुरक्षित स्थानांतरित करने के लिए आईआईटी इंदौर की विशेषज्ञ टीम से मदद मांगी है। कंठाल चौराहा से छतरी चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिए पिछले 6 दिनों से मूर्ति हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिल सकी। आईआईटी इंदौर की टीम ने बुधवार को आधुनिक उपकरणों से मूर्ति की गहराई और आसपास की मिट्टी की जांच की। बेसाल्ट पत्थर से बनी इस कालीन मूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए हटाने की संभावना विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी। उज्जैन जिला प्रशासन ने कहा है कि श्रद्धालुओं की भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा और मंदिर या प्रतिमा को बिना सहमति के दूसरी जगह स्थापित नहीं किया जाएगा। तेंदुआ शिकार और तस्करी मामले में फरार मुख्य आरोपी को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर याचिका न्यायालय ने निरस्त करते हुए आरोपी को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अब तक हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली के 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों से तेंदुआ के अवैध 6 लेग होल्ड ट्रैप और 1 चाकू जब्त किया गया है। जांच में शिवपुर और मुरैना के चीता लैंडस्केप में 10 तेंदुओं के शिकार के साक्ष्य मिले हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे ने कल भोपाल पहुंचकर लोक भवन में राज्यपाल बंगूभाई पटेल से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। न्यायमूर्ति कोगजे मध्य प्रदेश के 30वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। वे आज 10 सितंबर को आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे। वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रुसिया का स्थान लेंगे। इससे पहले न्यायमूर्ति कोगजे गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नकली और अमानक बीज के खिलाफ कड़ा कानून लाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज देश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रस्तावित सीड एक्ट पर उनके सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज मिले और नकली बीज बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बालाघाट के बैहर विकासखंड के बैगा जनजाति बाहुल्य ग्राम पाथरी में संभागायुक्त निरंजय सिंह ने कल रात चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा पोषण वनाधिकार पट्टा पेयजल रोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने के निर्देश दिए। प्रदेश में मॉनसून फिलहाल कमजोर है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिनों तक कहीं भी भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। शुक्रवार तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसका असर शनिवार से प्रदेश में दिखाई दे सकता है। शनिवार को छतरपुर पन्ना दमोह कटनी में भारी बारिश का अनुमान है। प्रदेश में गेम डेवलपमेंट की नई प्रतिभाओं को मंच देने के लिए एमपी गेम उड़ान की शुरुआत होगी। भोपाल ग्वालियर इंदौर में 24 से 26 सितंबर तक 3 दिवसीय गेम जोन आयोजित किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में वाणिज्यिक कर विभाग की संभागीय संयुक्त आयुक्त मिकी अग्रवाल ने नागरिकों से कर चोरी और कर संबंधी अनियमितताओं की सूचना विभाग को देने की अपील की है। अशोकनगर जिले में जीवन रक्षक पुरस्कार दिए जाने के लिए प्रतिभागियों का चयन किए जाने के निर्देश गृह विभाग ने दिए हैं। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन और पंजीयन 2026 योजना के तहत आगर मालवा जिले का चयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है। कटनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रेमनगर बस्ती में निर्मित 102 आवासों का पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन किया गया। झाबुआ जिले में सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के 280 पदों पर भर्ती के लिए विकासखंडवार शिविर आयोजित किए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जिले के सभी 6 विकासखंडों में होगी। धार जिला मुख्यालय पर उदय रंजन क्लब मैदान में द्वितीय जिला ओपन स्कूल पिकल बॉल टूर्नामेंट 2026 का शुभारंभ कलेक्टर राजीव रंजन मीणा द्वारा किया गया। निंडोरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बूंदर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडला में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को अध्यापन कराने वाले शिक्षकों का 6 दिवसीय जिला स्तरीय अकादमिक प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। ग्वालियर जिले में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश यादव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: उस्ताद आमिर खान की आवाज़ में ये पेशकश अभी आप सुन रहे थे बेजू बावरा फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

0: गीता दत्त को अभी आप सुन रहे थे इस गीत में बाजी फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से। नसीब इंसान का। मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत।

शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे रफू चक्कर फिल्म से। गुलशन बावरा ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम है राही प्यार के।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे हाथ की सफाई फिल्म से। गुलशन बावरा ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आपकी कसम फिल्म से। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, संगीत दिया आर डी बर्मन ने।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे प्रोग्राम हम है राही प्यार के विविध भारती से।

आशा भोसले और मनहर उदास की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे कागज की नाव फिल्म से। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम हम है राही प्यार के संपन्न होता है।

0: यह है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी योजनाओं को मंजूरी दी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए, राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा
0: समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए, राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफू आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास पे बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
6: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के

0: ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: आई एम मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
2: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $30 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे।
2: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
4: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने DNA किट, अर्भिकर्मक और DNA प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ चिले में और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में आठवीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने पांच सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में पांचवा स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधे उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से तीन महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है, वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस यह सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले पांच वनमानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मानसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।
8: Good morning. I'm over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an all-American men's singles semifinal at US Open in New York. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at a total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said, of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said, these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur and Jharsuguda, 4th line Katni to Pendra Road, 4th line and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The projects cover 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian railways by about 540 kilometers. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav said these routes include Arnakonam, to Reniguntla, third and fourth line, Whitefield to Bangarapet, third and fourth line, and doubling of Hosur to Omalur line. The approved multi-tracking projects will enhance connectivity to approximately 2,100 villages having a population of about 52 lakhs.
9: Secunderabad to Kazipet, if you look at it, it basically connects one major corridor which is towards Vijayawada and another corridor which is towards Mumbai. These two corridors get connected by this project. Already from Wadi to Secunderabad, work is going on. It has been approved earlier. And now from Hyderabad to Secunderabad to Kazipet. So the two major corridors where the connection points are Kazipet and Wadi, in between there is Secunderabad. These two corridors get connected by a quadrupled, by a four-lining corridor. So this makes a huge traffic interchange can happen between these two corridors, and many trains which have to go from east to west or from south to east or from south to west, they can all use this corridor for their connectivity.
8: Minister Vaishnav informed that the government has decided to four-lining or quadrupling of all the seven high-density railway corridors. He said these routes are Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route.
9: Railway ke saat high density corridors.
10: The seven high density railway corridors, along with several other corridors that are expected to carry significant traffic in the future, are being upgraded to four line. This also includes the Golden Quadrilateral, Delhi to Mumbai, Mumbai to Chennai, Chennai to Kolkata, and Kolkata to Mumbai routes. In addition, its two diagonals, the Delhi to Chennai and Mumbai to Chennai routes, are also being quadrupled, along with the Delhi to Guwahati corridor.
8: Prime Minister Narendra Modi has said that the cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the five railway projects worth over 10,000 crore rupees will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. The Prime Minister also said that the cabinet decision pertaining to three multi-tracking projects worth over 10,500 crore will add additional railway network and improve connectivity across Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha and West Bengal. He added that it will also encourage tourism, especially heritage and wildlife related tourism, and lower logistics costs. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. The minister also stressed the need for easier access to credit, markets and predictable rules of business to leverage growth and opportunities for women-led enterprises. He was addressing the BRICS WBA Women-Led Development Conference in New Delhi. Mr. Goyal said India is focused on empowering women financially, socially and through education, skills and an improved quality of life with the objective of making women drivers of the country's growth. Highlighting women's financial inclusion, Mr. Goyal noted that India has nearly 300 million women bank account holders and provides collateral free loans to women seeking to start their own work, including those without a credit history.
1: 100 million women in rural India, in the villages, are members of 9 million self-help groups who get together to experiment, to work on an idea. Women who earn about 100,000 Indian rupees, which is probably barely $1,000, but which means a lot for a woman who didn't earn anything until then, has now exceeded about 30 million, whose personal income is over 100,000 Indian rupees. And we hope to continue to expand both the number and the amount. We call them Lakhpati Didis. Lakhpati as in a person with 100,000 rupees, and Didi is a sister.
8: Today is the third day of the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the GFF on Tuesday. We have more from a correspondent.
3: On the third day of the Global FinTech Fest in Mumbai, various sessions on agentic AI, tokenization and quantum technology have been organized. Union Minister Jyotiraditya Sindhia will address a session titled Connect India, Empowered Finance, Building Trusted Digital Infrastructure for the AI Economy. RBI Governor Sanjay Malhotra will address a session titled Shaping the Next Decade of Finance, Technology, Trust and Innovation. SEBI Chairman Tuhin Kant Pandey, former

0: on the MV June Aster as it neared its destination at the tourist hotspot of Coron in Palawan province. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
1: Thank you, Abhishek. Defense Minister Rajnath Singh's meeting with the Sri Lankan president in Colombo is noticed prominently by the dailies. Hindustan Times quotes the Sri Lankan president Anura Kumara Dissanayake as saying won't allow our soil to be used for anti-India activities. Delhi turns into a diplomatic fortress as BRICS leaders arrive, reports the Pioneer. Following the tragic Satyaniketan tragedy in Delhi, the Asian Age writes, Delhi surveys 1,200 PGs, launches big crackdown. In another story, the Asian Age says, BJP to mark Prime Minister's 25 years in service with birthday outreach. And finally, century on, Oxford set to return Naga ancestral remains. Well, the Tribune reports that 39 Naga ancestral skulls, some taken more than a century ago during British colonial rule, are to be brought home from Oxford to Nagaland. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Dina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves Railways 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th flight specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's single semifinal at the US Open in New York. And with that, we are in the morning news. Have a nice day.
2: Medium wave 188.32 meters. यानी 1593 किलोहर्ट्ज के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग
3: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार श्रोताओं हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था इसका सही जवाब है वीर गुलाब सिंह लोधी और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं गुरुग्राम से अरुण सिरोही और छपरा बिहार से प्रीतम चंद्र श्रीवास्तव आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत-बहुत बधाई हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र
4: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल
5: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन
4: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
5: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायुसेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ
4: शौर्य स्मारक भोपाल समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं ध्यान रहे बुधवार

समय के निरंतर प्रवाह में तारीखें बीत जाती हैं, पीढ़ियां बदलती जाती हैं, लेकिन बीते समय के गलियारों में उन कदमों की आहट सुनाई देती रहती है जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना, जिनका हर कदम देश के लिए बढ़ा। भारतीय स्वाधीनता इतिहास के गलियारों में ऐसे अनगिनत कदमों की गूंज सुनाई देती है। ये आहट उन नौजवानों की है जिन्होंने गुलामी के अंधेरों के बीच भी आजादी के सूरज का स्वप्न देखा, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के भाग्य में स्वाधीनता का सौभाग्य लिखा और अपनी सांसें देश के नाम कर दी। ऐसे ही एक अमर बलिदानी है शहीद बूटा सिंह। अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने के लिए देश के भीतर और बाहर कई आंदोलन चलाए गए, लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में शुरू हुए गदर आंदोलन का स्थान इन सबसे अलग और अनूठा है। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य विदेशी धरती से भारत में क्रांति की अलख जगाना और ब्रिटिश भारतीय सेना की बैरकों के भीतर तैनात भारतीय सैनिकों के माध्यम से एक व्यापक सैन्य संघर्ष आयोजित करना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1915 में गदर पार्टी द्वारा बुना गया सैन्य संघर्ष का तानाबाना इतना व्यापक था कि इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला कर रख दी थी। इस योजना में ब्रिटिश भारतीय सेना की 23वीं कैवलरी के सैनिक भी शामिल थे। इसी रेजिमेंट के घुड़सवार सैनिक थे बूटा सिंह। बूटा सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर जिले के कसैल नामक गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम चंचल सिंह था। कसैल और उसके आसपास का क्षेत्र शुरू से ही अपनी देशभक्ति और धर्म निष्ठा के लिए जाना जाता था। खेती किसानी के बीच ऐसे ही वातावरण में उनकी परवरिश हुई। इस तरह बूटा सिंह को बचपन से ही धार्मिक संस्कार, ईमानदारी और मातृभूमि के प्रति गहरी निष्ठा अपने परिवार से विरासत में मिली।

बूटा सिंह की आरंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। उस समय पंजाब में ग्रामीण युवा आजीविका के लिए अक्सर सेना में भर्ती हुआ करते थे। बूटा सिंह शारीरिक रूप से बलिष्ठ, अनुशासित और अत्यंत साहसी थे, इसलिए युवावस्था में प्रवेश करते ही वो ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए। अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर बूटा सिंह 23वीं कैवलरी में एक सैनिक के रूप में नियुक्त हो गए। 23वीं कैवलरी ब्रिटिश भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण टुकड़ी थी, जिसे एक प्रसिद्ध घुड़सवार रेजिमेंट के रूप में जाना जाता था। इस रेजिमेंट में पंजाब के वीर जवानों की बड़ी संख्या थी। एक सैनिक के रूप में बूटा सिंह अत्यंत अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और अपने साथी सैनिकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे, लेकिन वर्दी पहनने के बावजूद उनके सीने में भारत माता की गुलामी की टीस हमेशा बनी रहती थी। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को यूरोपीय और एशियाई मोर्चों पर अपनी तरफ से लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। इसी समय पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में अंग्रेजों के शोषण और उनकी दमनकारी नीतियों के कारण असंतोष अपने चरम पर था। इन परिस्थितियों ने बूटा सिंह जैसे संवेदनशील सैनिकों के मन को झकझोर कर रख दिया था। विदेशों में रह रहे प्रवासी क्रांतिकारी भी उद्वेलित थे। परिणाम स्वरूप बाबा सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी गदर पार्टी के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दे रहे थे। गदर पार्टी का स्पष्ट मानना था कि जब तक ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक अंग्रेजों का साथ देना बंद नहीं करेंगे और जब तक अपनी बंदूकें अंग्रेजों की तरफ नहीं मोड़ देंगे, तब तक भारत की आजादी संभव नहीं है। इसी रणनीति के तहत गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारियों ने विभिन्न सैनिक छावनियों जैसे लाहौर, फिरोजपुर, मेरठ और नौगांव में तैनात भारतीय सैनिकों से गुप्त रूप से संपर्क साधना शुरू किया। क्रांतिकारी प्रेम सिंह गदर पार्टी के संगठनकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित नौगांव छावनी में तैनात 23वीं कैवलरी के सैनिकों से संपर्क स्थापित किया। प्रेम सिंह ने सैनिकों को गदर पार्टी के उद्देश्यों और अंग्रेजों की नीतियों के दुष्परिणामों से अवगत कराया। बूटा सिंह और उनके साथी सैनिकों के लिए ये एक निर्णायक मोड़ था। प्रेम सिंह के विचारों ने बूटा सिंह के भीतर देशभक्ति की ज्वाला को और अधिक प्रचंड कर दिया। उन्होंने अपनी आजीविका, भविष्य की सुरक्षा और जीवन की परवाह न करते हुए गदर आंदोलन से जुड़ने का संकल्प लिया। बूटा सिंह ने न केवल खुद को इस महायज्ञ से जोड़ा, बल्कि 23वीं कैवलरी के अपने अन्य साथी सैनिकों को भी इस गुप्त सैन्य संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस तरह 23वीं कैवलरी की नौगांव में तैनात टुकड़ी यूं तो बाहरी तौर पर अंग्रेजों की सेना नजर आ रही थी, लेकिन बूटा सिंह और उनके अनेक साथी जवान अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी का शंखनाद करने को तैयार हो चुके थे।

बूटा सिंह गदर आंदोलन से जुड़ चुके थे। अपने साथी सैनिकों के साथ वो गुप्त क्रांति गतिविधियों में सघन रूप से सक्रिय थे। इसी बीच गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को पूरे देश में सैन्य संघर्ष की योजना बनाई। योजना ये थी कि देश भर की विभिन्न छावनियों में भारतीय सैनिक अंग्रेज अफसरों को बंदी बना लेंगे या मार गिराएंगे तथा शस्त्रागारों पर कब्जा कर लेंगे और गदर पार्टी का झंडा लहराकर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे। इस व्यापक योजना हेतु सभी सैन्य छावनियों से संपर्क किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की नौगांव छावनी भी शामिल थी, जिसमें बूटा सिंह तैनात थे। इस विद्रोह को लेकर सैनिकों में बड़ा उत्साह था और तैयारी भी मजबूत थी, लेकिन किरपाल सिंह नामक एक गद्दार ने अंग्रेजों तक ये सूचना पहले ही पहुंचा दी और समय से पहले ही इस योजना का खुलासा हो गया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की और कई प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए। विद्रोह की योजना के उजागर हो जाने के बाद भी 23वीं कैवलरी के सैनिकों, विशेष रूप से बूटा सिंह का हौसला टूटा नहीं था। वो छावनी के भीतर रहकर सही समय का इंतजार करने लगे और गुप्त रूप से अपने पास विस्फोटक और हथियार इकट्ठा करते रहे। इस योजना की विफलता के बाद ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को लगने लगा था कि अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ऐसा था नहीं। मई सन 1915 में 23वीं कैवलरी की टुकड़ी को, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित नौगांव छावनी में तैनात थी, उसे यहां से हटाकर युद्ध के मोर्चे पर भेजने का फैसला किया गया। सैनिकों को रेलगाड़ी से रवाना किया गया। 13 मई सन 1915 की तारीख थी। सैनिकों को ले जा रही ट्रेन हरपालपुर स्टेशन पर रुकी। सैनिक अपना सामान ट्रेन के डिब्बे में व्यवस्थित कर रहे थे कि अचानक एक बक्सा नीचे गिर पड़ा। इस बक्से में गुप्त रूप से रखी गई विस्फोटक सामग्री, बम और हथियार रखे हुए थे। बक्सा गिरते ही रेलवे स्टेशन में प्रचंड विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि पूरे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जब पूरे सामान की तलाशी ली गई तो अंग्रेजों के होश उड़ गए। बक्से के भीतर से बम बनाने की सामग्री और हथियार तो मिले ही, गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित क्रांतिकारी साहित्य, पर्चे और गुप्त योजना के दस्तावेज भी बरामद हुए। मध्य प्रदेश के हरपालपुर स्टेशन का ये विस्फोट ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। इस घटना से अंग्रेज ये समझ गए थे कि ये सैनिक सामान्य सैनिक नहीं है, बल्कि ये गदर पार्टी के उस गुप्त संगठन का हिस्सा है जो ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए सेना के भीतर काम कर रहा था। अंग्रेजों ने हरपालपुर स्टेशन और नौगांव छावनी को घेर लिया। गहन जांच शुरू हुई और संदेह तथा साक्ष्यों के आधार पर 18 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों में बूटा सिंह मुख्य रूप से शामिल थे, क्योंकि वो छावनी में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। इन 18 सैनिकों के विरुद्ध शिमला के पास स्थित डगशाई सैन्य छावनी में कोर्ट मार्शल किया गया और एक तरफा फैसला सुना दिया गया। 12 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई और शेष सैनिकों को आजीवन कारावास की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। मृत्यु दंड पाने वाले 12 सैनिकों में बूटा सिंह का नाम प्रमुखता से शामिल था। बूटा सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों को अंबाला सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया। 3 सितंबर सन 1915 को बूटा सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। सबसे मार्मिक तथ्य ये है कि उनके परिवार के सदस्यों को उनकी फांसी की सूचना तक नहीं दी गई। इस तरह भारत माता के एक सच्चे सपूत ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है

watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

थ्री इडियट्स इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सूरज जगन शर्मन जोशी की आवाजों में स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा शांतनु मैत्रेय का संगीत प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का

0: कॉकटेल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, प्रीतम का म्यूजिक।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: Rica ooh, stara, rica stara, rira, kikaru.

गुलराज सिंह की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था उंगली। मनोज यादव ने इसे लिखा, गुलराज सिंह का म्यूजिक। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

ये जवानी है दीवानी, ये था फिल्म का नाम। श्रीराम और शिल्पा राव की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रीतम ने संगीत दिया, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहाँ बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी कामयाब रही।

सन 1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

0: भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।
1: करती, करती, गाड़ी हमारी जाए पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद शाम को जिला प्रशासन हरकत में आया। जिला खनिज अधिकारी जगन सिंह भिड़े अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। विभाग ने मौके से करीब 5 डंपर रेत, 3 ट्रैक्टर जब्त किए। इसके अलावा नीमच शहर के ग्वालटोली स्थित श्री कृष्णा कांटे के सामने और उमापति महादेव मंदिर के पीछे भी अवैध रूप से परिवहन और भंडारण की जा रही रेत के खिलाफ कार्रवाई की है। आगामी रवि सीजन की बुआई से पहले जावत कृषि उपज मंडी ऊटी लहसुन की कारोबार का बड़ा केंद्र बन गई है। हाल ही में हुई बारिश और अच्छे मौसम के कारण किसान बड़ी संख्या में बीज के लिए अच्छी क्वालिटी का लहसुन खरीदने मंडी पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्थानीय किसानों के साथ साथ राजस्थान के बेगू और सिंगोली बेल्ट से भी किसान बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मंडी में हर दिन करीब 40 से 60 गाड़ियां और ट्रॉलियां पहुंच रही हैं। धार्मिक और सामाजिक आयोजनों की भी जिले में धूम रही। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बघाना उपनगर में अहीर यादव समाज ने वाहन रैली निकाली। रैली बघाना के अहीर मोहल्ले से शुरू हुई और शहर के कई रास्तों से गुजरी। जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर रैली का स्वागत किया। सबसे आगे डीजे की गाड़ियां चल रही थी, जिन पर भगवान श्री कृष्ण के भजन बज रहे थे। इन भजनों की धुन पर युवा और समाज के लोग नाचते गाते दिखाई दिए। वहीं सरवानिया महाराज की संदीपनी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी जन्माष्टमी का उत्सव एक दिन पहले ही उत्साह के साथ मनाया गया। ईद मिलादुन्नबी का पर्व भी श्रद्धा उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। जावद में 3 दिवसीय जश्न ईद मिलादुन्नबी कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्य जुलूस निकाला गया। मदरसे के प्रतिभावान बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। नीमच में सामाजिक सेवा से जुड़े कई कार्यक्रम भी हुए। कनावटी जिला जेल में रक्षाबंधन का पर्व भावुक माहौल में मनाया गया। जेल प्रशासन की विशेष व्यवस्था के तहत करीब 500 कैदियों ने अपनी बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाया। दूसरी ओर सिंगोली अंचल में श्री धाकड़ महासभा युवा संघ और टीम जीवनदाता के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। स्थानीय शासकीय डूब में आयोजित इस शिविर में 538 यूनिट रक्त संग्रह का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का मैदानी निरीक्षण भी जारी है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के सख्त निर्देशों के बाद अपर कलेक्टर BS कलेश ने जिला अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने OPD और इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया। उसके बाद पर्ची केंद्र, डिलीवरी वार्ड, SNCU और सामान्य वार्डों का जायजा लिया। धार्मिक आयोजनों की बात करें तो श्रावण मास के तीसरे सोमवार को नीमच के राजा श्री किलेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली गई। किलेश्वर मंदिर प्रांगण से शाम 4:30 बजे पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई सवारी 7 घंटे में 9 किलोमीटर का भ्रमण कर रात 12 बजे वापस मंदिर पहुंची। महाआरती और प्रसादी के साथ यात्रा का समापन हुआ। नया गांव में नागपंचमी के अवसर पर श्री खाकल देव महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा से पहले मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक किया गया। देवनारायण मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा नगर भ्रमण पर निकली। इसमें बग्गी में नागराज और देवनारायण जी की सवारियों के साथ KIpur की कश्मीरी ढोल और DJ शामिल थे। उधर स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर नीमच में पुलिस और RTO की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। वीर पार्क रोड स्थित अग्रवाल सन्स घी डीलर के ठिकाने पर छापे के दौरान श्री मूल ब्रांड का शुद्ध घी और गाय का घी मिला। टीम ने मौके पर मौजूद 179 लीटर और 302 किलोग्राम घी को सील किया, जिसकी कुल बाजार कीमत लगभग 2,32,000 रुपए आंकी गई। गुणवत्ता जांच के लिए कुल 8 सैंपल लिए गए। उन्हें परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ईदगाह हिल्स भोपाल भेजा गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख था दिनेश प्रजापति का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
2: भाषा में तो उस तरह से हमने नटखट्टू नाम का एक रेडियो कार्टून बनाया था और उसकी 2-3 कड़ियां प्रसारित हुई थी। तो इस तरह आकाशवाणी का माहौल जो है उसमें घुलने मिलने का अवसर मिला और ये सब साथ साथ ही चलता रहा सिलसिला। उसके बाद में फिर जब आगे चल के फिर ये महिला सभा में या युवाणी में तो रीजनल प्रसारण के लिए फिर नाटिकाएं मैंने लिखी और बस ये रुचि बढ़ती गई, सिलसिला चलता गया।
3: तो हम कह सकते हैं कि बहुत पहले से ही रेखाओं और आकृतियों में आपकी दिलचस्पी थी
2: जी,
3: लेखन और कार्टून के रूप में बाहर निकली।
2: बस बस यही समझ लीजिए। अब जैसे कार्टून में जो ऊपर कैप्शन लिखे होते हैं वो भी अपनी तरह का एक छोटा लेख ही होता है।
3: बिल्कुल, वो बहुत तो, कुछ गागर में सागर का काम होता है।
2: हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा
3: जी। तो कार्टूनिस्ट बनने के लिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किन किन बातों का होना जरूरी होता है, मतलब कौन से गुण होने चाहिए कार्टून बनाते वक्त एक कार्टूनिस्ट में।
2: सबसे पहले तो उसको जिसे हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, हास्य की समझ, वो जरूरी है कि हमारे आचरण में वो चीज आ जाए कि हम जब बात करें तो थोड़ा हंसें बोलें, या कोई अगर हंस भी रहा है या उसने हम पे कटाक्ष भी किया तो हम रोने ना लग जाएं या तुनक मिजाजी ना बताएं, बल्कि उस चीज को एक कहते हैं हेल्दी वे में लेना चाहिए, और उससे धीरे धीरे एक वो इंसान का एक लहजा विकसित होता है, स्टाइल बनती है कि किस तरह से हम किसी को चोट पहुंचाए बिना हम कार्टून बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हास्य की समझ, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, अपने आसपास की चीजों को देखना, अपने रीति रिवाजों को देखना, घटनाओं पर नजर रखना, तो ऑब्जर्वेशन, और फिर पढ़ना बहुत सारा कि पहले हमारे साहित्यकार क्या लिख गए हैं। क्योंकि हम जब कार्टून बनाते हैं उसमें खबरें तो ठीक है, हमें खबर मिल गई, ताजा खबर उस पे बनाना है, लेकिन जो एक सलीका होता है, जो सीमा होती है, उसके लिए हम साहित्य, जो हमारे पहले के लोग काम कर गए हैं अपने कथ्य से, अपनी भाषा से, उस सबका हमको एक समझ मिलती है और समावेश करते हैं कार्टून।
3: बहुत बहुत गहरी बात कह दी आपने देवेंद्र जी कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है और आसपास की घटनाओं पर।
2: बिल्कुल ठीक है।
3: तो सबसे पहला कार्टून आपने कौन सा बनाया था और वो दिमाग में कैसे आया?
2: सबसे पहला कार्टून मैंने बनाया, उसका मतलब किस्सा ये है कि पहले मैं दीवारों पे, दरवाजों पे, सब तरफ कार्टून्स बनाया करता था।
3: अच्छा।
2: क्योंकि छोटे थे
3: तो घर की दीवारें आपने खराब,
2: घर की दीवारें बहुत खराब करते थे, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर के बड़े थे माता पिता, वो लोग उसको बहुत ही खेल भावना से लेते थे, कभी नाराज नहीं हुए।
3: अच्छा।
2: उन्हें लगा कि चलो एक कला जो है वो जन्म ले रही है और विकसित हो रही है, दीवारों पर ही सही। तो ये सिलसिला चलता था और उन लोगों ने आगे बढ़ाया, लेकिन हमारे एक ट्यूटर थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम कब तक ये दीवारें खराब करोगे, तो कुछ कागज पे बना के और अखबारों तक पहुंचो, तो ये छपने का सिलसिला होगा। तो उन्होंने ऐसी राह बताई, तो फिर हम 14 वर्ष के थे तो पहुंच गए अखबार में, तो वहां संपादक जी ने भी सब देखा, कार्टून्स देखे, कविताएं देखी, तो बोले कि हम तुम्हारे बेटा कार्टून भी छापेंगे और आज से तुम बच्चों के स्तंभ के संपादक भी हुए।
3: क्या
2: तो
3: बात है?
2: मैंने पूछा कि संपादक क्या होता है? तो उन्होंने ये कहा कि जो रचनाएं आती हैं बॉक्स में इकट्ठी होती हैं, कविताएं, कहानियां, चुटकुले, उनको तुम्हें देखना है, और उन्हें बहुत ज्यादा अगर वो लंबे चौड़े हों तो उन्हें थोड़ा छोटा करना है, उनकी अशुद्धियां दूर करना है, और सामयिकता के हिसाब से कि जैसे दिवाली आ रही है तो ऐसा नहीं हो कि तुम होली की रचना रिलीज कर दो, तो वो करना है, और कार्टून्स भी हम तुम्हारे छापेंगे। इस तरह सिलसिला शुरू हुआ, और पहला कार्टून जो था, चूंकि इन दिनों करवा चौथ आ रही थी तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो मैंने बनाया कि एक व्यक्ति है वो घर में बैठा अखबार पढ़ रहा है, उस व्यक्ति के सिर पे बाल नहीं है।
3: अच्छा।
2: और उनकी जो पत्नी देवी है वो खिड़की के बाहर खड़ी देख रही है, हाथ में पूजा की थाली है और वो चंद्रमा ढूंढ रही है चांद की तरह। तो छोटा बच्चा एक आया और वो आके कहता है कि माँ माँ आप बाहर चांद कहाँ ढूंढ रही हो, वो तो हमारे घर में मौजूद है, उसका इशारा पिता के सिर की तरफ
3: जी,
2: था
3: जी।
2: ये इस तरह से कार्टून पहला बना था
3: जी। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपका पहला कार्टून इस रूप में आया। जब बात पहले कार्टून की चली है तो इस कार्टून का पहला गीत भी आपकी पसंद का सुन लेते हैं हम
2: जी।
3: बताइए
2: पहला गीत तकदीर फिल्म का, वो मुझे बहुत पसंद है, आइए बाहर को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें।
3: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो देवेंद्र जी आपने बताया कि 14 साल की उम्र में आप एक अखबार में संपादक के रूप में भी लग गए, बाल संपादक के रूप में, और आपने काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इस कला को आपने विकसित किया होगा जब आप एक बाल संपादक बन गए, बहुत सारी चीजों के संपर्क में आए, खुद भी आपने कार्टून बनाना लगातार बनाए रखा। तो इस कला शैली को विकसित होने में आपकी नजर में आपको कितना समय लगा?
1: विकसित होने में इसे समय की अवधि में इसलिए नहीं मान सकते कि ये विकास होना एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है हमेशा
0: जी।
1: हम नई चीजों को अपने में समाहित करते हैं कला में, और वो फिर हर दिन एक नई ताजगी, नयापन उसमें महसूस होता है। और वैसे शुरू के कुछ शायद एक आध साल ऐसे लगे होंगे जब काम करते करते लगा कि ये मेरी शैली हो सकती है, मैं इस तरह ही कार्टून बनाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसमें सब बात आ जाती है, प्रमुखता से किन पात्रों को उभारना है, बैकग्राउंड में क्या रखना है। और फिर मैं एक मेरी एक हमेशा कोशिश रहती है कि कार्टून का जो कोना कोना है उसमें से हास्य झलके, जाने कि एक गमला रखा है या कहीं ऊपर एक झाड़ फानूस भी है या कोने में एक पिल्ला बैठा हुआ है। तो ये सब
0: तो, चीजें पात्र बहुत कुछ कहते हैं
1: जी। हाँ,
0: जब
1: बिल्कुल,
0: हम इन कार्टून्स पर नजर डालते हैं तो
1: मतलब
0: वो जो पिल्ला बैठा हुआ है वो भी कुछ कह रहा ही होता
1: है। हाँ, कहता है कई बार उसे जो संवाद मान लो हम किसी बड़े से नहीं कहलवा सकते
0: जी, जी।
1: है ना, और उसको इनडायरेक्ट वे में कहलवाना है तो कहीं पिल्ला बोल देता है, कहीं ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया आती है वो बोल देती है।
0: बिल्कुल सही कहा
1: जी।
0: तो आप जब एक खाली कैनवास या कागज आपके सामने होता है तो हर दिन की अगर हम बात करें तो पहला विचार क्या आता है आपको?
1: कागज और कैनवास जब खाली होता है पहले तो विचार आता है, उसके बाद कागज आता है।
0: अच्छा।
1: और वैसे भी खाली कागज और कैनवास सहन नहीं होता, ऐसा लगता है कि अपने को बुला रहा है और कह रहा है कि आओ मुझ पर आप कुछ ना कुछ बनाओ और रंग से आप भर दो मुझे, ताकि मैं पाठकों के अंदर में जो है रंग उसकी सृष्टि करूं, बिखेरूं रंग को।
0: बहुत सुंदर जी जी जी। तो हर दिन आप एक कार्टून बना लेते हैं या हर दिन ये रचना होती है?
1: जी हाँ, हर दिन, क्योंकि ये समय के साथ चलना होता है। जैसे अगर आप अखबार में हैं, दैनिक अखबार में हैं तो रोज आपको बनाना है, और अगर आप पत्रिका में हैं, पाक्षिक पत्रिका में, तो इंसान थोड़ा सा सुस्त सा हो जाता है कि आराम से आज नहीं तो अपन फिर बना दें, 15 दिन नहीं तो निकलनी है।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा कुछ मिजाज इस तरह से डेवलप हुआ कि, और स्पीड भी ऐसी बनी कि खूब सारे कार्टून एक दिन में। तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो अखबार है उसमें जब मेरी एंट्री हुई तो वहाँ पर यही था कि जब शुरू शुरू में मैं गया तो एक पहला कार्टून बना कर दिया, संपादक जी खुश हुए कि हाँ इसको ले लेंगे। थोड़ी देर में हम दूसरा बना के फिर ले गए, वो बोले ठीक है इसे फलां पेज पे ले लेंगे। फिर पहुंच गए तो उन्होंने हंस के कहा, श्रीमान जिस गति से आप बना रहे हैं उस गति से हम नहीं छाप पाएंगे। तो
0: अच्छा।
1: आप थोड़ा आहिस्ता। तो मैंने कहा
0: मतलब आप इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार के साथ एक दिन में कार्टून?
1: जी हाँ जी हाँ, मेरा 17 कार्टून्स एक दिन में, इसका मतलब है हाईएस्ट जो का, हाँ,
0: 17 कार्टून आप एक दिन में बना,
1: एक दिन में बनाने का रिकॉर्ड है। मतलब कि वो भी बस तब हुआ था कि उस अखबार विशेष का जब दीपावली अंक आ रहा था उन लोगों ने कहा कि हमें अब जल्दी से अंक निकालना है क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। तो कल से शुरुआत, मैंने कहा आज से भी कर सकते हैं। तो उस दिन के जो अगले पन्ने का कार्टून, फिर एक जो साप्ताहिक मैडम मोहिनी आती थी, बड़ा पॉपुलर कार्टून कॉलम है वो, तो उसका स्ट्रिप उसकी तैयार की, फिर उसके बाद में अंतिम पत्र के साथ का कार्टून, फिर उसके बाद में राशि के 12 कार्टून, 12 सिंह राशि का हमने बना दिया। चपरासी आया, बजट लेके अंदर पहुंचा, मशीन पे जा रहा है, तब तक हमने कन्या राशि का बना दिया। इस तरह से ये सब कार्टून।
0: बहुत सुंदर। तो आपके विषय क्या रहते हैं इन कार्टून के, हर बार क्या विषय चुनते हैं आप?
1: विषय वही जो हमारे आसपास बिखरे होते हैं रोजाना के, जैसे खबरें अखबार की या जो बाहर की जो हम घटनाएं देखते हैं। हाँ, सामाजिक विषय होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, वही सब सारे विषय होते हैं। और बस वो पाठक को गुदगुदा दें, बस कोशिश यही रहती है कि बहुत ज्यादा दुरूह और जटिल ना हो।
0: हाँ।
1: और इतने भी सिंपलिसिटी उनमें ऐसे भी ना हो कि सड़क छाप नजर आए
0: जी,
1: वो चीज है।
0: मतलब चुटकुला भी ना लगे।
1: हाँ,
0: कि आप किसी जोक को सुना रहे हैं ना, ऐसा भी ना लगना चाहिए, जोक्स नहीं है, क्योंकि एक बारीक अंतर है जोक्स और कार्टून के मध्य।
1: कार्टून्स में बिल्कुल
0: कि कार्टून कला क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। तो कई बार ऐसा भी होता होगा देवेंद्र जी, आपने कहा कि आप एक दिन में 17 कार्टून्स बना लेते हैं या लगातार बहुत तेजी के साथ बनाते हैं, कभी ऐसा आया कि दिमाग खराब है या गुस्सा है या परेशान है और कोई विचार सूझ ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति कभी आई आपके सामने?
1: ऐसी आ सकती थी, लेकिन पता नहीं ईश्वर ने मुझे शाप देकर भेजा है, यानी कि घर में आप समझ लीजिए कि बुरी से बुरी दुर्घटना ऐसी कोई हुई हो।
0: हाँ।
1: जबकि हमारे यहाँ पर नानी हमारी नहीं रही, उस दौर में भी और कोई हो तो 13 दिन छुट्टी लेके बैठ जाए, लेकिन हम दूसरे दिन गए और फिर चूंकि अभी हंसी वाला मामला है तो पता नहीं कहाँ से कौन सी बत्ती जलती है और आप वही चीज बनाकर आते हैं और लोगों को मालूम भी नहीं रहता कि इनके परिवार में क्या हुआ है। जाके अपना काम करते हैं हंसी खुशी, क्योंकि वो काम है ईश्वर ने सौंपा है तो करना है, वो बात है। और
0: बहुत
1: उसको
0: बड़ी बात, यानी आप पूरी तरह से समर्पित हैं अपनी कला के प्रति।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: तो इस कार्टून की अगर हम बात करें, आज मानव जीवन में क्या उपयोगिता है, जब डिजिटल युग आ गया है, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, दुनिया भर के समाचार, दुनिया भर की खबरें और अनाप शनाप भरा हुआ है, जहाँ ऐसे में एक छोटा सा कार्टून जो एक अखबार के कोने में, पत्रिका के कोने में कहीं होता है बैठा हुआ, उसकी क्या उपयोगिता लगती है आपको?
1: कार्टून की उपयोगिता मंदाकिनी जी शुरू से बहुत रही है और आज के समय में तो उपयोगिता इसकी काफी, क्योंकि आज हर इंसान जिसे हम देखें वो अपने तनाव में, समस्याओं में घिरा हुआ है, उसको टेंशन है। ऐसे में अगर वो किसी कार्टून के टच में आता है तो उसके चेहरे पर जो एक हल्की सी मुस्कान आती है वो रिलैक्स हो जाता है, तो ये उस कार्टून की सफलता और उपयोगिता है। क्योंकि अगर वो हंस देता है तो उससे मतलब राहत तो मिलती है उसको, और अपने टेंशन से लड़ने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए उसको एक नई शक्ति मिलती है, ताजगी मिलती है, वो कार्टून की ही देन होती है।
0: और आज भी इसकी उपयोगिता
1: उपयोगिता इसकी बिल्कुल बिल्कुल बनी हुई, क्योंकि हम देखते हैं ना कि अगर हम हंस दिए तो माहौल कितना हल्का फुल्का हो जाता है, है ना, और नहीं हंसेंगे तो बोझिल हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हंसने की जो देन है, हासिक का जो उपहार है, ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है। हमने कभी वॉल्ट डिज्नी के कार्टून के अलावा किसी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखा या किसी चूहे को हंसते नहीं देखा
0: जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हास्य की बात चली है तो क्या कार्टून में हास्य अधिक होना चाहिए या व्यंग्य?
1: हाँ, ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है और अक्सर लोग इस अनुपात को नहीं कायम रख पाते हैं, लेकिन मैंने इसको एक अनुपात मैंने अपना तय कर रखा है कि उसमें व्यंग्य भी होना चाहिए और उसमें हास्य भी होना चाहिए, ताकि सभी को कुछ ना कुछ मसाला मिलता रहे। और फिर अपन कहते हैं ना कि कोई कड़वी बात भी हो तो उसको मीठी चाशनी में अगर लपेट कर प्रस्तुत करते हैं तो उसका असर अधिक होता है और उसका आनंद भी रहता है। तो कार्टून्स में भी यही किया जाता है, जैसे कि कोई समस्या है मान लीजिए, उसको अगर व्यंग के माध्यम से हम कहें तो वो कड़वा भी हो सकता है, वो क्रूर भी हो सकता है और उस शुष्क भी होता है वो, लेकिन अगर उसमें हास्य हमने डाला है तो फिर वो सरस हो जाएगा और बात रहेगी वही, लेकिन उसका कहने का एक तरीका बदल जाएगा, तो लोग हंसते हंसते उस चीज को ग्रहण करेंगे और सिस्टम सुधारने के लिए हमने जो सोचा है वो बात जहाँ जानी है वो पहुँच जाएगी।
0: बस बिल्कुल सही कहा आपने। और बड़ा गुदगुदाते हैं ये कार्टून।
1: हाँ,
0: तो एक दो अपने कार्टून के बारे में बताइए आप, की जहाँ आपको लगा हो कि मैंने इसमें हास्य और व्यंग का बहुत ही संतुलित प्रयोग किया है।
1: जी हाँ, जैसे हम सुनते हैं ना कि जो अक्सर देखा भी गया है कि किसी को कुर्सी मिल गई, मान लीजिए नेता को मिल गई, तो उस कुर्सी से उसको मोह हो जाता है, उसे सत्ता का मोह भी हम कहते हैं, प्रतीक में है कुर्सी, तो उस कुर्सी को मुश्किल से ही जब वो हासिल होती है तो छोड़ता भी इंसान मुश्किल से। इस पर मैंने एक कार्टून बनाया था कि एक नेता महोदय हैं, वो अपनी कुर्सी पर कस कर बैठे हुए हैं, उसके हैंडल वगैरह पकड़े हुए, इतने उनका नौकर आया कुर्सी झाड़ने के लिए कपड़ा लेकर, तो वो कह रहा है कि मालिक आप थोड़ा सा हट जाएं तो मैं कुर्सी को झाड़ दूं। तो नेताजी ने क्या किया, ये 3 फ्रेम्स में कार्टून, दूसरे फ्रेम में वो ऊपर उठ गए, कुर्सी के हत्थे उनने कस के पकड़ लिए हैंडल और पूरे ऊपर उठ गए हैं और कह रहे हैं कि लो भाई तुम कुर्सी झाड़ लो पर इसको छोड़ूंगा तुम्हें बिल्कुल नहीं। तो ये एक वृत्ति की तरह हमने संकेत भी दिया और हंसी हंसी में वो बात भी हो गई।
0: कह दी। तो चलिए अभी एक गीत आपकी पसंद का हम सुन लेते हैं।
1: हाँ, सागर फिल्म का गीत है जिसे SB बालासुब्रमण्यम ने गाया है, सच मेरे यार है बस वही प्यार है। हाँ।
0: बहुत सुंदर और गहरा गीत है, एक दार्शनिक गीत है, कमल हासन साहब पर्दे पर दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल
0: बहुत सुंदर।
2: सच

0: तो देवेंद्र जी आपके कार्टून्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत ही शानदार कार्टून्स है जिन्हें हम जब जब पढ़ते रहे हैं तो लगता है कि गुदगुदाहट होती ही है। कार्टून्स बनाते समय एक कार्टूनिस्ट को कैसा माहौल चाहिए होता है, मतलब वो किस तरह का माहौल पसंद करता है?
1: जैसे हर रचनाकार की पहली शर्त होती है रचना करने के लिए कि एकांत हो, शांति हो, वही कार्टून के वक्त भी बनाते वक्त भी मुझे यही लगता है कि वहाँ शोरगुल ना हो थोड़ा, ताकि कंसंट्रेशन हो सके। और उसके लिए बस मैंने सोचा हमेशा शांति तो महसूस नहीं होती, तो वहीं फिर आपकी विविध भारती काम आती है।
0: अच्छा, कैसे?
1: रेडियो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है मेरे पास में, वो बजता रहता है और उसमें जो संगीत की लहरियां निकलती हैं बस उसी परिधि में हमारा ध्यान होता है और बस आराम से कार्टून बन जाता है। और यही विधि जब मैं पढ़ाई करता था तब भी यही सब चलता था कि धीमे धीमे रेडियो बज रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पाठ याद कर रहे हैं। तो कार्टून के लिए भी एक तो संगीत हल्का हल्का मध्यम संगीत हो और मंदाकिनी जी की आवाज हो
0: और शुक्रिया।
1: और साथ में अगर चाय का गर्म प्याला मिल जाए
0: अरे वाह,
1: तो ये बहुत अच्छी बात है।
0: आपने बहुत ही क्लासिक तरीके से बात समझाई है। वाकई ये एक माहौल एक कलाकार को चाहिए होता है, चाहे वो लेखक है, चाहे कार्टूनिस्ट है, या वो सिंगर है, कोई भी कलाकार।
1: वो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, एक छोटी सी जगह में बैठ के अपना काम बस हो जाता है कंप्लीट बस।
0: तो क्या कार्टूनिस्ट के जरिए जब आप लोगों को हंसाते हैं तो आपको खुद भी क्या खुश मिजाज होना पड़ता है कार्टूनिस्ट को पहले?
1: बिल्कुल होना पड़ता है, उर्वर भूमि जो होगी उसी में तो फिर अच्छा पौधा खिलेगा, फूल खिलेगा। तो हंसना हंसाना तो बहुत जरूरी है, और बल्कि मुझे लगता है कि जब आइडिया हमने जब चित्रित कर लिया या आइडिया के टच में आए तो पहले हमारा खुश होना बहुत जरूरी है। अगर हमें लगता है कि हाँ हम खुल के हंस दिए, हमें रोम रोम पुलकित हो रहा है, तब लगता है कि ये अब वेल टेस्टेड हो गया और ये जाकर ये पाठकों को जरूर ये गुदगुदाएगा और बात जो हमारी कहना है वहां तक पहुंचेगी।
0: सबसे बड़ी बात
1: हाँ, ये बहुत जरूरी
0: मतलब
1: है।
0: दिमाग की

0: खिड़कियां खुली होनी चाहिए।
1: खुली होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, उसमें ये नाप तोल के मुस्कान वाला काम नहीं चलता है।
0: हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप किसी विधा पे काम करते हैं तो पहले खुद को उस विधा से जोड़ने के लिए वैसा बनना पड़ता है।
1: वैसा बनना पड़ता है, बिल्कुल जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। जो श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं उनमें बहुत लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो कार्टूनिस्ट हो, तो वो भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक कार्टूनिस्ट को खुद भी वैसा मिजाज रखना पड़ता है पहले। तो अपने कार्टून में जान फूंकने के लिए देवेंद्र जी आप किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं?
1: सबसे पहला तत्व तो है आइडिया, उसके बाद में कागज पर उसे उतारते हैं, वो पेंसिल की मदद से, पेंसिल, पेन, ब्रश, ये सब चीजें होती हैं, और उसके बाद में जब कार्टून मुकम्मल हो जाता है फिर उसे कंप्यूटर में ले जाकर वो ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वो आगे बढ़ता है। इस तरह से कार्टून ऐसे तैयार होता है, बस ये बेसिक तो यही है। बाकी जो कला जो है, अगर देखा जाए तो कला हाथ में होती है, किसी टूल्स में नहीं होती है, मतलब हर वक्त नहीं होते हैं जरूरी, लेकिन जब आप अखबार के लिए काम कर रहे हैं, मैगजीन्स के लिए कर रहे हैं, जब कर रहे हैं उस वक्त में, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि पेंसिल से शुरू हो गई यात्रा, ये कंप्यूटर पर खत्म होती है, ये चीज है।
0: तो आप तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह के विषयों पर कार्टून बनाते हैं, क्या कार्टूनों की कोई सीमा रेखा होती है जिसके अंदर ही एक कार्टूनिस्ट को काम करना होता है?
1: बिल्कुल होती है, और सीमा
0: थोड़ा हमें बताइए किस तरह की ये लाइन होती है, क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं।
1: हाँ, ये सीमा रेखा दरअसल वही होती है जो एक सभ्य मनुष्य को भी पालन करना चाहिए, वही कार्टून्स में भी है कि आप एक तो नैतिकता का ध्यान रखें, मानवता का रखें, और जो हम कहते हैं कि सब बराबर हैं, सारे जीव जंतु, सारे इंसान बराबर हैं, उन्हीं चीजों को लेकर मेंटेन करते हुए, और किसी पर हम मान लीजिए कि कटाक्ष भी करें तो हल्का फुल्का करें, हंसी के साथ, लेकिन ऐसा ना हो कि वो मामला तूल पकड़ ले। और हम कहते हैं ना कि जैसे हास परिहास वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का उपहास करना वो चीज बहुत बुरी है, तो कार्टून में इन चीजों से बचा जाता है, तो बचना चाहिए।
0: ये एक सीमा रेखा है।
1: हाँ, ये सीमा रेखा है, किसी का असम्मान भी ना हो, किसी का ये चीज भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कार्टून में भाषा, किस तरह की भाषा आप ले रहे हैं वो भी देखना है, कि कोई बहुत ज्यादा क्लिष्ट ना हो और बहुत चलता हो लैंग्वेज भी ना हो, और कार्टून का जो कैप्शन होता है वो थोड़ा छोटा हो, बहुत ज्यादा विस्तार भी उसमें ना हो, ये सब चीजें हैं। एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं मिलती रही, शुरू में बहुत मिली, अच्छी ज्यादा मिली, जिनसे कि इंसान प्रोत्साहित होता है और आगे बढ़ता है। आपने बालकवि बैरागी जी का नाम सुना होगा, है ना, सुप्रसिद्ध गीतकार और सांसद। तो बालकवि जी ने मेरा एक कार्टून देखा था जब मैंने बनाया था मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर तत्कालीन, तो उस कार्टून को देखकर उन्होंने, वो कार्टून एप्रिशिएट भी बहुत हुआ था, और बालकवि जी का मुझे पत्र मिला
0: जी,
1: प्रिय देवेंद्र तुम बहुत दुष्ट हो,
0: अच्छा
1: तुम्हें पता नहीं तुम्हारा यह कार्टून लोगों ने फ्रेम करवा कर रख रखा है, और किसी भी कलाकार के खाते में यह बहुत बड़ा जन प्रतिदान है, मेरी तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। मतलब बाल कवि बैरागी साहब आपको ये बात कह रहे हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और देखिए उनके कहने में भी कितना अपनत्व है और गहराई है।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात है।
0: बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि एक कार्टून जैसी छोटी सी विधा है, बहुत गहरी विधा है, उसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहित्यकार, कलाकार भी
1: पढ़ते,
0: देखते, सुनते हैं और सराहते हैं।
1: सही बात है।
0: चलिए आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं।
1: बस यहाँ बालकवि बैरागी जी का लिखा हुआ रेशमा और शेरा फिल्म का गीत कैसा रहेगा?
0: बिल्कुल अच्छा रहेगा।
1: तू चंदा मैं चांदनी।
0: आइए सुनते हैं बालकवि बैरागी का लिखा ये बहुत ही खूबसूरत गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: तो देवेंद्र जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना अभी बैरागी साहब का लिखा हुआ। तो आप चूंकि इतने कार्टून्स बना चुके हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कोई कार्टून जिसके बारे में आप बताना चाहें जो आपको बेहद पसंद हो।
1: मेरी पसंद के तो बहुत सारे कार्टून्स हैं। अभी मैनेजमेंट पर बनाया कार्टून याद आ रहा है मुझे,
0: बताइए
1: कि एक दादाजी हैं, ये तीन फ्रेम्स में बनाया हुआ था ये, कि एक दादाजी हैं वो लेटे हुए और अपने पोते से बोल रहे हैं, कम उम्र का पोता है, कि बेटा मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे पैर। तो कहता दादाजी मैं भी आता हूँ। और फिर वो जब लौटा तो उसके हाथ में आरी थी काटने वाली, आरी लेके आया वो। तो दादाजी सहम के बैठ गए पैर सिकोड़ के। आरी क्यों? बोले दादाजी हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते हैं किसी भी काम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, उसके बाद उस काम को पूरा करो।
0: वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और एक कार्टून और भी ध्यान आ रहा है कि जैसे कार्टून कई बार ये घटनाओं पर होते हैं, खबरों पे होते हैं, ट्रेंड्स पे होते हैं, मनोविज्ञान पे भी कार्टून बनाने मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि किसी किशोरी का मनोविज्ञान, ये मैंने ऑब्जर्व किया था, तो उस पर कार्टून मैंने बनाया जो महिलाओं के स्तंभ में छपा था
0: जी।
1: कि एक टीनेजर कन्या है, वो अपने घर में बिस्तर पर औंधी लेटी हुई कुछ कविताएं वगैरह लिख रही है
0: जी।
1: पास में गुलाब के फूल भी हैं, डायरी है ऐसा, और वो अपने सपनों में खोई हुई है, और कुछ पंक्तियां भी हैं जो हम बाद में देखेंगे क्या वो कह रही है। और पंक्ति ये है कि सपनों में बस गई है एक मादक गंध, सपनों में बस गई है एक मादक गंध, मानो दूध उफन गया हो कहीं। और उस कार्टून में पीछे बताया गया है कि गैस पे वास्तव में दूध चढ़ा हुआ है और उफन के और बह रहा है और पूरे फर्श पे फैला है। और इसमें मजा और कि दरवाजा खुला और उनकी माता जी सब्जी वगैरह लेके आ रही हैं और उन्होंने दूध देखा तो अंगारा हो गई वो।
0: जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी गहरी बात आपने कही कि एक किशोरी मन की क्या जो है सोच होती है, मनोविज्ञान क्या होता है किशोरपन का, वो आपने इसमें बताया, बहुत सुंदर। एक साधारण स्केच से लेकर अंतिम प्रकाशित कार्टून तक की आपकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है?
1: उस प्रक्रिया में सबसे पहले आता है विचार। उस विचार में ध्यान ये रखते हैं, क्योंकि कई बार विचार ऐसा भी आता है, मान लीजिए उसको पहले मैं ये कहा करता था साथियों में कि मुझे शेर जैसा विचार आता है और उसको मैं पीट पीट कर बकरी जैसा बनाकर पेश करता हूँ। तो ये जो बकरी जैसा बनाना जो है, ये दरअसल एक सामंजस्य वाली चीज है
0: जी।
1: और ताकि जिससे सब लोग खुश रहें और उतना तीखापन महसूस ना करें कि बात बिगड़ जाए, तो उस तरह से कार्टून बनता है। तो पहले विचार आया और विचार के बाद में, जैसे हाँ आर के लक्ष्मण साहब ने भी कहा था
0: जी,
1: कि पहला विचार जो आता है उसमें मत आप उलझ जाओ, वो आपको लुभाता है और ललचाता है, इसलिए उससे आप और आगे चलो, सेकेंड थॉट, फाइनल थॉट, ऐसे करके, तो उसमें उसका रिफाइनमेंट होता है, आगे वो चीजें चलती हैं। तो ये प्रक्रिया मेरी भी है कि पहला विचार आया, उसको अलग रखा, फिर और उस पर सोच रहे हैं, अलग अलग कोण से सोच रहे हैं, अलग अलग उसमें सिचुएशंस भी बनती हैं, और फिर जब वो रिफाइन होकर वो आता है तो अच्छा लगता है, देख के मन खुद कहता है कि नहीं ये चीज बढ़िया है और ये आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी, बहुत सुंदर। बिल्कुल यही काम करने का भी तरीका है कि आप अगर विचार पे अटक कर रह गए
1: तो
0: वहीं खड़े रह जाते
1: हैं। बस।
0: तो आज के डिजिटल युग की हम बात कर रहे हैं और इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो कार्टूनिस्ट के काम करने का क्या तरीका बदला है?
1: तरीका तो नहीं बदला है, ये है कि
0: विचार बदला होगा,
1: विचार भी बदला है, और मैं विचारों में भी आज जो हम कहते हैं ना गरिमा उतनी नहीं, आजकल जो हो रहा है वो गरिमा उतनी नहीं, उसको मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि भाषा की भी खूबसूरती एक होती है कार्टून के अंदर, वो है। और पात्रों की जो विविधता, जो जैसे हम चुनते हैं कि हर बार रोज एक ही एक तरह का आप बना रहे हैं, सूटेड बूटेड ये वो, उसके बजाय आप लोक जीवन में उतरें, बाहर देखें सड़क पे कितने तरह के पात्र दिखाई देते हैं, तो कभी बात उनसे भी कहलवाएं, ये होता है, अलग अलग पात्र अलग अलग बात कह रहा है, उसका मजा आता है।
0: तो लोक जीवन से जुड़ा कोई कार्टून आपको याद हो आपका बनाया हुआ?
1: लोक जीवन से जुड़ा मेरा कार्टून एक ध्यान आ रहा है मुझे, वो भी थोड़ा इस तरह का है कि जैसे जब वीमेंस लिब का जो चला था शुरुआती जोर था, तो उसमें मैंने बताया कि एक खेत में किसान बैठा हुआ है, फुर्सत के लम्हों में हल चला के बैठा है, और पास में उसकी जो पत्नी है वो पोटली में रोटी वगैरह लेके आई है और प्याज और है ना मिर्ची ये सब अचार, तो वो खाना खा रहा है और वो पंखा चल रही है उसको बैठे हुए, है ना, कितना सुंदर दृश्य। तो इसमें तो एक तो आपने पूरा बैकग्राउंड दिखाया, झोपड़ी दिखाई, खेत दिखाया, हल दिखाया, उसका स्त्री और पुरुष का पहनावा, तो इसमें लोक जीवन की, लोक पहनावे की झलक मिली। अब उसके बाद वो सड़क से दो आधुनिकाएं जा रही हैं कार से, तो उनने कार रोकी और ये दृश्य देख के वो कह रही है कि ये कितनी अभागी औरत है ये, मतलब नारी स्वातंत्र्य के विचार से एकदम अनजान है, चलो इसे हम चल के उसकी दास्ता से मुक्त कराएं, पुरुष की दास्ता से। तो ये ऐसी चीजें हैं,
0: बहुत बड़ा व्यंग्य, बिल्कुल सही कहा आपने कि दो स्त्रियों की मनोदशा आपने बताई, जो ग्रामीण परिवेश की स्त्री जो सुख अनुभव कर रही है, आधुनिक परिवेश की स्त्री उस सुख को नहीं जान पा रही है और उसको दास्ता बता रही है।
1: हाँ, तो ये जो विसंगति है बस उसको ये उसमें दिखाने की कोशिश।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर देवेंद्र जी, बहुत सुंदर। तो अगर मैं देवेंद्र जी से ये पूछूं कि इतने कार्टून्स आपने बना लिए, लगभग कितने कार्टून्स बना लिए होंगे?
1: ये 60,000 से ऊपर हो चुके हैं। ये
0: 60,000 से ऊपर कार्टून आप बना चुके हैं अब तक?
1: जी जी जी।
0: और ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप रहे हैं या इन पर आपने किताब भी लिख ली है?
1: ये किताब में तो ये नहीं आ सकते, अभी मेरे तो करीब 6-7 व्यंग संकलन ही निकले हैं। बाकी ये है कि इनके ऊपर, हाँ आपको ये बता दूं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी यूएसए का वो मिला है।
0: अरे वाह।
1: हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिश्ड कार्टून्स उसके ऊपर।
0: अच्छा, तो 60,000 कार्टून आपने आज तक बना लिए हैं।
1: जी।
0: इतने विचार, यानी 60,000 विचार तो आपको आ ही गए, और कितने विचार और आने हैं।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: बहुत सुंदर, अद्भुत है ये बात। मतलब 60,000 कार्टून कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
1: जी हाँ।
0: है ना, 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 के आंकड़े तो हम सुनते ही है 10,000 तक के, लेकिन 60,000 कार्टून बनाए रखना और उनको मेंटेन करना बिना किसी विवाद के,
1: हाँ जी,
0: ये कार्टूनिस्ट की बहुत बड़ी सफलता है। चलिए आपसे और बातचीत करने वाले हैं
1: जी।
0: एक गीत सुन लेते हैं, गीत बताइए।
1: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, फिल्म का नाम है बातों बातों में।
0: बहुत सुंदर गीत है ये।
1: हाँ, अमित कुमार और आशा भोसले जी की।
0: तो चलिए सुनते हैं
1: जी
0: आपकी पसंद का ये गीत।

0: देवेंद्र जी, जैसा कि मैं ये जानना चाह रही थी, पहले हम बचपन में चंपक और लोटपोट जैसी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे और उसमें एक सीरीज चला करती थी कार्टून की, तो क्या ऐसी कोई सीरीज चलाने का आपने भी काम किया है कि एक लंबी सीरीज चल रही है किसी कार्टून पर, किसी विषय पर?
1: जी हाँ, मैडम मोहिनी नाम से एक सीरीज मैंने बनाई थी, वो 600 के लगभग उसकी आवृत्तियां छपी हैं, तो वो बहुत पॉपुलर था, वो परिवारों में, महिलाओं में, सभी लोग उसे पढ़ते थे।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैडम मोहिनी एक बताई गई, एक तरुणी, तो वो डबल डेकर स्ट्रिप होती है, जो एक स्ट्रिप ऊपर एक उसके नीचे स्ट्रिप, उस तरह से। तो उसके कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैडम मोहिनी बैठी हुई हैं और वो अखबार पढ़ रही हैं, इतने में उनका भतीजा आता है कि मौसी मौसी मुझे जूते पहनना है, जल के जूते पहना दो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं जूते क्या पहनना, अब 4 दिन की तो ये बारिश हो रही है, वो इस तरह बरसाती जूते तुम बोल रहे हो, तो रहने दो। फिर वो कहता है कि अच्छा तो मुझे एक नया बस्ता ही दिला दो स्कूल जाने के लिए। तो बोले अरे 4 दिन का तो तुम्हारा सेशन है, उसमें क्या नया बस्ता लोगे? तो बोले आप ये क्या अखबार में क्या पढ़ रही हो? बोले अरे झपट मत, मैं तेरे लिए मौसा जी ढूंढ रही हूँ। तो अखबार लेके भाग जाता और कहता है कि 4 दिन का तो जीवन है, इसमें जीवन साथी क्या ढूंढना।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: ऐसी इस
0: ये
1: तरह
0: सीरीज
1: से
0: लंबी चली,
1: ये सीरीज लंबी चली थी, हर हफ्ते
0: लोगों ने काफी पसंद किया, खासतौर से महिलाओं ने।
1: जी जी जी
0: तो क्या महिलाओं के खत

0: आपके पास आए, महिलाओं के फोन आपके पास आए, कोई महिला आपसे मिलने आई कि देवेंद्र जी आपने इतनी खूबसूरत ये सीरीज चलाई है और इसे पढ़ के हम तो गुदगुदा जाते हैं?
1: हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल, और उसमें अखबार में जो प्रतिक्रियाओं का एक कॉलम था उसमें बहुत प्रतिक्रियाएं आती थी, उसमें वो लिखते थे कि आज देवेंद्र जी ने राह बताई, ये किया वो किया, अपनी अपनी टिप्पणियां सब
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमें तो लगता है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं या आज भी पढ़ते हैं या पढ़ते थे तो वो कार्टून जरूर तलाशते थे सबसे पहले कि अखबार में क्या आया है, ये एक निगाह रहती थी कि आज कौन सा कार्टून आया है किसी का भी।
1: हाँ,
0: तो ये निगाह हमेशा रही। तो आपके परिवार में जो और अन्य लोग हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, क्या उनका भी कभी विरोध हुआ कि क्या दिन भर आप कार्टून बनाते रहते हैं और हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, आप दिन में इतने अपने रिकॉर्ड तोड़ कार्टून बना लिए हैं, तो ऐसा कभी घर पर कोई कार्टून बनाया आपने पति पत्नी विवाद पर या बच्चों के विवाद पर?
1: उन लोगों से मतलब मतभेद का ऐसा अवसर आया नहीं, क्योंकि मैंने ये अखबार में जैसे जॉब रहता है तो उतनी देर के लिए आप बाहर गए, वहाँ कार्टून आप बना के चले आए, और फिर उस चीज को घर में मतलब फिर मैं बताता भी नहीं, कोई पूछे भी कि आप देवेंद्र हैं तो मैं कई बार सोचना पड़ जाता है कि क्या मैं हूँ क्या। और फिर जैसे कि अपन लोग बात कर रहे थे कि सबका साथ सबको लेके चलना, ये जो चीज होती है, तो बच्चों के साथ आप गए मान लीजिए स्कूल लेकर जा रहे हैं, उन्हें घुमा रहे हैं, तो उसमें से भी आपके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है। पत्नी देवी को लेकर आप स्कूटर पे गए सब्जी खरीदने, तो कुछ तो भावताव होना, ये सब चीजें तो वहां भी आप देखते हैं कुछ मिलता है मैटर। जैसे मैंने कार्टून बनाया था कि जैसे दल बदल वगैरह ज्यादा होता है ना, तो उसमें मैंने बनाया था कि एक सब्जी वाली बैठी हुई है और तो जो ग्राहक है वो उससे कह रहा है कि भाई आपके जो आलू हैं या विधायक हैं वो देखो लुढ़क कर उधर टमाटर हुआ मिल रहे हैं। ऐसी चीजें बस ये रोजमर्रा की जो होती हैं उसे
0: बिल्कुल, यानी कि कार्टूनिस्ट को बहुत ही पैनी दृष्टि रखनी पड़ती है और हर समय जागरूक रहना होता है कि कब कहां से क्या मैटर मिल सकता है और कहां कैसा कार्टून बनाया जा सकता है। तो कार्टून की दुनिया में जो आना चाहते हैं, कार्टूनिंग की दुनिया में कदम रखने वाले जो नए कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उन्हें बस मेरा यही संदेश है कि इस विधा को आप भले ही प्रोफेशनली ना अपनाएं, लेकिन शौकिया अगर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है तो उसको आप लेकर चलें, और क्योंकि ये विधा सबसे पहले आपको खुश रखेगी, फिर आपके सराउंडिंग को खुश रखेगी, इसलिए आप खुश रहने का एक बहुत अच्छा है नुस्खा है, कैप्सूल है, तो इसको लेके आप साथ में चलें, और इस विधा को साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत हमेशा है, क्योंकि हंसी की जरूरत हमेशा है, अच्छे संदेशों की जरूरत हमेशा रहेगी।
0: बिल्कुल सही कहा देवेंद्र जी, आपके आदर्श कौन है, आपने इतना लंबा समय इस दुनिया में बिताया है कार्टून की दुनिया में, आपके अपने आदर्श कौन रहे, किन से प्रभावित होकर आप आगे बढ़ते रहे?
1: मेरे आदर्श एक तो जीवन में सबसे पहले पिताजी से मैंने प्रेरणा ली है, पिताजी जो हैं और उन्हें मैंने कार्टूनों में बनाया भी है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि घर में जब बच्चा देखता है तो सबसे पहले पिता ही नजर आते हैं, तो जो कार्टून मैंने आपको अभी सुनाया था करवा चौथ वाला, उसमें हालांकि पिताजी के सिर पे बाल हैं तो उन्हें मैंने बनाया था वहां पर, और उन्हें पिताजी को लेकर कार्टून बनाने के अलावा उनसे बहुत सी चीजें मैंने सीखी। एक तो जो हास्य रस, उनमें काफी हर चीज में हंसते हैं, सामाजिक बहुत हैं, रिश्ते निभाते हैं, एक तो पिताजी से प्रेरित हुए, फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो वही आर के लक्ष्मण जी जो सबके प्रेरणा स्रोत चाहते होते हैं, लक्ष्मण जी हुए, सुधीर दर और मारियो मिरांडा साहब ये, और बाहर के कार्टूनिस्टों में उडेर जो और डेविड लो और अपने वॉल्ट डिज्नी वो तो हैं ही, ये सब चलते हैं, तो इन लोगों से कुछ ना कुछ देखकर और लगा, इनकी विशेषताओं को देख के लगा कि वो उनमें से कुछ हम सीखें।
0: तो क्या लगता है आपको कि जो ये हमारे विदेशी कार्टूनिस्ट हैं उनमें और हमारे देश के कार्टूनिस्ट की विधा में, सोच में, विचार में कोई अंतर महसूस किया आपने?
1: हाँ, अंतर तो होता है, क्योंकि विदेशी लोग जो है उनके कार्टून्स भी विषय उनके उस तरह के होते हैं, और वहाँ के लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं क्योंकि वो हास्य प्रिय होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें काफी डेवलप्ड होता है उसकी तुलना में। अच्छा, हमारे यहाँ विविधता ज्यादा है, इतना हम लोग देखते हैं लोक जीवन में और सभी दूर
0: वहाँ विविधता हाँ, नहीं है नहीं लेकिन है। लोगों में जागरूकता बहुत है आम आदमी से जुड़े हैं वो
1: हाँ।
0: हमारे दैनिक जीवन में ये कार्टून नहीं होते हैं
1: तो जैसे हम बता दें हमारी फिल्मों में और वहाँ की फिल्मों में जो फर्क होता है हमारी फिल्मों में गाने भी डाले जाते हैं ये सब चीजें तो उसी तरह से कार्टून के लिए मैंने जो अपनी एक शैली विकसित की तो उसमें सभी की थोड़ी कविता भी होती है थोड़ा नाट्य भी होता है और भाषा का भी आनंद और बाकी स्केच तो है ही ताकि एक अच्छा भरा पूरा उसमें एक मटेरियल सबको मिले
0: तो देवेंद्र जी चलते चलाते हम बस आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भविष्य में आप अपने कार्टून के माध्यम से क्या नया संदेश देना चाहते हैं कुछ ऐसे कार्टून्स जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं जिस पर आप काम कर रहे हो
1: हाँ नया विचार यही है कि जो आजकल रिश्ते जो टूट रहे हैं और यानी हम देख रहे हैं कि पहले तो केवल शादियों का मौसम आता था है ना उसका भी सीजन होता था कि हाँ भाई अब देव जाग गए या सो गए और अब देख रहे हैं कि हम तलाकों का मौसम चल रहा है और वो 12 मासी है तो इन चीजों को लेकर कि रिश्ते ना टूटे इंसान समझदारी से इन्हें सहेजे और जो हम देख रहे हैं कि माता पिता अकेले होते जा रहे हैं ये सब चीजें एक बड़ी एक सामाजिक समस्याओं के तौर पर छूती हैं मन को तो इन्हें लेकर काम करने की मेरी इच्छा है कि कार्टूनों के माध्यम से एक सीरीज में ऐसे तैयार करूं और वो प्रदर्शित हो और शायद इससे कुछ असर हो मेरा भी एक आहुति मेरी भी रहे इसमें जी, सुधार में
0: जी बहुत ये बात बहुत ही शानदार और एक समसामयिक विचार और गहरे विचार हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कि माता पिता हमारे लिए क्या मायने रखते हैं
1: हाँ।
0: और हम जो है बड़ी फैमिली में रहने वाले लोग आज कैसे अलग अलग हो गए हैं और जिंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो रिश्तों की बात आपने कही कि रिश्तों को बनाए रखना सहेजना बहुत जरूरी है इस पर आप काम करना चाहते हैं स्वागत है और आपको हम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका
1: सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम
0: शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग संपादन सहयोग अंबालिका सिंह विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है नमस्कार
3: आज के मेहमान

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं सोना महापात्रा की आवाज में हुसैन हैदरी का लिखा ये अगार फिल्मी गीत।

सोना महापात्रा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गैर फिल्मी गीत। और आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण का गाया ये भक्ति पद।

हरिओम शरण की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति पद। और आइए अब सुनते हैं बेगम आबिदा परवीन को।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकेश की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं जिगर मुरादाबादी का कलाम। संगीतकार मुरली मनोहर स्वरूप हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म वीर दुर्गादास से लिया है। गीतकार पंडित भरत व्यास है और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: शुभ मुदगल और साथियों की आवाजों में अभी आपने श्याम अनुरागी की ये रचना सुनी। इसे संगीत में ढाला था गौरव इसर ने। और इस रचना के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
2: Women, we open their bank accounts.
3: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी

0: आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक गिरकर 74,722 जबकि निफ्टी 21 अंक गिरकर 23,411 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार दत्ताराम की कुछ फिल्मी संगीत रचनाएं।

दत्ताराम के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे प्रदीप का लिखा ये गीत, युगल स्वर मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर के थे। फिल्म का नाम था जिंदगी और ख्वाब।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम था कैदी नंबर 911। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार थे दत्ताराम। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। दत्ताराम के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का लिखा गीत है, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम राका।

इस अंतराल के बाद यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की फिल्म का नाम परवरिश।

ये आवाजें थी सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफी और साथियों की फिल्म का नाम था फर्स्ट लव। गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीतकार थे दत्ताराम।

0: लता मंगेशकर और मन्ना डे को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था संतान। और इससे पहले हम आपको बता दें, आप सुन रहे थे टार्जन कम्स टू दिल्ली फिल्म का गाना। गाने वाले कलाकार आशा भोसले और उषा मंगेशकर थे।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों के महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार दत्ताराम की कुछ संगीत रचनाएं।

0: चूहा भी आया बंदर भी आया छन छन करती आई चिड़िया
1: ये आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था अब दिल्ली दूर नहीं। गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी दत्ताराम ने।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गडले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी ना कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: फिल्म काला आदमी का गीत सुनिए, आवाज सुमन कल्याणपुर की। शब्दकार हसरत जयपुरी हैं और संगीतकार दत्ताराम हैं।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म बालक से लिया है। गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा है। संगीतकार दत्ताराम।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में अभी आपने फिल्म बालक का ये गीत सुना और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीतकार हैं गुलजार धीनवी, संगीतकार दत्ताराम, स्वर मुकेश, सुमन कल्याणपुर, महेंद्र कपूर और साथियों की। फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी।

0: बात कहूँ वल्ला ये हुस्न सुफन अल्लाह, जब नाम लिया जी दिल थाम लिया चौह कैसी कही।
1: बस तुमने कदर की है क्या खूब नजर की है, दिलदार मिले तो ऐसा मिले क्या बात कही।
2: दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हम आपको अब इंदिवर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है डार्क स्ट्रीट, गायिका है सुमन कल्याणपुर।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश दत्ताराम का संगीत, शैलेंद्र के बोल, आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम है जब से तुम्हें देखा है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल भी हो गए हैं, है ना दोस्तों। कई बार क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं तो कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो बात करते करते अक्सर हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं या खिलखिलाने लगते हैं, और उनका ये खिलखिलाने का जो अंदाज है हमें बहुत लुभाता है, है ना, होता है ना। तो बस आज हम कुछ ऐसे ही गीत भी लेकर आए हैं जहां इन फिल्मी गीतों में बीच बीच में हमें सुनाई देगी एक प्यारी सी छोटी सी हंसी। जी हाँ, आप सभी ने हमने जब देखा कि फेसबुक पेज पर आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है जहां पर नायक या नायिका या यूं कहें गायक या गायिका गाने के दौरान हंस भी रहे हैं, तो आज इन्हीं कुछ गीतों को लेकर इस कार्यक्रम में हम आपके लिए उपस्थित हैं। देखिए, गीतों में शब्द होते हैं, सुर होते हैं, भाव होते हैं, और कभी कभी इन्हीं सुरों के बीच घुल जाती है एक प्यारी सी हंसी, है ना। कहीं नायिका की खिलखिलाहट प्रेम को चंचल बना देती है, तो कहीं नायक की हंसी उस गीत में शरारत भर देती है। और फिल्मी गीतों में ये हंसी महज एक आवाज नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा होती है। तो कभी कभी प्रेम की स्वीकृति होती है, कभी नानुकर होती है, कभी छेड़छाड़ होती है, कभी शर्म और कभी बेफिक्री, है ना, ये सभी इस हंसी में शामिल होते हैं। तो आज के सुरीले सफर में हम सुनेंगे कुछ ऐसे ही गीत जहां गायन के बीच अचानक सुनाई देगी एक प्यारी सी छोटी सी हंसी जो उस पूरे गीत को, उस भाव को यादगार बना देगी। हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं उन्होंने हमारी इबारत पढ़ ली है, लेकिन वो श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी हम आज की इबारत पढ़ देते हैं। गीत सिर्फ सुरों और शब्दों का नाम नहीं, कभी कभी उनमें खिलखिलाहट भी सुनाई देती है, और जब किसी गीत के बीच गायक या गायिका की हंसी अचानक सुनाई देती है तो लगता है जैसे पर्दे के पीछे कोई खूबसूरत शरारत हमारे सामने आ गई हो। कहीं प्रेम की नोकझोंक में हंसी होती है, कहीं छेड़छाड़ में, कहीं खुशी में, और कहीं ऐसी सहज हंसी जो गीत को सिर्फ सुनने का नहीं महसूस करने का भी एक मौका देती है। तो आज के इस सुरीले सफर में हम ऐसे ही गीतों की तलाश करेंगे जहां बोलों के बीच अचानक सुनाई देगी एक प्यारी सी हंसी। तो आइए सुरों के साथ आज हंसी की इन मीठी झंकारों को भी सुनते हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुरीला सफर। तो चलिए निकल पड़ते हैं इस सफर पर।

ये स्वर थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम था आपकी कसम। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म आपकी कसम में इस गीत में किस्सा है कि किशोर कुमार जी हंसते हुए कहते हैं, बजाओ बेटा जम के बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसना तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिना मतलब की हंसी अच्छी नहीं होती। हाँ, दूसरे का मजाक बनाकर हंसना ठीक नहीं होता, लेकिन कार्यक्रम में हंसना बहुत अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रसंग बहुत ही आकर्षक और रोचक है, कहीं गीत याद आ रहे हैं और हो सकता है ये गीत आप इस कार्यक्रम में शामिल भी करें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चिर हरित मुस्कान बिखेरने वाली मंदाकिनी, जिनके व्यक्तित्व के अनुरूप विषय गान और मुस्कान भरी सुरीला सफर लेकर आ रही हैं, अत स्वागतम। वही एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार, ये बात बिल्कुल सच है कि आपकी खनकती आवाज, प्यारी बातें सफर को बहुत सुहाना और मत भरे गीतों से बहुत ही रोमांचक बना देता है। आपका स्वागत है। गीतों में कुछ गुनगुना रहे हैं, आपने कुछ गीतों का जिक्र किया है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गालू मुस्कुरा लो महफिले सजा लो। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में कुछ पल हंसने के लिए मिल जाए तो समझना चाहिए कि शरीर को फ्री का टॉनिक मिल गया है, यानी कि हम विविध भारती के श्रोताओं को सुरीला सफर प्रोग्राम में आज 1 से लेकर 2 बजे तक फ्री में हंसने का टॉनिक देने वाली हैं, उद्घोषिका।

0: एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर बहुत ही खूबसूरत है। आज के सुरीले सफर में गीत की शुरुआत में, बीच में या अंत में आ रही हंसी की बात तो होने जा ही रही है, वो तो होनी ही थी। लेकिन इसके अलावा एक और हंसी की बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी छोटी बहना कमेंट पढ़ते वक्त या बीच में या अंत में कभी कभी मंद मंद खिलखिलाहट के साथ जब हंस देती है तब लगता है कि हंसी से भरी फुलवारी हो, ऐसी प्यारी प्यारी न्यारी लगती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ में बज रहा है हमारा रेडियो भी, हंस रहा है। अच्छा एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती का सुरीला सफर है, सुहाना होता है शुरू 1 बजे रोजाना, यहाँ कब किसकी कमेंट पढ़ी जाए ये किसने जाना। अरे वाह, आपने तो किशोर कुमार का गाना ही लिख दिया है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी भावनाओं, परिस्थितियों और शारीरिक प्रतिक्रिया पर आधारित है। हंसी के विविध प्रकार हो सकते हैं, खिलखिलाना, ठहाके मारना, दबे हुए हंसना, मासूम हंसना, उपहास भरी हंसी, घबराहट वाली हंसी और सबसे प्यारी खुशी या आनंद वाली हंसी। सुर और शब्दों के साथ एक छोटी सी हंसी गीत को चार चांद लगा देती है और सुरीला सफर में आपकी आत्मीयता भरी हंसी दिल में घर बना लेती है। आज की अनुपम सुंदर थीम पर इतने सारे गीत याद आ रहे हैं कि 2 या 3 सुरीले सफर भी कम पड़ जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने लिख भी दिए हैं कुछ गीत, हो सकता है कि ये गीत इस कार्यक्रम में शामिल भी हो। चलिए हंसते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत सुनते हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं ये, अनुराधा पौडवाल और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज है। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।
1: ये क्या, लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर।

0: किशोर
1: भूल गए
0: जान मेरा नाम
1: अच्छा?
0: चोरी मेरा काम जान मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडलबाज
0: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
0: चार का मौसम
1: बेशरम

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कभी कभी गानों में एक मासूम सी नटखटपन खुली होती है और जब किसी धुन के बीच में अचानक से कोई खिलखिलाहट या कोई प्यारी सी गुनगुनाहट सुनाई दे जाती है तो लगता है जैसे किसी ने सुरों के आंगन में आकर रंग बिखेर दिए हों। कहीं उस हंसी में कोई मीठी सी शिकायत होती है, कहीं दोस्तों की मस्ती, कहीं चाहत का इकरार और कहीं एक ऐसी बेपरवाह हंसी जो गीत को सिर्फ एक रचना नहीं बल्कि जिंदगी का जीता जागता लम्हा बना देती है। बहुत सुंदर। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीत केवल सुरों और शब्दों का मेल नहीं होते, वे भावनाओं की ऐसी दुनिया है जहां कभी कभी एक छोटी सी हंसी पूरा गीत महका देती है। खासकर जब भी किसी गीत के बीच नायिका की सहज खिलखिलाहट अचानक सुनाई देती है तो मन जैसे उसी पल ठहर जाता है। वो हंसी कभी प्रेम की शरारत होती है, कभी छेड़छाड़, कभी नोकझोंक, कभी खुशी की निश्चल अभिव्यक्ति। सुरों के बीच घुली वो हंसी कानों में उतर कर सीधे दिल को छूती है और चेहरे पर अनायास मुस्कान ले आती है। गीत फिर केवल सुना नहीं जाता बल्कि महसूस होने लगता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों की सुर लहरी का ऐसा जादू है कि पलकें नींद की दस्तक पर झपकती हैं और मगर मन को पंख और कल्पना को परवाज देती है। गीत की अनुगूंज पहरों पहर बनी रहती है। गायकों के दिव्य स्वर से रचा बसा कोई भी गीत रात को सोए कंदीलों तक को जगा देती है। ये है गीतों की ताकत। स्वर और लय अनादि है। हर गीत की मिठास जीवन की विविधता में प्राण फूंक देती है। गीतों के शब्द जितनी गहराई से मन को छूते हैं वो गीत उतना ही अक्षत और कालजयी हो जाता है। बहुत सुंदर इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि वाकई इन गीतों के बीच में हंसने के क्या मायने हैं, ऐसा वही महसूस करता है जो इन गानों से प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो। अच्छा चलिए, दो सीधे साधे सवाल हमारी तरफ से आपके लिए कि आपको ऐसा कौन सा गीत पसंद है जिसमें गायक या गायिका की हंसी ने उस गीत की खूबसूरती और शरारत को आपकी दृष्टि में ज्यादा बढ़ा दिया है। कोई एक गीत का जिक्र आपको करना है, फिल्म का नाम, गाने के बोल के साथ। और हमारा दूसरा सवाल यह है कि क्या आपको ऐसी कोई घटना याद आती है जहां पर आप अपने परिवार वालों से या अपने दोस्तों से बात करते करते अचानक जोर जोर से हंसने लगे या खिलखिलाने लगे, या आपके दोस्त या आपकी फ्रेंड जहां कहीं भी आप खड़े थे अचानक एक खिलखिलाती हंसी आपके बीच आई और आप सभी लोग देखने लगे चौंक कर कि ये क्या हुआ। ऐसा कोई लम्हा आपको याद है? कम से कम शब्दों में बतानी है आपको ये घटना, छोटी से छोटी शब्दों में, यूं कह सकते हैं कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं की बातों को शामिल कर सकें। और आइए बढ़ते हैं शंकर जयकिशन के संगीत की ओर। हसरत जयपुरी के बोल हैं, किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अंदाज। ये गीत तो हमें हंसने का मौका कई बार देता है ना?

देखा आपने कितना खूबसूरत गीत था जो हमें हंसा देता है, है ना? और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इस वक्त मुस्कुरा तो रहे होंगे कम से कम, और कुछ लोग हंस भी रहे होंगे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के इन गीतों में हंसी है, वाह वाह, आज तो हंसी की नाव पर हम सब मंदाकिनी जी के साथ गीतों की नदी में सैर करने वाले हैं। अच्छा, आप नाव की सैर कर रहे हैं मेरे साथ? चलिए, आप जिसमें खुश हैं हम तो उसी में खुश हैं। बस शर्त ये है कि हमें हंसते हंसाते हुए आज का ये सफर तय करना है, है ना? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछा कि हमें कौन सा गीत पसंद है, ऐसा कोई फिल्मी गीत जिसमें गायक या गायिका की हंसी ने उस गीत की खूबसूरती और शरारत को बढ़ा दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि जवानी जाने मन नमक हलाल का गीत, जो कि आशा भोसले की आवाज में, ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म का गाना है कैसा तेरा प्यार कैसा गुस्सा है तेरा, और सारे शहर में आपसा कोई नहीं, ये गाना फिल्म बैराग का हमें बहुत अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मी गीतों में हंसी तो हमें खुश कर ही देती है, लेकिन आपकी मधुर आवाज में भी हमें हंसी सुनाई देती है जो मन को प्रसन्न कर देती है। क्या बात है, आपको सुनाई देती है मेरी हंसी? मैं एक श्रोता लिखते हैं कि दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, इस गाने में बड़ी अलग अलग हंसी है, खांसी वाली हंसी भी है। मुझे सबसे बड़ी अच्छी हंसी दिनेश हिंगू जी की लगती है उनकी फिल्मों में। क्या बात है। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि जब गीतों में किसी गायिका और गायक की गीतों में शरारतें होती है तो गीत में खूबसूरती आ जाती है। खासतौर से हमें तो गायिका की शरारत अच्छी लगती है। हमारे फिल्मी गीतों में इस तरह के बहुत सारे गीत हैं जो शरारतों से और खूबसूरत बन गए हैं। शायद मेरी शादी का ख्याल, अच्छा तो हम चलते हैं, ऐसे बहुत सारे गीत है जहां पर गायिका हंसती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसना और खिलखिलाना सच में जिंदगी के सबसे खूबसूरत और अनमोल तोहफे हैं। जब हमारा मन खुश होता है तो दिल झूम उठता है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हंसने से हमारे शरीर और दिमाग को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। खिलखिलाकर हंसने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है, रक्त संचार बेहतर होता है जिससे दिल की बीमारियां दूर होती हैं। हंसमुख बने रहने से इंसान हर मुश्किल परिस्थिति में उम्मीद नहीं खोता। जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं लोग उनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं और उनके सामाजिक रिश्ते मजबूत बनते हैं। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी भागदौड़ हो, हंसने और मुस्कुराने का कोई भी मौका हाथ से हमें नहीं जाने देना चाहिए। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि थोड़ी सी मुस्कुराहट उधार दे दे मुझे जिंदगी, कुछ अपने आ रहे हैं मिलने की रस्म अदा करनी है। आजकल की भागदौड़ और तनावपूर्ण जिंदगी में होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है। फिर भी हमें हर हाल में रस्मी तौर पर मुस्कुराना पड़ता है। बच्चे की तरह उन्मुक्त और खिलखिलाती हंसी न सही, फिर भी थोड़ा बहुत तो हंसा ही जा सकता है। आजकल घरों में लोग सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिविटी के लिए हंसती हुई मूर्ति या लाफिंग बुद्धा रखते हैं। क्या अच्छा हो अगर घर के सभी सदस्य थोड़ी देर साथ बैठकर हंस बोल लें। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि मुस्कुराइए, आप विविध भारती के साथ हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर टैगलाइन दी है आपने कि मुस्कुराइए हंसिए आप विविध भारती के साथ हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसी भी कितनी प्यारी चीज है, न कोई भाषा चाहिए न कोई वजह, बस दिल में निकली एक छोटी सी हंसी सामने

वाले के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। कुछ हंसियां पल भर की होती है लेकिन उनकी मिठास बहुत देर तक दिल में रहती है। शायद इसलिए कहते हैं कि खुशियां बांटने के लिए शब्द नहीं, एक सच्ची हंसी ही काफी होती है। तो हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं कि हंसना बहुत मुश्किल काम है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हंसना इतना मुश्किल काम भी नहीं है जितना हमने इसे बना लिया है। क्योंकि हम तनाव अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं, सारी परेशानियां, सारे तनाव, सारी मुश्किलात ओढ़े चलते रहते हैं और हंसना भूल जाते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि जिंदगी में अच्छे दिन भी हैं, बुरे दिन भी हैं, रात भी है तो सुबह भी है। हम अपनी जिंदगी को किन अर्थों में लेते हैं, सबसे बड़ी बात यह होती है आप हजार दुखों के साथ भी मुस्कुराकर जी सकते हैं, हंसकर जीवन को अपना कहते हैं ना कि बहुत ही सहज और सरल बना सकते हैं। देखिए इस गाने में दो सखियां किस तरह से एक दूसरे को छेड़ कर ही हंस ले रही हैं। और ये हमारी जिंदगी में भी होता है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, किसी अपने के साथ मिलते हैं, तो हंसी मजाक करना पसंद करते हैं। आइए सुनते हैं शैलेंद्र के बोल, एसडी बर्मन का संगीत, गीता दत्त और आशा भोसले की आवाजें। फिल्म का नाम है इंसान जाग उठा। आपको भी बताना है कि आप भी कभी हंसे हैं ऐसे किसी अपने के साथ।

ये आवाजें गीते दत्त और आशा भोसले की थी। फिल्म का नाम था इंसान जाग उठा। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत तरीके से हंसती हैं दोनों नायिकाएं, है ना? अच्छा, कभी आप हंसते हैं इस तरह से? बताइएगा हमें कि आप किस तरह से हंसना पसंद करते हैं या हंसना पसंद ही नहीं करते। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही मजेदार गीत चल रहे हैं, हम हंस रहे हैं और हमारे घर के जो पेंटर हैं, कलर कर रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं। सच में आपकी आवाज में भी हंसी छलक रही है। अच्छा, आपके घर में काम चल रहा है और वो पेंटर भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और हंस रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि गीत के बोल तो याद रह जाते हैं मगर उन बोलों के बीच गूंजी हंसी अक्सर पुरानी पूरी कहानी कह जाती है। बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे आपकी मधुर आवाज में हंसी की खनक मौजूद रहती है से हम अक्सर महसूस करते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी हमारी तारीफ करने के लिए। लेकिन यहाँ कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है कि आपको कौन से गाने पसंद हैं, जिनकी तारीफ में आप कुछ लिखिए या उस हंसी के बारे में लिखिए जो आपको बेहद पसंद है। जैसे कि एक श्रोता ने लिखा था कि उन्हें दिनेश हिंगू की हंसी बहुत पसंद आती है। अच्छा, आपको भी कोई ऐसी हंसी पसंद आती होगी किसी नायक या नायिका की, अपने आस पड़ोस में या अपने घर परिवार में या किसी बच्चे की, है ना, खिलखिलाती कोई हंसी जो आपको आकर्षित करती है, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, ये इस गीत के अंत में लता जी की खिलखिलाती हुई पावन और जादुई हंसी है जो दुनिया की अनमोल मोती है। एक महज एक हंसी नहीं, स्वर साम्राज्ञी के कंठ से टपका पावन नूर है, दिल थम जाए ऐसा सुरूर है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, विश्व में अलग अलग लैंग्वेज है लेकिन हंसी की एक ही भाषा है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप भी तो बहुत प्यारे हंसी वाले गीत सुनवा रही हैं अपनी सुंदर हंसी के साथ, क्या बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन मूवी का गीत एक चतुर नार वाला गीत हमें बेहद अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा के द्वारा गाए गए कुछ गीत जो हमें बहुत पसंद आते हैं, चतुर नार, बाबू समझो इशारे, आके सीधी गिरी दिल पे। अरे वाह, इसमें तो किशोरदा ने दो आवाजें निकाली है ना, ये गीत तो बहुत ही सुंदर है। एक श्रोता लिखते हैं कि सत्या फिल्म का गीत तू मेरे साथ है, तू मेरे पास भी है, गुलजार साहब के बोल, लता जी की आवाज, हरिहरन की आवाज। और इसी फिल्म का एक अन्य गीत है सपने में मिलती है कुड़ी मेरी, इस गीत में भी हंसी सुनने को मिलती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बेताब का गीत जब हम जमा होंगे, ये हमें बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे फिल्म चांदनी फिल्म का गाना टाइटल गीत जो कि चांदनी ओ मेरी चांदनी, और इसमें आपको यकीनन श्रीदेवी की जो हंसी है वो बहुत लुभाती है ना, क्योंकि इतनी खूबसूरती के साथ वो उस गीत में हंसती है और इस गीत को इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने गाया है कि हम सुनना बार बार पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतों में हंसी खोजना, वाह क्या बात है उद्घोषिका जी, आपका सादर नमस्कार, बड़ा रोचक विषय है आज का, और सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती सुरीला सफर पेज खोलने से पहले मैं अनुमान लगा रही थी कि आज आप ही आएंगी और ये देखिए आप आ भी गई। आपकी खनकदार आवाज का इंतजार रहता है, आज तो अलग ही प्रकार का आनंद रहेगा गाना सुनने में। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत में हंसी आना ऐसा है जैसे किसी बेहद संजीदा पेंटिंग के एक कोने में किसी बच्चे ने चुपके से रंग बिखेर दिया हो, क्या बात है। ये हमें याद दिलाती है कि माइक के उस पार कोई मशीन नहीं बल्कि धड़कता हुआ इंसान खड़ा था जो गाते गाते उस लम्हे में खो गया। ये हंसी गीतों को अमर बनाती है क्योंकि सुर भले ही कानों को छूकर लौट जाएं लेकिन वो बेसाख्ता खिलखिलाहट सीधे दिल में उतर आती है, क्या बात है। हमारे श्रोता भी कितने शायराना अंदाज में अपनी बात लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सभी आपके साथ मिलकर हंसते मुस्कुराते हुए कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी खुशी जाहिर करेंगे, हंसना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, सबसे ज्यादा फरमाइशी गीत भंवरे ने खिलाया फूलिए गाना आपको बेहद पसंद है। अच्छा, यहाँ लता जी जब हंसती हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बहुत अच्छे गाने सुनने को मिलने वाले हैं जिसमें हंसी मुस्कुराहट सभी शामिल होने वाला है। मुझे लगता है एक गाना इसमें मुझे याद आ रहा है कि जय जय शिव शंकर, जिसमें बहुत ही हंसाया जाता है, और एक बात कहो गर मानू तुम, ये गाना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए आपने इस गीत को पसंद किया और हमारा अगला गाना यही है हमारी लिस्ट में। आरडी बर्मन का संगीत है, गुलजार साहब के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम गोलमाल। बहुत हंसना हंसाना लता जी का इसमें भाता है ना, आप भी हंसिएगा ना इस गीत के साथ।

जी तो बताइए गीत सुनने के बाद आप भी मुस्कुराए कि नहीं हुँ? और कभी कभी पता है ऐसा भी होता है ना कि हम खुद से ही बात करते हैं अकेले में और फिर मुस्कुराने लगते हैं या हंसने भी लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा बहुत बार जब आप अकेले बैठे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं या सोने जा रहे होते हैं तो कोई बात याद आ जाती है अपने दोस्तों की या अपने परिवार वालों की या किसी खास की और हम अकेले में हंसने लगते हैं मुस्कुराने लगते हैं। आपके साथ कभी ऐसा होता है बताइएगा। वही एक लिखते हैं कि कटी पतंग का प्रसिद्ध गाना है मेरा नाम है शबनम और प्यार से लोग मुझे शब्बू कहते हैं। ये गाना जो आशा भोसले की चुलबुली और नटखट हंसी गाने की शुरुआत और अलग अलग अंतरा के बीच में जो नेचुरली पिरोई गई है वो बहुत अच्छा लगता है और जिसे महान गायिका आशा भोसले ने अपनी बेहतरीन आवाज में गाया है। बिल्कुल ये गाना इतना मुश्किल है और उसमें हंसना तो और भी ज्यादा मुश्किल, लेकिन हाँ इसे आपने समझा सबसे बड़ी बात यह है। एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे खूबसूरत और प्यारी छोटे बच्चों की हंसी होती है। कहते भी हैं कि दूर है मंदिर तो क्या हुआ, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात है। वे एक श्रोता लिखते हैं कि जब भी मेरी धर्म पत्नी और मैं किसी भी होटल की या बिल्डिंग की लिफ्ट में अकेले होते हैं तो फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत मेरे जीवन साथी जरूर सुनते हैं, सुनाता हूँ। धर्म पत्नी हंस देती है और कहती है झूठा कहीं का और मैं भी हंस देता हूँ। बिल्कुल जीवन में ये रोमांस होना बहुत जरूरी है। जब आप जीवन में कहीं न कहीं रोमांचित होते हैं, रोमांस रखते हैं तो जिंदगी और भी आसान हो जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को दिलीप कुमार और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया गाना सारे शहर में आपसा कोई नहीं। आशा जी की हंसी बहुत ही प्यारी हंसती है और हम भी हंसते हैं और क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, इसमें आशा जी की जो हंसी है वो बाकमाल है। बिल्कुल सही कहा आपने, फिल्म लव स्टोरी का जो ये गाना है बहुत ही चुलबुली और शरारत भरी हंसी है उसमें आशा जी की। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत मजेदार है और एक श्रोता ने कहा है कि मुझे तो काजोल की हंसी और मुस्कुराना, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे मेरी 8 महीने की बेटी की हंसी सबसे ज्यादा पसंद है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किशोरदा का गाना है चिल चिला के कजरी सुना, ये गीत सुनकर हंसी आई जाती है और इसके बोल भी बहुत शानदार है। वहीं एक श्रोता को हेमा मालिनी जी की हंसी देखने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो हंसना बहुत पसंद है और सबको हंसाने में बहुत मजा आता है। स्कूल के दिनों में सब मुझे हंसमुख अजमेरा नाम से संबोधित करते थे क्योंकि सभी को मैं अक्सर हंसाया करती थी। बहुत अच्छी बात, जब भी तो कहते हैं कि हंसो और हंसाओ। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे इस सफर में। शंकर जयकिशन का संगीत सुनते हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं ये, आशा भोसले मुबारक बेगम और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है आरजू। हाँ, इस गाने के आरंभ में ही हंसी आपको सुनाई देती है ना।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम बहुत ही खूबसूरत है। गीतों के बीच गायक है गायिका की वो कुदरती और बेसाख्ता हंसी गाने में एक अलग ही रूह और ताजगी भर देती है। आज के इस खास शो में गीतों के बीच खिलखिलाती हंसी और छेड़छाड़ वाले कई सदाबहार नगमे आज आपके साथ हम सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वार्तालाप वाले गीत तो बहुत ऐसे सुने हैं, लेकिन उनमें खिलखिलाट वाले गीतों को ढूंढकर उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयोग ये अनूठा है आपका, और इस दृष्टिकोण से ही ये इबारत आपकी प्रशंसनीय है। और आगे आपने डैश डैश डैश और क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, और क्या। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे पतिदेव का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, उनके पांच में से चार बातें तो चुटीली ही होती हैं, अक्सर अकेले में उनकी बातें याद करके मैं हंस पड़ती हूँ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मधुबाला की मुस्कुराहट और हंसी बहुत खूबसूरत और कातिलाना लगती है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मुस्कुराती हूँ मैं कई बार, और जब नींद से जाग जाऊं तो याद आता है कि अरे ये तो सपना था, बस इसी बात पे हंसी आ जाती है। वही एक श्रोता को आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया वाला गाना बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं आजकल अपनी बेटी के घर हूँ, मेरी दो छोटी सी नातिने हैं, दोनों आपस में खूब खेलती हैं, खूब खिलखिलाकर हंसती हैं और मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों के साथ खिलखिलाना तो बहुत ही अद्भुत एहसास है ये। और आइए अब सुनते हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल, युगल स्वर आशा भोंसले और किशोर कुमार के। फिल्म का नाम है बुलेट। इसमें देखिएगा कहां हंस रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले।

0: उधर है,
1: ऊपर है,
0: नीचे है,
1: कहाँ है,
0: यहाँ है,
1: अरे यहाँ तो कोई भी
0: नहीं है।
2: जी तो देखा आपने, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन सामने हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लगातार इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं और हमें लिख भी रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गीत के बीच में सुनाई देने वाली ये हंसी जैसे किसी बंद किताब के पन्नों के बीच अचानक कोई मुस्कुराता हुआ फूल मिल जाए वैसी होती है। ये हंसी गीत का हिस्सा होकर भी गीत से कहीं ज्यादा कह जाती है। कभी प्रेम की शरारत, कभी मिलन की खुशी, तो कभी उस पल की अनायास खिली मासूमियत। सुर कानों तक पहुंचते हैं मगर ऐसी हंसी सीधे दिल में उतर आती है और बरसों बाद भी वही चेहरे, वही दृश्य और वही खूबसूरत पल याद आ जाते हैं। सुरों के इस सफर में हंसी की छोटी सी झनकार जैसे बीते हुए पलों की खिड़की खोल देती है और तब महसूस होता है कि कुछ गीत सिर्फ आवाजों से नहीं, मुस्कुराहटों से, खिलखिलाहटों से और भी यादगार बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो यादगार रहेगा आज का ये सफर। और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। अमित कुमार और लता मंगेशकर का गाया फिल्म तेरी कसम का ये गीत है, आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन की धुन है।

0: भप्पे लहरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर का गाया फिल्म चलते चलते का ये गीत था। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। 12 और 13 सितंबर को होने वाले सम्मेलन में वे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर जोर दे सकते हैं। श्री गुटारेस का कहना है कि मौजूदा आर्थिक और भू राजनीतिक हालात 1945 से काफी बदल चुके हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी बदलाव जरूरी है। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और दूसरे नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी प्रस्तावित हैं। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस ब्रिक्स सम्मेलन में पश्चिम एशिया संकट समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अल्पेश

0: यशवंत कोगजे को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश मनोनीत किया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल स्थित लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे। न्यायमूर्ति कोगजे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। शपथ के बाद जस्टिस कोगजे जबलपुर पहुंचेंगे और 11 सितंबर को हाईकोर्ट में औपचारिक रूप से कार्यभार संभालेंगे। प्रदेश के प्रमुख रेलवे केंद्र कटनी के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बिलासपुर से कटनी के बीच 367 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग को चार लाइन में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। करीब 6,528 करोड़ रुपए की इस परियोजना से कटनी जंक्शन पर ट्रेनों के आउटर पर रुकने की समस्या कम होगी। वहीं अतिरिक्त ट्रैक मिलने से यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही आसान होगी। कोयला, सीमेंट समेत दूसरे सामान की ढुलाई भी तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद इस रूट पर भविष्य में नई यात्री और एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन की राह भी आसान हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विदेश दौरे से लौटते ही सागर के जहरीली शराब मामले में एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश देते हुए कहा कि आम लोगों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सागर संभाग के नए आयुक्त के रूप में दिलीप कुमार और सागर पुलिस रेंज के आईजी की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इरशाद वली को दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब मुक्ति के लिए सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है।
1: शराब किसी प्रकार से वेद हो या अवैध शराब से जो खतरा होता है, इससे निपटने के लिए सामाजिक स्तर पर भी प्रतिबद्धता की जरूरत पड़ेगी। तो नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए हम धार्मिक संस्थाओं के साथ में, सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ अलग अलग प्रकार से शासन के स्तर पर भी नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता है।
0: प्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए कल से इंदौर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस समिट का शुभारंभ करेंगे, जिसमें निजी बस ऑपरेटर, परिवहन विशेषज्ञ, आईटी कंपनियां और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिट का मुख्य फोकस मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीपीपी मॉडल के जरिए बस सेवाओं को बेहतर बनाने पर रहेगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की सक्रियता फिलहाल कमजोर पड़ गई है। मौसम विभाग ने आज किसी भी जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। कल यानी शुक्रवार को उमरिया, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 सितंबर से मौसम में फिर बदलाव के आसार हैं और पश्चिमी हिस्से में तेज बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 189 पात्र कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की बड़ी राहत दी है। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने 39 वार्डों के लिए 134 सर्वे दलों का गठन किया है। खंडवा जिले के ग्राम कालमुखी में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत कल जनसेवा शिविर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ पर कल नर्मदापुरम के आंगनवाड़ी केंद्रों में एक पेड़ बेटी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं पन्ना जिले में अभियान का शुभारंभ रैली निकालकर किया गया। अशोकनगर के जिला शिक्षा केंद्र में रिक्त सहायक परियोजना समन्वयक और बीआरसी पद के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 25 सितंबर 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। झाबुआ में जनजाति कार्य विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तरीय हेल्प डेस्क गठित किया गया है। और आगरमालवा जिले के वृंदावन ग्राम तनोड़िया में कल पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय

के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की।

0: एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 160,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
5: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंधकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंधकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट।

0: पार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनिता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मौके में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधु सिद्धा, सुप्रिया और रोशनी एंड ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

ప్రస్తుత కార్యక్రమం సదాబహార్ నగమే. इस कार्यक्रम पर आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है. कार्यक्रम का पहला गीत यानी इस कार्यक्रम का पहला गीत पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ सुनिए. गायिका हैं लता मंगेशकर और फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने.

ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था बेदर्द जमाना क्या जाने। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, फिल्म का नाम जाली नोट। शब्दकार राजा मेहदी अली खान और संगीतकार ओपी नैयर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म काला पानी का दो गाना सुनिए, स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के, शब्द मजरू सुल्तानपुरी के हैं और तर्ज सचिन देव बर्मन की है।
2: दिल वाले होए अब तेरी गली तक आ पहुंचे,
3: ओ दिल वाले अब तेरी गली तक आ

0: आप।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फिल्म का नाम एक फूल चार कांटे। बोल हसरत जयपुरी के हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है बरसात की रात, गीत साहिर लुधियानवी का है और धुन रोशन की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: और आइए अब सुनते हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, स्वर लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है मुगले आजम।

लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मुगले आजम। गीतकार शकील बदायूनी थे और संगीतकार थे नौशाद साहब। गीतकार शकील बदायूनी थे। और आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। ये आवाज लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है बिंदिया।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था बिंदिया। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: की सहेली।
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों की और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आरती, आज तुम भी हो तो मेरे साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: मंजरी, आपको, सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: और बताओ कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक।
1: आज हमारे क्या क्या विषय हैं?
2: विषय सीधे विषय पे आते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आज हम विषय लेकर आए हैं घर की सफाई, क्योंकि त्योहारों का मौसम है मंजरी जी। तो ऐसा होता है ना कि जब त्योहारों का मौसम होता है तो साफ सफाई ये तो लगा ही रहता है। तो किस तरीके से हम घर की सफाई में लगते हैं और आसानी से सब लोग मान जाते हैं सदस्य घर की सफाई करने के लिए, या फिर नोक झोंक थोड़ी बहुत होती है, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बहुत अच्छा सा विषय है ना।
2: हम अपने श्रोताओं से कहेंगे ना कि वो लोग भी हमें बताएं कि उनके घर में जब साफ सफाई होती है तो सारे लोग अपने आप अपना परिश्रम करने को तैयार हो जाते हैं, या फिर कुछ कहना पड़ता है, नोक झोंक होती है, रूठना मनाना चलता है।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ साथ उपयोगी टिप्स में बातें होंगे कि जब बनानी हो नई रेसिपी तो इसके अनुभव भी आप लिखें कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है या क्या तैयारियां करती हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और मुझे कुछ कहना में है कि बस 5 मिनट बनाम घंटों की बातें,
2: जो अक्सर देखने में आता है।
1: आता क्या, हम लोग खुद ही करते हैं। तो चलो हमारे सभी साथी छोटी-छोटी सी यादों को ताजा करेंगे
2: कि आपके आप ऐसे किस इंसान को जानते हैं या किसको जानते हैं। हो सकता है आपको पड़ोसी ही हो कि जो 5 मिनट कहते हैं बस सब हम जा ही रहे हैं, लेकिन फिर घंटों चलती रहती है वो बातें, तो उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत जोधैया बाई बैगा, जो की कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उनके बारे में हम बात करेंगे।
1: और आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही गहन विषय है।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन उससे पहले हम लोग सुनते हैं एक गीत।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो आरती आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में और आज हम एक ऐसे दिवस की बात कर रहे हैं जिसके साथ एक ऐसा शब्द जुड़ा है जिस पर बात करना आसान नहीं लेकिन बात करना बेहद ज़रूरी है। ये दिवस है आत्महत्या रोकथाम दिवस। आत्महत्या शब्द ही बहुत दुखद है और इसलिए इस बात को गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस जागरूकता इसे मतलब जागरूकता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और जब भी कभी ऐसी दिमाग में किसी के भी ये बात आती है कि हम अपने जीवन को समाप्त कर ले तो उनको सोचना चाहिए कि आपका जीवन जो मिला है जीने के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बार विचार मंथन करें फिर आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं अपनी समस्याएं जो है वो किसी और को बता भी सकते हैं।
4: बिल्कुल। और इस दिवस को जागरूकता दिवस बनाने की शुरुआत हुई साल 2003 में और अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सहयोग से की गई थी। और इस दिन का उद्देश्य है लोगों में जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत को प्रोत्साहित करना और ज़रूरत के समय मदद लेने के महत्व को समझाना कि ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हो जाएंगे अगर आप किसी की मदद ले लेंगे, बल्कि मदद लेने से क्या होता है ना कि हमारी जो समस्या है जो हम उसको उस समय हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं किसी परेशानी की वजह से, तो सामने वाला हो सकता है हमारी परेशानी का हल ढूंढ के में दे दे।
3: बिल्कुल आरती। और कभी कभी जीवन में परेशानियाँ इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है और ऐसे समय में सबसे ज़रूरी है कि आपस में बातचीत की जाए। अगर कोई व्यक्ति जो है लगातार उदास दिखाई दे और लोगों से दूर रहने लगे, अलग अलग सा अपने आप को रखे, निराशा की बातें करे या कहे कि वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है तो उसकी बात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर के बच्चे हों चाहे कोई भी हो व्यक्ति आपके साथ
4: मित्र भी हो सकता है।
3: हाँ, मित्र भी हो सकता है। तो कभी भी कुछ ऐसा आपको या उदास भी आपको दिख रहा है तो आप उसकी उदासी को दूर करने के लिए उससे घुले मिलिए, उससे दिल की बात जानने के लिए आगे आइए जिससे वो अपनी बातों को आपसे कह सके और आप उसको ये विश्वास दिलाइए कि भाई तुम्हारी बातें मैं अपने तक ही रखूंगा, है ना।
4: बिल्कुल। और किसी को भी अगर कोई अपनी परेशानी आपको बता रहा है तो उसे डांटने या उसकी परेशानी को छोटा बताने के बजाय, कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, तो ऐसा करने के बजाय

0: उसकी बात को धैर्य और ध्यान से सुनना चाहिए, उसे इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि वो अकेला नहीं है और हर परेशानी का हल शांति और समझदारी के साथ निकल सकता है। किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़े बड़े समाधान जरूरी नहीं होते, कभी कभी किसी की बात को ध्यान से अगर हम सुन लेते हैं ना तो वो ही बड़ी बात हो जाती है, या फिर हम उसके लिए कुछ थोड़ा सा समय निकाल लें, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताएं और उसे ये महसूस कराएं कि वो अकेला नहीं है, तो बहुत मायने रखती है।
1: बिल्कुल सही बात है, ऐसे में साथ बहुत ज़रूरी होता है किसी का भी, और इसीलिए जब भी ऐसा लगे कि परेशानियों से जूझना मुश्किल हो रहा है, माता पिता, परिवार के सदस्य, शिक्षक, मित्र या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से आप तुरंत बात करें, और अगर हमारी जानकारी में कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो कुछ सरकारी व निःशुल्क हेल्पलाइन सेवाओं का संपर्क भी किया जा सकता है।
0: बिल्कुल, आप संपर्क कर सकते हैं और आप इंटरनेट पर इसको सर्च कर सकते हैं, और साथ ही वर्ष 2024 से लेकर 2026 तक के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम तय की गई है, जो कि है आत्महत्या पर धारणा को बदलना, और जिसका उद्देश्य इसके इर्द गिर्द के सामाजिक कलंक को कम करना और खुलकर बातचीत को शुरू करना है, जिससे कि बातचीत होने से हमारा तनाव भी कम होता है और हम अपने परेशानियों का हल भी आसानी से ढूंढ सकते हैं।
1: बिल्कुल, और हम लोग सुन लेते हैं गीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री की, जोधैया भाई बैगा, जो कला से संबंधित हैं और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की रहने वाली। जोधैया भाई ने जीवन के 6 दशकों से अधिक समय तक बेहद गरीबी और कड़े संघर्ष का सामना किया। 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद उन्होंने रंग और कूची थामी और देखते ही देखते कला जगत का एक बड़ा नाम बन गई।
3: बिल्कुल, और जोधैया बाई, जिन्हें लोग जोधैया अम्मा के नाम से भी जानते हैं, उन्हें बैगा चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। वो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाना माना नाम है। एक मजदूर से चित्रकार तक पहुंचने का जोधैया बाई का जो मार्ग था वो बहुत ही संघर्ष भरा रहा।
2: बिल्कुल, और जब जोधैया बाई के पति मैकू बैगा का निधन हुआ, उस समय जोधैया बाई के 2 मासूम बच्चे उनके साथ थे और तीसरी संतान गर्भ में थी। अपने बच्चों के लालन पालन के लिए मजदूरी करते हुए जोधैया बाई ने अपनी तीसरी संतान एक बेटी को जन्म दिया।
3: बिल्कुल, और बेटी के जन्म के साथ ही जोधैया बाई को कमजोरी ने घेर लिया। 3 बच्चों की जिम्मेदारी ने उन्हें अपने ही शरीर की कमजोरी के साथ लड़ने को विवश कर दिया था। परिणाम स्वरूप बेटी के जन्म के साथ ही वो एक बार फिर जीवन के रण में दुखों से संघर्ष करने के लिए उतर पड़ी थी।
2: और पीठ पर मासूम बच्ची को बांधकर जोधैया बाई गाय, भैंस, बकरी चराने जाती थी। जंगल में वापसी में लकड़ियां बिन कर लाती थी और जिसका बोझ भी उनके अपने सिर पर होता था। गांव में लोगों के घरों को लीपना, आंगन और दीवारों को गेरू से सजाना, खेत में मजदूरी करना, यही उनके जीवन की भाग दौड़ थी। यानी बहुत ही संघर्ष भरा उनका दिन था।
3: बिल्कुल, और संघर्ष से जूझ रही जोधैया बाई के जीवन में बदलाव तब आना शुरू हुआ जब आशीष स्वामी ने लोढ़ा गांव में अपना स्टूडियो जगन तस्वीर खाना खोला और स्थानीय लोगों को अपने यहां काम पर रखा, जिसमें जोधैया बाई का बड़ा बेटा भी शामिल था। एक दिन आंगन लीपने के लिए वो अपनी मां जोधैया बाई को स्टूडियो ले गया था और साथ ही जोधैया बाई ने अपनी ही शैली में उस आंगन को ऐसे लीपा और उसे गेरू और छुई मिट्टी से ऐसे सजा दिया कि उसे देखकर आशीष स्वामी इतना खुश हुए कि उन्होंने जोधैया बाई जैसी बुजुर्ग महिला से, और लेकिन साथ ही साथ वो उनसे काम कराने पर थोड़ा नाराज भी हो गए थे कि आपने इतनी उम्र दराज महिला से कैसे काम कराया। और इस दौरान उन्होंने सुरेश बैगा ने, जो उनके बेटे थे जोधैया बाई के, उन्होंने बताया कि उनकी माँ अभी भी मजदूरी करती हैं
2: और आशीष स्वामी ने उन्हें अम्मा करके संबोधित किया और कहा कि अब से अम्मा मजदूरी नहीं करेगी बल्कि चित्र बनाएंगी। जोधैया बाई ने बताया कि जब आशीष स्वामी ने उन्हें चित्र बनाने का काम दिया तो वे घबरा गई थी। उन्होंने पहले तो साफ मना कर दिया कि ये लिखने पढ़ने का काम उनसे नहीं हो पाएगा। तब आशीष स्वामी ने उन्हें उनसे दीवार पर चित्र बनवाए, बाद में लकड़ी और सूखे कुम्भड़े, लौकी और तरोई पर चित्र बनवाए। जब उन्हें चित्र बनाने के लिए कागज दिया तो वे डर गई कि कागज और रंग दोनों ही खराब हो जाएगा, लेकिन आशीष स्वामी ने उन्हें थोड़ा डांट कर चित्र बनाने के लिए कहा।
3: बिल्कुल, और जब गुरुजी की डांट पड़ने लगी तो 70 साल की आयु के करीब पहुंच चुकी जोधैया बाई किसी मासूम बच्चे की तरह अपने घर में छिप जाती थी और उन्होंने उनके जो गुरुजी थे उनके घर जाते और उन्हें जबरन अपने स्टूडियो ले आते। उनकी पेंटिंग्स में बैगा समुदाय की परंपराएं, लोक कथाएं, देवी देवता और विशेष रूप से प्रकृति, जैसे कि महुआ का पेड़, जंगली जानवर और पक्षी एकदम जीवंत रूप में दिखाई देते थे।
2: और उनकी बनाई पेंटिंग्स को देश विदेश में बेहद पसंद किया गया। उनकी कलाकृतियों को प्रदर्शनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भोपाल और दिल्ली के अलावा पेरिस, फ्रांस और मिलान, इटली जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों में भी आयोजित की गई। जब वर्ष 2022 में जोधैया बाई को राष्ट्रपति से नारी शक्ति सम्मान मिला था, तब स्वर्गीय आशीष स्वामी की तस्वीर के सामने बैठकर जोधैया बाई काफी देर तक रोती रही थी।
3: बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उन्हें सिखाया था
2: जी,
3: उस जगह तक पहुंचाया था। फिर वर्ष 2023 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 15 दिसंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में जोधैया बाई बैगा की उनके पैतृक गांव लोरहा उमरिया में निधन हो गया। उनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि हुनर और सफलता के लिए उम्र कोई बंधन नहीं होता है।
2: बिल्कुल सही कहा आरती। और देखो जहाँ पर वो रह रही थी तो आसपास की जो चीज़ें उपलब्ध थी, जैसे तरुई बताया है उन्होंने, है ना, कुम्भड़ा है, तो इन चीज़ों पे वो चित्र बना रही थी, तो एक कहते हैं हाथ भी साफ हो जाता है और आपकी जो कला है वो धीरे धीरे निखर के सामने आती ही आती है। और जब उनके सोचो अगर चित्र वो देखो तो कैसा लगेगा ना कि कितनी सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं उसमें।
3: बिल्कुल। तो और कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमारे पास ये साधन नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीज़ें एक बहाने की तरह से ली जा सकती हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर एक करने का जज्बा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
2: भी हम सोचते हैं ना कि पहले इतने सारे ब्रश खरीद के लाएंगे या हमारे पास पूरे रंगों का डिब्बा होना चाहिए, तो इसकी जरूरत नहीं। अगर आपके पास दो रंग भी हैं तो आप उससे भी अपनी कला को शुरू कर सकते हैं।
3: देखिए उन्होंने प्रकृति से ही कला को लिया, प्रकृति से ही रंगों को लिया और प्रकृति के सामान पे ही उसका उपयोग किया।
2: प्रकृति में तो कितने सारे रंग हैं और कितनी सारी कला है। हम आसपास नजर दौड़ाएंगे तो लगेगा हम ये पत्ती भी बना लें, ये फूल भी बना लें, है ना। तो जब तस्वीरें अच्छी बन जाती हैं तो उनको लगता है कि भाई हम इसको अपने पास एकदम संभाल के रख लें, है ना। तो चलो इसी के साथ
3: सुन लें।

0: तो आरती तस्वीर को इतनी अच्छी होती है ना, लगता है कि उसको सीने से लगा के रख ले, है ना?
1: बिल्कुल.
0: लेकिन जब बात आती है कि घर में साफ सफाई की बात आती है तो बस लगता है कि
1: सारी तस्वीरों को तो नहीं रख सकते ना सीने से लगा के.
0: सही बात है. और जब घर में साफ सफाई की बात आती है तो लगता है कि भाई शुरुआत कहाँ से की जाए, है ना?
1: बिल्कुल.
0: तो हमारे जो श्रोता भाई लोग हैं, सखियां हैं, ये बहुत आसानी से हमें बता देंगे कि मतलब कहाँ से सफाई की जाए. तो हमारे साथी का संदेश हम उठा लेते हैं, लिखते हैं कि घर की साफ सफाई सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं है, वो रिश्तों का आईना है. जहाँ साझेदारी होती है वहाँ काम बढ़ जाता है और बोझ हल्का लगता है, लेकिन जहाँ इसे एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी समझा जाता है वहाँ धीरे धीरे नोक झोंक पनपती है. इसलिए समझदारी इसी में है कि सफाई को ड्यूटी नहीं साझेदारी बनाया जाए. थोड़ी मदद, थोड़ी तारीफ और थोड़ा समय पर किया गया काम घर को भी साफ रखता है और मन को भी साफ रखता है. क्या बात आपने कही है ना?
1: बिल्कुल. एक और हमारे साथी जो कहते हैं कि घर की सफाई बिना नोकझोंक के घर के हर सदस्य की भागीदारी से होनी चाहिए. इस बात पर एक गुजराती मुहावरा भी है, झाझा हाथ रलियामड़ा, मतलब एक हाथ के मुकाबले ज्यादा हाथ से काम सुंदर तरीके से और जल्दी पूर्ण होता है. इसके अलावा फिल्म नया दौर का गीत भी सही संदेश देता है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना.
0: बिल्कुल. सफाई करते समय ये गाना जरूर गुनगुनाना चाहिए जिससे एक एकता बने. और फिलहाल तो हम लोग एक अंतराल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं.

0: अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत है और आरती कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अगला संदेश क्या कहता है आरती, बताओ जरा।
1: अब हमारे एक श्रोता सब भाई हैं जो हमारे साथी हैं, जो कहते हैं कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के आपसी प्रेम से बनता है। एक साफ सुथरा घर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए सफाई को लेकर आपस में नोकझोंक करने के बजाय इसे एक खुशनुमा साझेदारी में बदले। जब पूरा परिवार मिलकर हाथ बढ़ाएगा तो घर का कोना कोना तो चमकेगा ही, साथ ही आपसी रिश्तों में प्यार की चमक भी बढ़ जाएगी।
0: क्या बात आपने कही है, बहुत अच्छी अच्छी सी बातें लिखकर भेजी हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई हो या रोजमर्रा के छोटे बड़े काम, कभी कभी इन्हीं बातों को लेकर घर में नोकझोंक हो जाती है, कभी भाई बहन में, कभी पति पत्नी में, तो कभी परिवार के किसी और सदस्य के बीच। और तुमने ये सब काम क्यों नहीं किया, या मैं ही सब क्यों करूँ, जैसी बातें सुनाई दे जाती हैं। लेकिन हर नोकझोंक मन मुटाव नहीं होती, घर की साफ सफाई में आपसी सहयोग, समझदारी और प्रेम से काम आप लें और थोड़ी सी नोकझोंक में मुस्कान जोड़ दें और मैं की जगह हम को महत्व दें। भाई ऐसी अगर बातें होती हैं ना, तो बेचारे जो हमारे सामान होते हैं ना, वो बेचारे इंतजार करते हैं कि भाई ये लोग तो आपस में ही लड़े।

0: आ रहे हैं, कब हमारे पास आएंगे, कब हमको पूछेंगे, है ना? तो भाई ये चीज है कि आप मुस्कुराएं एक दूसरे के साथ और आपस में हाथ बटाएं, है ना?
1: और एक साथ हमें कितना समय भी, सोचिए कितना समय भी बिताने को मिलता है साथ में। हम लोग काम कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, हो सकता है हम वहाँ पे गाने चला के अरे थोड़ी देर के डांस भी कर लें,
0: क्या
1: गुनगुना भी लें, बहुत कुछ कर सकते
0: हैं। तुम्हारा ये जो तरीका है ना, ये बहुत अच्छा है कि गाने बजा लें, अपना सुने बढ़िया गाने और मन करे तो डांस करें। लेकिन ये नहीं कि आपने लेके झाड़ू चालू हो गए डांस करना, तो
1: थोड़ी देर चलता है,
0: इधर उधर फैल गई गंदगी, वो भी ना करें। चलो अगला क्या संदेश है हमारे साथी
1: जो लिखते हैं कि घर की सफाई हमेशा समझदारी और आपसी तालमेल से होनी चाहिए, क्योंकि नोक झोंक से सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है और काम का बोझ कम नहीं होता। जब घर के सभी सदस्य मिलकर जिम्मेदारी बांटते हैं तो सफाई एक बोझ बनने के बजाय एक खुशनुमा पारिवारिक गतिविधि बन जाती है। पर कितना भी समझदारी अपना लो, नोक झोंक तो होना ही है। बिना नोक झोंक हुए, चाहे वो बचपन में भाई बहन के साथ हो या ससुराल में पति पत्नी हो, जब तक ये ना हो सफाई में मजा ही नहीं आता। ये बात तो सही कही,
0: बिल्कुल सही कहा। और एक कहावत लिखते हैं हमारे साथी, एक है कि सुंदर और स्वच्छ घर में ही खुशियों का वास होता है, लेकिन जब इसी घर में साफ सफाई की बात आती है तो अक्सर घरों का माहौल थोड़ा बदल जाता है। दिवाली की सफाई हो, वीकेंड का रूटीन हो या रोजमर्रा का झाड़ू पोछा, घर की सफाई अक्सर परिवारों में दो ही मोड़ लेती है, या तो ये बहस और नोकझोंक की वजह बन जाती है, या फिर आपसी मेलजोल और साझेदारी का एक जरिया। तो भी हम तो सफाई के मामले में ये कह सकते हैं कि जो छुट्टी का दिन हो उस दिन आप एक बैग ले लीजिए और बस जो चीज़ आपको, हर कमरे में जाइए, जो चीज़ आपको लग रही है कि हटा सकते हैं तो उनको उसमें रखते जाइए, और शाम होते होते आप देखेंगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी इकट्ठी कर ली हैं जो काम की नहीं है, बहुत टाइम से रखी हुई हैं, तो इस तरह से आप उनको हटा सकते हैं। तो और आप थोड़ा थक गए हों, ये नहीं कि लगातार काम ही करते रहिए, आपस में जाइए, एक चाय बना लाइए, पत्नी को पिला दीजिए, खुद पी लीजिए, अगर वो झगड़ा होते हैं तो रूठ गई है तो उन्हें मना भी लीजिए, है ना? और मनाना है तो भाई ये गाना भी सुना देते हैं, अगर पत्नी रूठ जाए तो वो पत्नी के लिए, पति के लिए गा ले, और पति रूठ जाए तो पत्नी गा ले, तो ये गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे बातें करते हैं।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: तो आरती हमारी बातें चल रही थी ना, तो हमारे साथी एक लिख रहे हैं कि परंपरागत रूप से हमारे समाज में घर की सफाई का पूरा जिम्मा महिलाओं का या किसी एक ही सदस्य पर डाल दिया जाता है, और जब घर के बाकी सदस्य गंदगी फैलाने में तो वो आगे रहते हैं लेकिन समेटने के वक्त गायब हो जाते हैं, तब नोकझोंक की शुरुआत होती है। ये बात तो सही है कि हमारी सखियां बहनें सारा समेटती रहती हैं, उनके दोनों हाथ चलती रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आता है, बल्कि बच्चे तो और फैलाने लग जाते हैं। तो कहना चाहिए कि सबको सहयोग देना चाहिए, बच्चों को भी सिखाएं कि सफाई कितनी जरूरी है। आप जहां बैठते हैं, जिस कमरे में आप सोते उठते हैं, वहां पर सफाई रखिए, और अगर जहां पर खाना खाते हैं टेबल है तो उस जगह आप उसकी सफाई करिए। तो छोटे छोटे काम बांट देने चाहिए सभी को।
6: और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि घर की सफाई नोकझोंक या साझेदारी बड़ा अच्छा मुद्दा है। घर की बहन की नोकझोंक बहन से नोकझोंक हो जाती है, वो कभी पोछा लगा देती है तो हम जाले साफ कर देते हैं, जब कभी बर्तन मांजती है तो हम उसका फोन चलाने लगते हैं।
5: क्या बात है,
6: तब तो आपकी अच्छी तरीके से डांट पड़ती होगी।
5: सही बात है, फोन चला रहे हो काम
6: वो भी उसका।
5: और कई बार ऐसा मुझसे निकल जाता है कि हम इतने भूतों की तरह जुटे हुए हैं, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो साथ में, तो वो चीजें भी कभी कभी हंसी मजाक में भाई बहनों के बीच में निकल जाती है। तो हमारे साथी इसी तरह और लिखते हैं कि भाई जब घर की सफाई या नोक झोंक या साझेदारी की बात होती है तो मेरी पुस्तकें उनको वैसी लगती हैं, अजीब सी लगती है, और पुस्तकों की सुगंध उनको बदबू लगती है। मेरा रीडिंग रूम उनको कबाड़ खाना लगता है, घर का माहौल ऐसा ही है, जोड़ी हमारी जमीन न जाने कैसे जानी, अब तो हम हैं अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी। और इस तरह उन्होंने गीत भी लिखा है कि भाई मुझे ये गीत सुना दीजिए। तो ये चीज तो बड़ी ऐसी चलती रहती है नोक जो घर में होती है सफाई के समय। तो
6: और साथ ही हमारे एक साथी जो लिखते हैं कि घर की सफाई नोक जो क्या साझेदारी, मेरी छुट्टी का दिन हो और घर की सफाई का दिन हो तो मुझे सफाई का सामान पकड़ा देती है और ड्यूटी पर धर्म पत्नी मुझे मतलब सफाई की ड्यूटी पर लगा देती है। अगर मैं आनाकानी करूं तो मुझे मेरी मनपसंद अदरक इलायची वाली चाय का लालच देती है और कहती है कि जितनी बार भी पियोगे बना दूंगी, और मैं राजी भी हो जाता हूँ, भाई चाय मिलेगी तो करना ही पड़ेगा काम।
5: मेरी कोई अगर घर का इतना सारा काम कर रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसके लिए एक कप चाय बना दें, उसको ताजगी महसूस होगी तो फिर वो और ज्यादा काम कर सकती है ना। और हमारे साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई नोक झोंक या साझेदारी, भाई वे घर अब कहाँ हुए जहाँ जब लोग ही फ्लैटों में रहने लगे हैं, नहीं अपितु मियां बीवी दोनों ही नौकरी पेशा होते हुए भी इस कल्चर से प्रभावित होने लगे हैं, फिर कहीं कोई कमी नजर भी आई तो उसके लिए दाई तो है ही ना। लेकिन ठीक है, हम किसी भी घर में रहें, चाहे वो फ्लैट में रहें, चाहे छोटे से घर में, चाहे बड़े से घर में, सफाई तो देखिए सब जगह ही होनी पड़ती। नहीं,
6: और थोड़ा बहुत काम हमें अपने आप करना ही पड़ता है।
5: वो कितना भी आप किसी से करवा लें, लेकिन एक बार तो एक रविवार को आपको जुटना पड़ेगा।
6: जो सफाई होती है, गहन सफाई तो हमें खुद ही करनी पड़ती है
5: ना। तो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।

0: लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
2: बिल्कुल।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो आरती, जो हम बात कर रहे थे ना, तो हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि हम तो यही करते हैं, गानों के साथ काम या फिर भजन के साथ खाना बनाना। क्या बात है। मतलब बहुत ही फिर तो स्वादिष्ट खाना बनता होगा, क्योंकि भक्ति के रस में डूब के अगर आप एक रसेदार व्यंजन बना रहे हैं
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: तो उसका स्वाद ही अलग होगा।
2: वो हमारे जो मन की सोच होती है ना, वो हमारे खाने में भी आ जाती है।
3: बिल्कुल आ जाती है। और भाई जब हम खाना वाना खा के जाते हैं, बाहर निकलते हैं और या कोई घर पे आ गया तो बातें करने लग जाते हैं, देख रहे हैं कि भाई वो सामने वाला कितना बोल रहा है। तो जब किससे शुरू होते हैं ना, तो उनका अंत ही नहीं होता, एक दूसरे से बातें करते हैं। और जब खाते करते उन्हें बाहर छोड़ने जाते हैं तो भी दरवाजे पे खड़े होकर के घंटों बातें चलती है। और कई बार सोच भी रहे हैं कि भाई अच्छा अब चलें, अरे रुकिए भाभी जी ये किस्सा और ये भाई साहब ऐसी बात, तो ये सब चलती रहती है।
2: बिल्कुल। और मंजरी, अच्छा ये चीज़ देखिए, अक्सर हम कहते हैं ना कि अच्छा वो आप थोड़ी देर बैठ जाइए ना, थोड़ी देर बैठ जाइए, नहीं नहीं बहुत हो गया, अरे 5 मिनट बैठ जाइए ना, नहीं नहीं बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा देर हम बैठ नहीं पाएंगे, हमें बहुत काम है, घर पे सारे काम पड़े हुए हैं, अब बैठेंगे तो फिर बहुत काम हमारे पीछे रह जाएंगे।
3: अभी फोन भी आता होगा किसी का ना, ऐसी
2: और ऐसा कहने के बाद भी एक घंटा निकल जाता है।
3: कई बार जिसके साथ आप बातें करें ना, वो ये कहता है अरे छोड़िए आइए एक एक कप चाय और हो जाए, मतलब थोड़ा और बैठ लीजिए। तो उनको भी लगे, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमने तो मान लो सही में कहा या संकोच बस कह तो दिया, लेकिन सामने बोला हाँ चलिए बैठ लेता हूँ एक कप चाय भी लेता, तब पता चलता है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही लंबे बातें खिंच गई है ना। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, है ना।
2: एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि एक मिनट से चलते 5 मिनट तक की बातचीत की सीमा घंटों तक पहुंचाए जाने में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अव्वल नंबर आएगा। उनकी बातचीत में घर से लेकर मोहल्ले तक के इतने सारे विषय जुड़े होते हैं कि बातें खत्म होने में घंटा भर समय भी कम पड़ता है, फिर ये बातें फोन पर हो रही हो या फिर आमने सामने।
3: भाई देखिए, इसमें दोनों लोग की बात करते हैं, महिलाएं नहीं, महिला तो करती, वो तो फेमस है। लेकिन हमारे साथी लोग भी खूब ऐसी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर से निकले बाहर चौराहे पे चले गए या कहीं भी खड़े होकर बात कर रहे हैं, महिलाएं

0: अच्छा, अड़ोस पड़ोस की खबरें लेकर के उनको पूरी खबर रहती कि यहाँ क्या चल रहा है, इधर
1: पूछते भी है फिर अच्छा क्या बातें हुई
0: और कई बार बहुत जानकारी भी मिल जाती है कि भाई इतने दिनों के लिए वो बाहर जा रहे हैं, तो सपोज आपने प्रोग्राम बनाया बाहर जाने का उसी दौरान, तो दो घर खाली रहेंगे, तो इससे पता चल जाता है कि भाई बगल वाला 15 दिन के लिए इस तारीख से जा रहा है, तो चलो हम थोड़े दिनों बाद चले जाते हैं, तो कभी कभी इस चीज का भी फायदा होता है। तो बात जरूर करिए, लेकिन हाँ भाई बहुत ज्यादा देर ना करके थोड़ी देर करिए। हमारे साथी क्या लिखते हैं कि 5 मिनट बनाम 1 घंटा कुछ लोगों की नहीं बहुत लोगों की आदत है, मेरी एक परिचित घंटा भर फोन पर बात कर लेती हैं और तब बोलती हैं अरे तुम तो आती ही नहीं, आओगे तब मिलकर अच्छे से बात करेंगे, फोन पर कितना बात करें। पड़ोस की चाची सास चचिया सास घंटों घर में बैठकर बात कर लेंगी, पर जब आप उन्हें गेट तक छोड़ने जाएंगे तो वहां भी खड़े खड़े आधा घंटा बात करेंगी। उनकी इस हरकत से मेरी सासू माँ कभी चिढ़ जाती थी, गेट पर खड़ा कर क्या बात करना, घर में ही आधे घंटा और बात कर लिया करो, अब कैसे कहा जाए कि आप अब जाइए भाई साहब, जब जाए तभी तो आदमी विदा ले उनसे। लेकिन पीछे से घर वाले जरूर परेशान होते हैं कि भाई तुम फिर वहां खड़ी बातें कर रही हो या अड़ोस पड़ोस से बातें करने लग जाओ, तो ऐसे सीन हमेशा देखने को मिल जाते हैं, लेकिन क्या करें भाई, चल गई बातें तो चल गई
1: चली जा रही है। और मैं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई होने को तो ऐसा भी होता है, जो लोग नौकरी पेशा नहीं है उनके पास समय होता है, ये लोग आपस में ऐसा करें तो बात समझ में आती है, लेकिन जब ऐसे लोग किसी नौकरी पेशा लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे तो ऐसे में वो बात करे या फिर नौकरी पर जाए, वो तब भी जब सामने वाला अपना कोई अपना ही हो तो आप उनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको बुरा लग सकता है कि अब हमें जानना है निकलना है काम पर।
0: और एक लिखते हैं कि चाहे मोबाइल पर बातचीत हो या लैंडलाइन पर, मैं तो शॉर्ट में और टू द पॉइंट बात करना पसंद करता हूँ, ये मेरी आदत मेरी धर्म पत्नी की भी है। और एक लिखते हैं कि हम 6-7 सहेलियां पार्क के गेट पर आते जाते, जब तक कि सुबह सभी बहुत बिजी रहती है फिर भी खड़े खड़े बात करते रहे, फिर चलते हैं कहकर फिर कोई नई बात शुरू हो जाती है और 5 मिनट की बात 1 घंटे की हो जाती है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि हमें घंटों की निरर्थक बहसों और फालतू की गपशप को अलविदा कहना चाहिए, इसके बजाय 5 मिनट की सार्थक बातचीत को अपनाना चाहिए, और जो जो हमारे समय की इज्जत करे, हमें कुछ सिखाए और जीवन को एक कदम आगे बढ़ाए।
0: और हमें एक गीत सुन लेना चाहिए।
2: यूं ही तुम मुझसे

0: तो भाई देखो, हमारी जो सखियों ने लिखे हैं कि उपयोगी टिप्स में लिखा है कि रेसिपी में लिखी सभी सामग्रियां, मसाले, सब्जियां, तेल आदि पहले इसे निकाल कर काउंटर पर रख लें। चॉपिंग पहले कर लें, सब्जियों को काटना, प्यूरी बनाना या सूखा मसाला पीसना, ये सारे काम गैस चालू करने से पहले ही पूरी तरह से कर लें। बदलाव से बचें, पहली बार में सामग्री को किसी दूसरी चीज़ से बदलने की कोशिश ना करें, जो लिखा है वही इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल। और हमारी एक साथी जो हमें एक रेसिपी लिख कर भेज रही हैं कि जैसे कि पिज़्ज़ा रोटी है तो रोटी चाट और आप बचे हुए रोटी से आप सैंडविच भी बना सकते हैं, वो भी खाने में बेहद स्वाद लगते हैं। इसी तरह आपको बचे हुए चावल से नई रेसिपी बनाने की टिप्स देती हूँ। चावल के पकौड़े, चावल को आप फ्री करके करके खा सकते हैं और फ्राइड राइस भी बना सकते हैं उसको, और फ्राई करके भी खा सकते हैं, फ्राइड राइस भी बना सकते हैं और बेहद स्वादिष्ट लगते हैं।
0: और हम गीत

0: तो भाई हमें तो जाना ही पड़ेगा, तो कार्यक्रम से लेते हैं सर विदा। सभी को मंत्री वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अंशी पाठ।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप ही की बातें हैं, आपकी ही पसंद है, आप ही की यादें हैं और आप ही की फरमाइश भी है। तो आइए कुछ बातें करें, जुड़े आप सब से आपके अपने खूबसूरत सफर से। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो
1: जी, हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार, अरे कौन बोल रहे हैं आप।
1: जी मैम, सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं
1: जी मैम? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों।
1: जी मैम अभी तो खाली है बस, आज का सीजन चल रहा है।
0: अच्छा
1: जी, अभी गाँव में थोड़ा बहुत काम लगता है तो कर लेते हैं।
0: जैसे क्या काम कर रहे हैं गाँव में, कौन सा गाँव है आपका?
1: जी मेरे गाँव का नाम है कीरतपुरा।
0: कीरतपुरा
1: जी।
0: अच्छा, कैसा है आपका गांव? अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए हमें, क्या क्या सुविधाएं हैं या क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको?
1: जी मैम यहाँ पे ज्यादा सुविधाएं तो नहीं है, वैसे ही तो देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादा कीचड़ हो जाता है बरसात के सीजन में। हाँ, तो हमारे गांव के पास में एक दूसरा गांव, वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, तो वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं।
0: अच्छा,
1: वहाँ पे हनुमान जी को कहते हैं कि पसीना भी आता है उनकी मूर्ति से।
0: अच्छा, ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं।
1: जी मैम, वहाँ पर उनको एसी लगाना पड़ता है उनके कमरे पे, गर्मियों के सीजन पर उनको इतना पसीना निकलता है।
0: अच्छा,
1: मेरी आपसे 2 महीने पहले बातचीत हुई थी।
0: अच्छा कब हुई थी?
1: जी मैम मेरी 25 जून को हुई थी आपसे।
0: अच्छा, आपने तारीख को नोट कर लिया या आपको याद है ये तारीख?
1: नहीं मैम, तारीख याद है, आपसे बात हुई है, कैसे भूल सकते हैं हम लोग।
0: बहुत सुंदर। किस तरह के कार्यक्रम सुनते हो विविध भारती में, कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
1: जी आपका सखी सहेली कार्यक्रम और आपका जिज्ञासा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: अरे वाह, जिज्ञासा पसंद है, यानी आपको साइंस पसंद है।
1: जी मैम।
0: बड़ा गंभीर कार्यक्रम है वो तो, और उसमें जानकारी मिलती है ना, ज्ञान विज्ञान को
1: जी
0: लेकर।
1: मैम।
0: और सखी सहेली
1: जी
0: में
1: मैम।
0: आप सखाओं को क्या पसंद आता होगा?
1: जी मैम, हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं विविध भारती सर, तो हम तो बचपन से ही सखी सहेली सुन रहे हैं, और ऐसा है कि जानकारी तो कहीं से ही मिले लेनी चाहिए।
0: हाँ ये बात अलग है कि जानकारी आपको कहीं से भी मिल सकती है ना।
1: जी
0: तो कभी रसोई में घुसकर खाना बनाया है आपने? जब सखी सहेली कार्यक्रम सुनते हैं तो उसमें तो हम व्यंजनों की बात भी करते हैं, सखी सहेलियों की बात भी करते हैं।
1: जी मैम, खाना बनाना तो नहीं आता लेकिन सुन लेते हैं।
0: खाना खाना आता है बस, है ना?
1: जी मैम।
0: हाँ, और खाने में नुक्स निकालना आता है कि आज नमक नहीं डाला, आज पानी ज्यादा डाल दिया, आज तेल ज्यादा डाल दिया, मिर्च कम डाल दी, ऐसा?
1: नहीं मैम, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, कौन सा गीत आपके दिल के सबसे करीब है?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है कुदरत का कानून, उसमें एक गीत है तुझे कितना प्यार करें।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आप मंदाकिनी दीदी बोल रहे हो?
0: हाँ जी जी बिल्कुल, आप बताइए अपना नाम।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्मा सिंगारे बात कर रही हूँ दीदी। तीन महीने हो गए दीदी मेरे कॉल को, 3 महीने से आपके आपके साथ ही बात हुई हुई थी दीदी मेरी।
0: अरे वाह, क्या नाम बताया आपने अपना? पद्मा।
1: पद्मा सिंगारे।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है आपका तो।
1: गाना सुनना है दीदी, आप कैसे हो दीदी?
0: मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छी हो गई हूँ।
1: मेरे को गाना सुनना है दीदी।
0: गाना तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये बताइए आज आप क्या कर रही हैं, कितनी बिजी हैं, आज दिन भर आपने क्या काम किया, कुछ तो बताइए।
1: आज तो दिन भर में इतना काम करे दीदी का, मेरी बेटी आई थी कल तो उन राखी बांधने के लिए, तो मेहमान का खाना बनाया दीदी, जो आए थे अपनी मेरी मम्मी पर आई थी।
0: अरे वाह,
1: हाँ बहुत सारा काम करी दीदी आज मैंने।
0: थक गई फिर?
1: थक गई, आज मेरा भैया अपन आए थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जब बहुत ज्यादा काम करके थक जाती हो तो क्या करती हो, विविध भारती सुनने लगती हो?
1: नहीं तो दीदी आप तो रेडियो सुनते ना दीदी, हेलो फरमाइश सुनते हो दीदी?
0: अच्छा,
1: हाँ चालू रहता है दीदी मेरे यहाँ।
0: अरे वाह, सुबह से शाम तक चालू रहता है विविध भारती?
1: चालू रहता है, सुबह हमारे अमरावती ये केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: हाँ,
1: और 11 बजे से हमारा विविध भारती चालू रहती है।
0: अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने इतना सारा खाना बनाया त्योहार के लिए, क्या क्या बनाया था खाने में?
1: मैंने दीदी रोटी बनाई, चावल बनाई, दाल बनाई, पूरन पोली बनाई दीदी मेहमान के लिए।
0: पूरन पोली तो मुझे भी बहुत पसंद है।
1: आओ दीदी खाने को।
0: हाँ, अब मुझे लगता है आना पड़ेगा आपके घर ना पूरन पोली खाने मुझे।
1: आओ ना अभी अमरावती आएगी ना, हमारे घर आना दीदी।
0: पक्का पक्का, बिल्कुल आऊंगी।
1: हाँ दीदी,
0: आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आज आप बहुत खुश भी लग रही हैं, इतनी व्यस्त होते हुए भी थकान भी नहीं लग रही है आपकी बातों में, है ना?
1: नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो थकान रोज ही नहीं लगती दीदी। रोज मैं काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, और मेरे जो पोता पोती है
0: हाँ,
1: उनको इससे ले जाना, छोड़ना, लाना, ये सब मैं करती हूँ दीदी।
0: अरे ऐसे तो आधी थकान दूर हो जाती है बच्चों के साथ तो
1: दूर हो जाती दीदी।
0: हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी आप?
1: डॉन फिल्म का चित्रपट है दीदी।
0: डॉन फिल्म का कौन सा गाना?
1: अरे दीवानो मुझे पहचानो।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: अरे दीवानो मुझे पहचानो।

0: दिल में कैसा है कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन।
1: हेलो,
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
2: न मांगी कोई दुआ, न कोई गुजारिश की, न कोई फरियाद, न कोई नुमाइश की, जब झुका सर सजदे में खुदा के, तो हेलो फरमाइश में जिनसे मेरी बात हो रही है उनकी खुशी की ख्वाहिश की।
1: अरे किनसे बात हो रही है आपकी हेलो फरमाइश में?
2: मंदाकिनी जी से।
1: अरे शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमारी खुशहाली की दुआएं की है। बताइए अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं ये तो बताइए।
2: पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी।
1: कैसे हैं आप बताइए मोहम्मद रफी साहब?
2: बहुत अच्छे मैडम, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं
2: जी जी।
1: क्या कर रहे हैं इन दिनों?
2: इन दिनों मैडम सिलाई का काम करते हैं हम लोग।
1: अच्छा, क्या सिल रहे हैं?
2: घनी बैग का काम है।
1: बैग का?
2: हाँ जी।
1: अच्छा, आपका नाम इतना खूबसूरत है, क्या याद आता है आपको अपने नाम के साथ?
2: मेरे को मैडम रफी साहब याद आते हैं और उनके गाने याद आते हैं।
1: रफी साहब का कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
2: ये उम्मीद का है ना, मुझे इसके तुझे से, फिर राजा रंग का, फिरकी वाली, सारे गाने मैडम उनके तो
1: पसंद आते हैं। अच्छा, आपको घर में किस नाम से पुकारते हैं? आपका घर का नाम क्या है?
2: घर का नाम बबलू है मैडम।
1: बबलू, बड़ा प्यारा नाम है ये बबलू, है ना? तो बताइए, जब आप छोटे थे आपको बबलू कहा जाता था, यानी आप बचपन में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको तुरंत खुश कर देती थी?
2: मुझे तो मैडम खिलौने मिल जाते थे तो बहुत खुशी हो जाती थी मैडम।
1: अच्छा, खिलौने मिलते थे बचपन में? आपके माता पिता खिलौने ला के देते थे आपको?
2: हाँ, मेरी मम्मी ने बहुत ध्यान रखा मेरा और खिलौने भी मुझे ला के दिए थे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी।
1: क्या क्या खिलौने थे आपके पास बताइए?
2: वो गाड़ी आती थी चार पहिए की प्लास्टिक की मैडम, वो और बंदूक आती थी वो।
1: लड़के लोगों के पास बंदूक नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता है, जभी तो हमने जानना चाहा।
2: चाबी की मोटर आती थी ना, जो उसको चलाते थे अपन।
1: हाँ हाँ हाँ,
2: चाबी की मोटर, उसको चाबी भर दो तो छोड़ दो तो वो बहुत दूर तक जाती थी।
1: उसको देखकर तो मजा आता था।
2: बचपन की यादें में कहीं बोला नहीं सकता मैडम।
1: लेकिन अगर अब आप अपने बच्चों की बचपन की बात करें तो क्या कहेंगे? आपके बच्चे हैं, क्या ला के देते हैं उनको खिलौने? लाके देते हैं?
2: शादी नहीं मैडम मेरी।
1: अरे आपकी तो शादी नहीं हुई। चलिए, तो आप भी अपने बच्चों के बचपन का जो है ख्याल रखिएगा, जब आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तो उनका जो बचपना है उसे कभी दूर मत होने दीजिएगा, क्योंकि बचपन से सुंदर जो है समय कभी नहीं मिल पाता।
2: जी जी सही।
1: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप बताइए?
2: फिल्म का नाम है हम पांच, मिथुन चक्रवर्ती और सुष्मिता पाटिल पर फिल्माया गया है। और गाने के बोले का जानू मैं सजनिया चमके ही कब चंदनिया गरमा गरी।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम।
0: कैसे हैं लोकेंद्र जी?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और विविध भारती को, प्रसार भारती मोबाइल ऐप और जो डीटीएच पर भी सुन लेते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहते हैं विविध भारती के।
0: आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है मेरी, बहुत पहले।
1: हाँ आज से करीब 6 महीने पहले हुई थी मेरी बात आपसे।
0: कैसे हैं बताइए, इन 6 महीनों में क्या कुछ खास किया आपने?
1: खास तो मैडम जी मेरा तो हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है और मैं हेयर कटिंग सैलून पर काम करता रहता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। आपके अलग जो भी विविध भारती के सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे मन चाहे गीत है, हेलो फरमाइश है, सखी सहेली है। सखी सहेली में वो प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, जैसे कि वो खाना बनाने की टिप्स बताते हैं ना अलग अलग, कि खाना अलग अलग दो किस प्रकार के भोजन व्यंजन बनाते हैं, वो अच्छा लगता है। और सभी प्रोग्रामों की मुझे जो अपडेट है वो अपडेट तो फेसबुक पेज के माध्यम से मिल जाती है।
0: इसका मतलब आप खाने के शौकीन है तभी आपको वो पसंद है।
1: बिल्कुल अच्छा लगता है मैडम जी खाना, और मैं खाना घर में बना भी लेता हूँ, वाइफ के साथ में उनको हाथ बटा देता हूँ, सिर्फ मुझे रोटी बनाना नहीं आती, बाकी सभी व्यंजन बना लेता हूँ
0: अरे क्या क्या व्यंजन बनाते हैं बताइए, पत्नी का हाथ
1: मैडम।
0: कैसे
1: जैसे
0: बटाते
1: कि
0: हैं?
1: हमारे यहाँ उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध भोजन रहता है दाल बाफला और लड्डू, ये मालवा अंचल का मतलब सबसे प्रसिद्ध भोजन है, और ये भी बनाने में उनका साथ में सहयोग कर देता हूँ। और जैसे दाल चावल फ्राई है, दाल फ्राई है, और मटर पनीर की सब्जी है, ये सब प्रकार के व्यंजन मैं खुद बनाता हूँ
0: अरे क्या बात है, कहाँ से सीखा आपने?
1: मैडम जी। ये तो सब मैंने आपके यहाँ से जो टिप्स मिलते हैं उसको देखते हैं, और बाकी जो घर में कभी कभी महिलाएं भी बनाती है तो उनको देखकर हम भी सीख जाते हैं।
0: हाँ, सही बात है ना। और जिनको खाने का शौक होता है ना तो वो कहीं ना कहीं से रेसिपी देख ही लेते हैं कि किस तरह से कौन सा व्यंजन बनाया जा सकता है ना?
1: और खास करके मेरी एक खासियत है कि मैं सिर्फ घर का बना भोजन ही खाता हूँ, मैं बाहर मतलब डिनर पे या कहीं बाहर जाता हूँ ना
0: हाँ
1: तो मैं बाहर का व्यंजन इतना ज्यादा अवॉइड करता हूँ सभी चीजों को, क्योंकि बाहर के जो व्यंजन रहते हैं खैर लगते तो लुभावने हैं, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, ये चीजें, पर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहते हैं, क्योंकि घर का जो शुद्ध शाकाहारी भोजन आप खाएंगे तो उससे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज मेरी 52 साल की उम्र है पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, ना थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कुछ भी नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि पिज्जा बर्गर खाने के हम जितने शौकीन हैं उतनी ही बीमारियां हम पाल भी ले रहे हैं ना। खासतौर से हमारे बच्चे जो फास्ट फूड के शौकीन हैं, आए दिन उनको फास्ट फूड चाहिए है ना, स्ट्रीट फूड चाहिए, तो माता पिता को चाहिए कि घर में ही बना के वो खिलाएं ताकि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो। आप 52 ईयर्स ओल्ड हैं, आपने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
1: आज उज्जैन में महाकालेश्वर जी की सवारी निकाल जाती है, शाही सवारी,
0: अच्छा हाँ
1: और आज शाही सवारी उज्जैन में निकल रही है, बाबा महाकालेश्वर जी खुद दर्शन देने के लिए पालकी में सवार होकर जनता का हालचाल जानने के लिए निकल रहे हैं, और वो सवारी निकल रही है आज।
0: वाह, बहुत सुंदर दृश्य होगा और काफी लोगों की तादाद होगी, भीड़ होगी, काफी लोग आजू बाजू चलेंगे।
1: बिल्कुल मैडम जी, और ये उज्जैन महाकालेश्वर के जो स्थान है ये तो ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है ही सही, पर आज जो शाही सवारी निकली है इसमें करीब नहीं 5 लाख से यात्री जो उज्जैन में दर्शन करने के लिए आए हैं।
0: बहुत बड़ी बात। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि कितना खास दिन हम मना रहे हैं और उज्जैन में खास तौर से इतने श्रद्धालुओं की भीड़ है।
1: जी जी मैडम।
0: जी तो बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: गाना सुनना है मुझे लता मंगेशकर जी की आवाज में, फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, और इसमें एक गाना है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है।
0: अरे बहुत सुंदर गाना है लता जी की आवाज में। चलिए
1: जी मैडम।
0: आप सुनना चाहते हैं ये टाइटल सॉन्ग सत्यम शिवम सुंदरम।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ धन्यवाद दीदी। मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ।
0: राजेश जी स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं?
1: बढ़िया दीदी, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस पे बैठा हुआ, पानी भी गिर रहा है अभी,
0: अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस।
1: बारिश जोरदार हो रही है, 1 घंटा हो गया है।
0: अरे वाह, अच्छी बात है ना।
1: मतलब हाँ मतलब 1 महीने से पानी नहीं आ रहा था यहाँ पर। हाँ, और हमारे परिवार के लोग हैं जो करीब 40 वर्षों से कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: अच्छा, कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप विविध भारती के?
1: इस बात की क्या, जैसे तो मनचाहे गीत अभी चालू कर दिया आपने
0: आपने पत्र लिखा है
1: आपने
0: मनचाहे
1: बहुत
0: गीत में।
1: बिल्कुल किश्तियाँ बहुत जा रही है, लेकिन उसका समय कम है, डेली किया जाए। और हेलो फरमाइश का समय भी जैसे आपने 1 ही दिन कर दिया, ये आप 2 दिन ही किया जाए। जैसे
0: चलिए तो आप प्रिंटिंग
1: इसमें
0: प्रेस में काम करके समय निकाल लेते हैं हमसे फोन करने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे कारीगर काम करते हैं ना, हम तो क्या है डायरेक्शन देते हैं। जैसे मतलब हमारे पास 2-3 कारीगर है और बाकी के समय हम जैसे सुनते रहते हैं, समय रहता है तो। फरमाइश कार्यक्रम हमारा खास है, जैसे मनचाहे गीत है, इसके बाद ये हेलो फरमाइश है,
0: हाँ, ये
1: ये
0: सभी
1: सब
0: कार्यक्रम आपको
1: कार्यक्रम।
0: पसंद हैं बिल्कुल।
1: हाँ
0: तो बताइए आज
1: ये
0: कौन सा
1: मेरा
0: गीत
1: गीत
0: सुनवाएं।
1: आज गीत है, ये उजाला पिक्चर का झूमता मौसम मस्त महीना, क्योंकि जय किशन साहब की पुण्यतिथि है
0: जी,
1: तो उनका बनाया हुआ गीत है ये, तो वो वाला ही सुनवा दीजिए। और हमारे साथ में हमारे परिवार के लोग भी सुन रहे हैं इस गीत को। शांति महाजन है, मुकेश महाजन है, नीता महाजन है और राकेश महाजन है।
0: चलिए तो आप सभी मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
2: झूमता मौत

0: हेलो,
1: आपकी दोस्ती ही मेरी जान है। शायद इस हकीकत से आप अनजान हैं। मुझे खुद नहीं पता मैं कौन, क्योंकि आपकी दोस्ती ही मेरी पहचान है।
0: क्या बात है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अपना बताइए, अपने बारे में आप कौन हैं?
1: मंदाकिनी मैडम जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको
0: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अपना नाम बताइए हुजूर।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम जी।
0: दिलीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ मैडम, आज आपसे बात हो गई तो और भी अच्छा हो गया मैडम जी।
0: अरे पहले भी शायद आपसे बात हुई भी है हमारी, तो मुझे जहाँ तक याद
1: मैडम
0: आ रहा है।
1: बिल्कुल, 18 जून को बात हुई थी आपसे मेरी 2025 में, उसके बाद आज हो रही है।
0: चलिए, तो अच्छी बात है कि आपकी दोबारा
1: जी
0: हमसे बात हो रही है। और कैसा है आपका
1: बहुत ही बढ़िया है
0: शहर?
1: मैडम,
0: आपका शहर बताइए
1: बहुत ही
0: उदयपुर।
1: बढ़िया एकदम मैडम।
0: सही बारिश हो गई है जितनी उम्मीद थी?
1: बारिश अभी हुई नहीं है 1 महीने से, कल हुई शाम को आधा पौन घंटा, थोड़ी ठीक हुई लेकिन उससे थोड़ी उमस हो गई है
0: बिल्कुल सही
1: अभी,
0: कहा।
1: और आसार है, झीलें अभी खाली है।
0: बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर बारिश होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं, जो झीलें भर जाती।
1: जी
0: लेकिन पर्यटक काफी आए होंगे घूमने।
1: पर्यटकों की तो धूम मची हुई है मैडम,
0: लेकिन इस गर्मी में उनका हाल बेहाल हो जाता होगा ना।
1: फिर भी उनको जरा भी चिंता नहीं रहती है।
0: हाँ, खैर, घूमना तो एक इतना जानदार और शानदार काम है कि आदमी सब कुछ भूल कर निकल पड़ता है घर से, है ना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने
0: आपको यात्रा पे कहीं जाने का मौका मिला है?
1: जी। अभी कुछ समय पहले ही होके आया था मैं उज्जैन, महाकाल की नगरी,
0: अच्छा।
1: वहाँ हमारे प्रिय मित्र लोकेंद्र वर्मा जी से मुलाकात करके आया, बड़ा ही अच्छा लगा। वो भी खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया।
0: अच्छी बात है, दो मित्र मिलेंगे तो खुश होना ही चाहिए। तो क्या लगा इंदौर जाकर महाकाल के दर्शन करके, जब आप लौटे तो क्या महसूस किया आपने?
1: वहाँ का एक आनंद ही अलग था मैडम, जिधर देखो उधर मतलब महाकाल की नगरी में एक तो महाकाल के जो नारे थे वो बड़े ही एकदम मन को शांति और सुकून पहुंचा रहे थे, उसमें सब कुछ भूल गया मैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। आप जिस भाव को लेकर गए थे उससे कहीं ज्यादा आपको महसूस हुआ, है ना।
1: अभी वापिस से मानस बन रहा है इसी महीने में।
0: चलिए, तो आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे गाना जानना चाहेंगे। कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं?
1: देवानंद साहब की फिल्म का है और रफी साहब की आवाज का गाना है, फिल्म का नाम है काला बाजार और गाने के बोल है खोया।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मोहब्बत की समा जला कर तो देखो, मोहब्बत की समर तो देखो, दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिला कर तो देखो।
0: क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर।
1: दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिला कर तो देखो।
0: क्या बात है, क्या बात है। हमारे सभी श्रोता सब शायर, नगमा निगार, गीतकार है।
1: बिल्कुल मैम, ये विविध भारती की देन है, जो कि हम लोग इतना टैलेंट और इतनी खूबसूरत अंदाज से बोलना सीख गए आप लोगों को देख देख कर।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बताइए अपना नाम, कहाँ से बोल रहे हैं, अपनी जानकारी दीजिए हमें।
1: मैं ग्रामा पोस्ट बक्सीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दातागंज, यानी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बदायूं शहर से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ। मैम
0: विमल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे।
0: अपनी जगह जो है बदायूं, इसके बारे में बताइए। नाम हमने बहुत सुना है, लेकिन इसके बारे में क्योंकि हम कभी आए नहीं हैं, तो बताइए कैसा है आपका ये अपना शहर?
1: जी बिल्कुल, मेरे यहाँ पर एक मजार है, दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मिन्नतें लेकर, और हमारे यहाँ पर एक बरेली के पास में आंवला पड़ता है, ठीक है मैम? आंवला शहर है, तो उसमें क्या है कि मनोरा धाम नाम से जो श्याम जी का एक दरबार लगता है, वहां पर काफी दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं।
0: क्या बात है, ऐसी श्रद्धा है ना, तो काफी लोग आते होंगे, काफी श्रद्धालु आते होंगे, काफी भक्त जन आते
1: होंगे। बिल्कुल मैम, यहाँ पर टूरिस्ट जब जाता हूँ देखता हूँ टूरिस्ट बसें लगातार लगी रहती हैं, क्योंकि काफी देर के बाद गुरुजी से मिलने का नंबर भी आता है, क्योंकि लाइन काफी लंबी रहती है, तो इस समय यात्री ज्यादा रहते हैं, जो श्रद्धालु ज्यादा है तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम तो लगता है मैम।
0: हाँ खैर, वो तो है ही, जहाँ श्रद्धालु या भक्तगण ज्यादा होंगे तो वहां तक पहुँचने में हमें वक्त लगेगा। आप कभी इस लाइन में लगे, इस श्रद्धा के साथ खड़े हुए?
1: जी मैम, मैं वहां पर घूमने तो गया हूँ और जल भी लेकर आया।
0: खैर चलिए, इतना फायदा तो आप भी लेंगे ही जब आप वहीं रहते हैं।
1: जो लोग अपने प्रॉब्लम में रहते हैं वो लाइन लगाकर कतार में जरूर खड़े रहते हैं, उनकी जो दुखद समस्या वो सुनाने के लिए गुरुजी को रहते
0: जी, वो किसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और वहाँ लाइन में लगते हैं ताकि उनको उचित मार्गदर्शन मिल जाए, है ना, इसी भावना के साथ आते हैं। हाँ, आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं विमल जी आप?
1: वैसे तो मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो इस समय तो हरिद्वार में एक जॉब कर रहा हूँ।
0: अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, और आप हमें कॉल भी कर रहे हैं, हरिद्वार में रहकर भी आप हमें सुन रहे हैं, बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छी
1: मैम
0: बात।
1: हरिद्वार में रहते हैं और साथ में हमारे बच्चे भी इस समय इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, लव गुनगुन शुभ अमेरी वाइफ सरका।
0: क्या बात है, चलिए सुनिए आप सभी अपनी पसंद का गीत, बताइए अब कौन सा गाना सुनेंगे।
1: मूवी का नाम रहेगा राम अवतार, और इसमें बेहतरीन सुनूंगा तेरी बेवफाई का, सिकवा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, ये सब सुनवा दीजिएगा।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: जी जी जी मैम, मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से। मैं
0: भोपाल से राम बाबू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: एकदम बढ़िया हूँ, और परिवार में भी सब आनंद मंगल में हैं। मम्मी, भैया, भाभी, परिवार में हमारे बच्चे बच्चे सब आनंद और मंगल में हैं।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो, कि सब आनंद मंगल से हैं, है ना।
1: जी,
0: तो
1: और हंसी खुशी के साथ, आनंद मंगल के साथ में हम विविध भारती को साथ में रखते हैं, हमेशा चलती रहती है और सुनते रहते हैं। और आपके जिस प्रोग्राम है ना विविध भारती के, बहुत अच्छे लगते हैं हमको, पूरे परिवार को अच्छे लगते हैं। चलती रहती है विविध भारती हमारे साथ में, और सुनते रहते हैं, काम वाम भी करते रहते हैं। और ये पत्र भी हम अभी डाल के आए, आपसे मतलब बात करी ना, उससे 2 मिनट पहले ही मैंने पोस्ट ऑफिस में पत्र डाल के आया हूँ वहीं पे।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं डालने गया तो उनने मेरे को देखा, मैम ने बोले भैया इसमें डाल दीजिए। बोले का है, मतलब वहां का डाल दीजिए। जी, वहां डाल दीजिए। बोले हमको भी एड्रेस बताना ना भैया, आपको गलत बुरा ना लगे तो। मैम ठीक है, मैंने एड्रेस बता दिया उनको। बोले हम भी डालेंगे, हम भी सुनते हैं विविध भारती का। हाँ जी जी जी बिल्कुल। उनने दोनों मैम ने मतलब मेरे पास में एड्रेस रखा तो उन दोनों ने लिया एड्रेस। बोले हम भी डालेंगे पत्र,
0: क्या
1: हम भी बहुत
0: बात है।
1: सुनते हैं, हमारे हस्बैंड और हमारे सास बहुत सुनती है प्रोग्राम। बोले ठीक है।
0: उन्होंने ऐसे कहा
1: हाँ
0: जो
1: जी
0: पोस्ट ऑफिस में बैठी थी महिलाएं। हाँ
1: हाँ जी जी जी जी बिल्कुल।
0: जी, बहुत अच्छी बात है कि
1: जी
0: विविध भारती को आप सभी लोग इतना प्यार करते हैं, और जिंदगी
1: जी
0: बन गई है विविध भारती आपकी, है ना।
1: बहुत बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से बचपन से सुनते हैं। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी मान के चलो, हमारे दादा परदादा भी सुनते थे, जब से रेडियो चालू हुआ, जब से हमारे दादाजी भी सुनते थे, हमारे पापा भी सुनते थे, मैं भी सुनता हूँ, उसके बाद में हमारा बेटा है वो भी सुनता है। हाँ
0: अरे
1: जी।
0: अच्छा, आपने
1: और हमारा
0: अपने
1: बेटा तो बहुत बहुत ध्यान से सुनता है, हमारा वो बेटा है ना, बहुत ध्यान से सुनता है, वो होमवर्क वगैरह भी करता रहता है और सुनता रहता है।
0: क्या बात है। तो आपने अपने दादा को याद किया है, तो दादा नाना की कोई
1: जी
0: बात याद है आपको ऐसी?
1: जी वो मतलब वो मैं ज्यादा छोटा था उस टाइम पे, वो गुजर गए तो वो नहीं है, शांत हो गए थे।
0: अच्छा, आप अपने बारे में बताइए फटाफट से, आप क्या करते हैं?
1: अपने ये ड्राई के

0: इनका लॉन्ड्री का काम है वो तो चलता रहता है, विविध भारती हमेशा साथ में रहती है, आपको याद है हमारा काम ही ऐसा है, बिना सुने तो हमारा काम नहीं होता है।
1: चलिए अच्छी बात है, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको।
0: जी बिल्कुल, आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज प्रोग्राम में जैसे दिल है के मानता नहीं, इसी का टाइटल सॉन्ग अनुराधा पौडवाल जी का गाया हुआ गाना सुनना चाहूंगा मैं, और मेरे परिवार वाले सभी सुनना चाहेंगे।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हाँ जी मैम, नमस्ते। मैं शाहजी नगर देवलूर जिला नांदेड़ से संतोष भाकरे बोल रहा हूँ।
0: संतोष जी कहाँ से बोल रहे हैं? जिला नांदेड़ से।
1: हाँ जी, देवलूर।
0: बिल्कुल, कैसे हैं आप संतोष जी?
1: हाँ जी, अच्छे हैं मैम। तो
0: बताइए अपने बारे में, बताइए क्या करते हैं आप?
1: आज बहुत दिनों बाद फोन लगे है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो
0: अरे वाह, पर आप इतनी गंभीरता से बोल रहे हैं, मुझे तो खुशी कहीं नजर नहीं आ रही है।
1: नहीं
0: पहले अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैम, बिल्कुल जी। तो मैं प्राइवेट अस्पताल में कंपाउंडर की ड्यूटी करता हूँ।
0: अच्छा,
1: तो
0: कंपाउंडर की ड्यूटी करते हैं जी, बिल्कुल। तो क्या समय रहता है ड्यूटी का?
1: ड्यूटी का समय डे रहता है मैम।
0: अच्छा, दिन में करते हैं ड्यूटी। अच्छा, पता है कंपाउंडर बनना आसान नहीं होता है ना? बनने का मतलब कि उसको निभाना, उस जो ड्यूटी को निभाना जो है बड़ा मुश्किल है। मुझे याद है एक एक्सीडेंट में एक जो कंपाउंडर थे उन्होंने बहुत समय तक इलाज करने के बाद ही कहा कि माफ़ करना दीदी, हमें ऐसा बनना पड़ता है ना? बहुत स्ट्रिक्ट बनना पड़ता
1: हाँ
0: है,
1: जी,
0: मरीज कितना भी रो रहा है चिल्ला रहा है उन्हें अवॉइड करना पड़ता है, उन्हें अपनी पट्टी गार्ड सब लगाना ही पड़ता है ना?
1: बिल्कुल सही बात है। तो
0: बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता है।
1: हमें पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के रिलेटिव को भी हमको बोलना पड़ता है।
0: हाँ, रिलेटिव्स को भी डांटना पड़ता है, मतलब उन्होंने डांट भी दिया कि आप सही से ट्रेल लगाइए, ब्लड नीचे नहीं गिरना चाहिए, है ना? और जब अंतिम दिन उन्होंने
1: बिल्कुल
0: जब
1: जी, बिल्कुल।
0: कहा इस सब बात के बारे में, उन्होंने बताया कि मेरी ड्यूटी में शामिल है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मरीज ठीक नहीं होता है।
1: बिल्कुल मैम, ये सब कुछ बातें, ये सब करना पड़ता है हमें। हाँ,
0: हाँ
1: बराबर पहचाने। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: पेशेंट जब गंभीर अवस्था में आते हैं मैम, और जब अच्छे होते जाते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है हमें। तो
0: लेकिन उसका इलाज करते
1: मैं,
0: समय कठोर
1: हाँ
0: बनना पड़ता है ना?
1: बिल्कुल, बनना तो पड़ता है मैम।
0: जी। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ जी, मैं लावारिस फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा, आशा भोसले और किशोर कुमार जी की आवाज में, सबके बिछड़े हुए हैं।
0: चलिए सुनते हैं आपकी
1: तो ये
0: पसंद का गीत।
1: गीत, हाँ जी, ये गीत सुना गया। धन्यवाद।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, जी हाँ, रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: परभणी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं भाई।
0: अच्छा, स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। आपकी विविध भारती 1975-77 से हम सुनते आ रहे हैं और आज भी हमारी सुनने की तमन्ना है। सखी सहेली फलो फरमाइश, इतना मनोरंजन, यानी हमारे देश की सुरीली धड़कन हमारे परभणी में नहीं बल्कि हमारे पूरे ओड़ में मशहूर है भाई।
0: क्या बात है कितना
1: देखिए, हमारा रेडियो चलता है और साथ में काम भी चलता है। हम ग्रुप में काम करते हैं और रेडियो विविध भारती लगा के रख देते हैं और उसका पूरा सहेली सपना जितने भी प्रोग्राम है उसका का मजा लेते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा और सुरेना मौका बोल तो हमको सखी सहेली सुनने में बहुत मजा आता है भाई।
0: क्या अच्छा लगता है आपको सखी सहेली में?
1: इतने अच्छे मीठे मीठे हमारे मंदाकिनी ताई, ममता दीदी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा काम करते करते काम किधर हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि हंसी मजाक और गाने का मनोरंजन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है हमको चाहिए।
0: चलिए, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है हमारी बातचीत करने का अंदाज।
1: जी हाँ चाहिए, आपकी बात, आपकी आवाज, यानी हमारा रिजित भारती, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि हम 1975-77 से हमारे दिल में ख्याल ही आता था जब हम रेडियो सुनते थे तो हम रेडियो से कब बात करेंगे, आपके जैसी हमारी आवाज कब आएंगी। अब देखिए, हमको भी समझो, कुछ श्रोताओं ने नंबर दे दिया आपका और हमारा भी कॉल बहुत जमाने के बाद लगा, हमें इसकी खुशी हो रही है कि किसकी हद नहीं।
0: बहुत अच्छी बात है ना कि आपको आपके ही दोस्तों ने नंबर दिया विविध भारती का और आपने हमें कॉल कर लिया।
1: जी हाँ भाई, अच्छा, प्रोग्राम में एक छोटा सा शेर बोलने की अनुमति में लेंगे भाई।
0: बिल्कुल बोलिए बोलिए।
1: जहाँ वहाँ मिले वतन हमारा, ये नई मंजिल है, ये नए रास्ते कांटों से है इसे बता।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। आप क्या करते हैं, परभणी में रहते हैं?
1: जी हाँ, परभणी में रहते हैं।
0: तो अपने शहर के बारे में थोड़ा बताइए हमें, परभणी के बारे में बहुत नाम सुना है हमने।
1: एक खूबसूरत मंदिर मोटा मारुति है जो हमारे परभणी के सभी अतनागरिक वहाँ पे आते हैं, मिलते हैं। और दूसरी खास बात ये है कि हमारे परभणी शहर में हजरत तुराबुल हक की दरगाह है, जहाँ का उरूस के लिए बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, देव भक्त आते हैं और दरगाह का पूरा दर्शन करके जाते हैं। और इतना बड़ा मेला भरता है जो कि हमारे महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे आता है ताई, वो परभणी हजरत तुराबुल हक दरगाह का उरूस यानी मेला।
0: बिल्कुल,
1: ये हर 2 फरवरी को भरता है यहाँ पे परभणी शहर में। बल्कि हमारे अच्छे देश के अच्छे नागरिक और हमारे विविध भारती के ज्यादा से ज्यादा श्रोता आके पूरा मेले का आनंद लेके जाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा जानकारी आपने दी। कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज के इस प्रोग्राम में हमारा फोन लगा है, सबसे बड़ी तो हमें हमारे को बहुत खुशी हो रही है। एक सरगम फिल्म का नाम है और गाने के बोल है डब्ल्यू वाई डब्ल्यू बजा।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: और बहुत धन्यवाद।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228702888, 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंकुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघविंद्र सिंह नेगी।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

प्रस्तुत है छाया गीत, सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं आजकल सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। हाँ, मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। ढूंढ रही हूँ उसे, दुख का दरवाजा खुला, करुणा के कमरे में झांका, हंसी को हटाकर देखा, सपनों की भी तलाशी ली, कहीं न मिला, तो आज ही थाने में जाकर रपट लिखा दी है कि प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है। हाँ, प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है एक भी पल।

कहते हैं चखे बिना तो नमक तक की परख पूरी नहीं होती, और मैंने मोहब्बत कर ली, स्वाद चख भी लिया। हाँ, कैसे थे मोहब्बत के वो पल, इश्क की वो गलियां। अब कुछ याद नहीं रखना चाहती मैं, कुछ भी तो याद नहीं रखना चाहती।

तुमसे ही की थी मोहब्बत, हाँ कुछ कुछ याद है मुझे, पर अब मैं भूलने लगी हूं। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरे दो, मेरे सीने में गुलाब भर भर के बिखेर दो चाहे। मैं भूल चुकी हूं सब कुछ कि तुम करते थे मुझसे कभी प्यार, चूमते थे मेरी पेशानी को, मेरे हाथों पर करते थे बोसों की अनगिनत बरसात। हाँ भूल चुकी हूँ मैं अब सब, भूल चुकी हूँ मैं अब सब।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बदल चुकी हूं मैं, भुला के तुमको आगे बढ़ चुकी हूं मैं। और प्रेम ही तो सब कुछ नहीं है, हम ये न तो मांस है न ही कोई पेय, न नींद न तूफानी बारिश से बचने के लिए छत, नहीं डूबते हुए लोगों के लिए कोई तैरता हुआ सहारा। फिर क्यों करूं मैं मोहब्बत, क्यों याद रखूं तुम्हें मैं, हाँ फिर क्यों तुम्हें याद रखूं मैं।

जीवन में जो आई थी उमंग, पतझड़ में जो आया था वसंत, सर्दियों की वो बहकी बहकी रातें, प्यार की सारी वो गहरी गहरी बातें, वो प्रेम को निभाने का अटल इरादा, हमेशा साथ रहने का वो वादा, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तुमने आसानी से कह जो दिया था, भूल जाओ ये सब, और मैं भूल गई हूँ सब कुछ।

जब प्यार खत्म होता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। निसंदेह तुम्हारे जाने से घर खाली हो गया था और जीवन सूखी बंजर जमीन, पन्ने जिंदगी के खाली रह गए थे। दिल के किसी सुनसान कोने में पीड़ाएं चुपचाप घर कर गई थी। हाँ, ये सच है, पर अब समय का मरहम उन्हें भर चुका है। हाँ, समय का मरहम उन्हें भर चुका है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मेरा साथ दे ना दे, मैं अब आजाद हूँ। अब मैं अपने वश में हूँ। हाँ, अब मैं अपने वश में हूँ, किसी और के नहीं।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थिति

0: लड़कियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
1: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
1: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
0: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
1: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही। इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
0: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओ, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
0: श्रोताओ, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
0: जी
1: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
0: श्रोताओ, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
1: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
0: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
1: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
0: अच्छा, तो ये बात है।
1: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्योशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
0: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया?
1: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
0: श्रोताओ, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
1: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
0: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
1: और फिर ट्रेन आती है।
0: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
1: फिर क्या हुआ बिमलेश जी?
0: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
1: विमलेश जी, जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
0: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
1: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
0: जी,
1: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओ, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
0: जी, और फिर मार्च 2016 में क्योशिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
1: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
0: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
1: जी हाँ मित्रों, ना जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
0: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो, और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो
1: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें
0: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं
1: जी बिल्कुल जी हां श्रोताओं एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
0: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है
1: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न प्रश्न है जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहां से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहां से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया
1: अब अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल
0: ये कार्यक्रम कक्षा दो की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है
1: माला की चांदी की पायल
2: माला बिल्ली को डराती है वो अपनी नानी को डराती है
3: अरे माला तू
2: वो अपने छोटे भाई को डराती वो डाकिये को डराती
4: बहन जी डाकिया
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी
3: माला यह तुम्हारे लिए है
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी छोटे-छोटे घुंघरू झनकते अब माला जहां भी जाती सब जानते उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है माला की होश से पहले बिल्ली कूद गई माला की हेस से पहले नानी पलट गई इस बार वो डरी नहीं क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था माला की थप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है अब माला किसी को डरा नहीं पाती तो ऐसे में माला ने क्या किया उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी वो बहुत खुश है
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल
5: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात

मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा, मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ एक मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
5: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
6: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
5: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
6: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
5: ना जाने क्या होगा इसका।
6: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़े रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
5: अरे वो सब तो ठीक है, पर
6: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
4: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
7: ऐसे ऐसे
8: झूठ मारना
7: सैम है

0: इधर तो आओ। हां हां आते हैं। सैम, हैना, क्या तुम लोग तैयार हो?
1: हम तो तैयार हैं मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रही हो?
0: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं एक अद्भुत प्रयोग। कैसा प्रयोग? आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
1: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
0: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना उपकरण चालू करता हूं। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
1: अच्छा
0: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुंच जाओ।
2: अच्छा।
0: वहां किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है। उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है। सिग्नल पहुंचते ही घंटी बज उठेगी।
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
0: फिर जाओ ना। पहुंच गए?
3: हां हां
0: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूं।
3: हां हां भेजो, जल्दी भेजो।
1: अरे वाह, अरे वाह, क्या
3: बात है! वाह मार्कोनी, क्या क्या बात है!
1: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह क्या बात है! अरे वाह,
0: सिग्नल मिला?
1: हां हां, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
4: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
5: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
4: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार यह प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे यह सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। यह प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: यह संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। यह कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमेरिकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा, ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूँ।
2: ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
3: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: अरे रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है, वाह!
0: रोबर्ट, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह,
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि यह जहाज डूब नहीं सकता,
0: ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: अरे अरे भागो भागो, बाहर निकलो, भागो डेक की ओर, भागो।
6: ये क्या हो रहा है? यार पूरी तरह हिल रहा है।
5: शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
0: ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
5: हेड पर कितनी बड़ी दरार पड़ी है। अरे बचाओ, अरे तो पानी भर गया।
0: जहाज की स्पीड कम करो। ऑपरेट द बैक प्रोपेलर। जहाज को पीछे करो। एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हरे।
7: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो। सेव टाइटैनिक, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेल्प लाइफ सेवर भेजो। सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस।
7: जल्दी जल्दी करो।
0: जीवन रक्षक नावों के नीचे उतारो। लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट के नीचे उतारो।
8: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
3: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
4: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
3: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You're really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो। विश्वास नहीं होता।
3: मिस्टर मार्कोनी
6: जी,
3: अच्छा ये बताइए,
6: ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बताइए
7: बताइए। जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
3: गुड गुड।
7: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
3: बिल्कुल।
7: धन्यवाद।

20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद

0: इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। शाम के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

0: ये कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: आदमी कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। शाम के 6:45 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं संध्या वंदन।

संध्या वंदन का आनंद आप अभी ले रहे थे। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचारों को सुनने का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाने रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज Space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जिनफिंग 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यह यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा प्रभाग के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले विशिष्ट अतिथियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके, ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रसिद्ध समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगा खान विकास नेटवर्क के समाज सेवी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पानी और साफ सफाई, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा और सामुदायिक विकास में आगा खान विकास नेटवर्क के योगदान पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चीन के पूर्वी बंदरगाह शहर चिंगदाओ में एक मरम्मत के लिए खड़े विदेशी ध्वज वाले मालवाहक जहाज में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार लाइबेरिया के ध्वज वाले बल्क कैरियर ओशन मेलोडी में आज सुबह आग लगी। और खेलों में, महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। हिंदी में समाचारों के बाद अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी शिलांग, शाम के 7:00। श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी शहडोल, शाम के 7:10 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को किया संबोधित, कहा भारत का लक्ष्य 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। सागर में शराब मामले से जुड़े आरोपियों के मकान और निर्माण पर चला बुलडोजर। टीकमगढ़ में बलराम कृषि महोत्सव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड में बढ़ेगा सिंचाई का दायरा। और कल से इंदौर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, आपसी संवाद और सहयोग के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और वर्ष 2040 तक भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का है। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की उपलब्धियां गिनाते हुए इसरो की भूमिका की भी सराहना की। भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। समिट को लेकर राजधानी को पोस्टरों और रोशनी से सजाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी मेजबानी करेंगे। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ सहयोगी और आमंत्रित देशों के नेता, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख और दूसरे बड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बार भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और समिट की थीम रेजिलियंस, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी पर रखी गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई देशों के नेता इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सागर दौरे के बाद जिला प्रशासन ने बंडा में 5 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया है। अवैध शराब से हुई मौतों के मामले में मुख्यमंत्री ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने मनीष लोधी के 3, चंद्रभान राजपूत के 1 और आशीष साहू के 1 निर्माण पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन का कहना है कि इन लोगों ने शासकीय जमीन पर मकान, पक्की बिल्डिंग और गोदाम बना रखे थे। प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह की जांच अब ग्वालियर के डबरा से भोपाल तक पहुंच गई है। एसटीएफ का दावा है कि उसे भोपाल के अन्नानगर के एक पते पर करीब 40 रजिस्टर्ड पासपोर्ट मिले हैं, लेकिन जांच के दौरान वहां इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। इससे पहले डबरा के सिमरिया में 17 जबकि छिंदवाड़ा और बैतूल के पतों पर 13 पासपोर्ट रजिस्टर्ड मिलने की बात सामने आई थी। एसटीएफ की जांच में बौद्ध मठों और दूसरे स्थानों के पतों का इस्तेमाल कर दस्तावेज और पासपोर्ट बनवाने की बात भी सामने आई है। डीआईजी एसटीएफ राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि इस मामले में अब तक 2 लोग

0: गिरफ्तार किए गए हैं।
1: गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के 40 ऐसे पासपोर्ट हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं अन्ना नगर क्षेत्र से, जो और भी एक दो जगह से है, बैतूल, छिंदवाड़ा। कुल मिला के लगभग 60-70 ऐसे फर्जी पासपोर्ट के बारे में जानकारी आई है, उसको मर्ज करके ये मामला जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से। अभी तक इसके अंदर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहला जो रियाल चौधरी नाम का व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया गया। हम लोगों ने एक और आरोपी को पकड़ा है विप्लव अधिकारी करके, उसका भी हम लोग पासपोर्ट जब्त किए हैं और उससे पूछताछ जो है वो जारी है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज टीकमगढ़ में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से बुंदेलखंड में सिंचाई का विस्तार होगा और आने वाले समय में इस क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने उन्नत और प्राकृतिक खेती, पॉली हाउस, फूलों की खेती, बीज उत्पादन और मधुमक्खी पालन कर रहे किसानों से बात की और उनके काम की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकमगढ़ में किसान नए तरीके अपनाकर खेती के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसेन में संत रविदास महाराज की मूर्ति स्थापना समारोह को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के उपदेश आज भी समाज का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही रायसेन पहुंचकर संत रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रदेश में संत रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर समरसता संकल्प अभियान के तहत विकास शिविर और यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। एक महीने के इस अभियान में प्रदेश के सभी 55 जिलों में नागरिकों की सेवा और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। अभियान के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारियों को जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो कलेक्टर के साथ मिलकर कार्यक्रमों की निगरानी और माइक्रो प्लानिंग करेंगे। प्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए कल से इंदौर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में समिट का शुभारंभ करेंगे। इसमें निजी बस ऑपरेटर, परिवहन विशेषज्ञ, IT कंपनियां और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिट का मुख्य फोकस मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और PPP मॉडल के जरिए बस सेवाओं को बेहतर बनाने पर होगा। प्रदेश में 7,500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल ने शेड्यूल जारी कर दिया है। भर्ती के लिए आवेदन 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन के समय प्रदेश के 55 जिलों में से अपनी पसंद की यूनिट चुननी होगी और गृह जिले में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को यह भी बताना होगा कि वे सामान्य आरक्षक या विशेष सशस्त्र बल के आरक्षक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की सक्रियता फिलहाल कमजोर पड़ गई है। मौसम विभाग ने आज किसी भी जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। कल उमरिया, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 सितंबर से मौसम में फिर बदलाव के आसार हैं और प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में तेज बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सनराज फाइनेंस लंदन की MD मयूरी चोरडिया ने रतलाम प्रवास के दौरान MSME मंत्री चैतन्य कश्यप से जिले के निवेश क्षेत्र में संभावित निवेश एवं औद्योगिक अवसरों पर चर्चा की। शहडोल जिले में धरती आबा योजना के तहत लगभग 2,500 आदिवासी परिवारों के घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। विद्युत विभाग ने इसकी कार्ययोजना तैयार कर ली है। शिवपुरी जिले में परिवहन विभाग द्वारा जिले में परिवहन नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। आगरमालवा के ग्राम आवर तथा ग्राम लाडवन की समूह महिलाओं द्वारा मुख्य बाजार में गोबर एवं मिट्टी से तैयार की गई गणेश प्रतिमाओं का स्टॉल लगाया गया है। नर्मदापुरम में लता मंगेशकर संगीत प्रतियोगिता शासकीय नर्मदा महाविद्यालय सभागार में 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान के पास जिला पुस्तकालय के नवीन भवन का शुभारंभ किया। कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से हाथियों के पुनर्यौवन शिविर का आयोजन 15 से 20 सितंबर तक किया जाएगा। विश्व आत्महत्या निषेध दिवस पर खंडवा शासकीय महाविद्यालय और अशोकनगर शासकीय विधि महाविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत 8 सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पर करीब 6,33,00,000 रुपए की लागत आएगी। उमरिया में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत 11 सितंबर यानी कल मानपुर विकासखंड मुख्यालय के अमरपुर में 3 बजे से शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत धार से द्वारका सोमनाथ की यात्रा 21 से 26 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। पात्र श्रद्धालु जिसके लिए 11 सितंबर यानी कल तक आवेदन कर सकते हैं और भोपाल में अवैध शराब के परिवहन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के दौरान कोलार रोड पर शराब से भरी एक स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने इस वाहन से 41 पेटी शराब बरामद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। सागर में शराब से जुड़े आरोपियों के मकान और निर्माणों पर चला बुलडोजर। टीकमगढ़ में बलराम कृषि महोत्सव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड में बढ़ेगा सिंचाई का दायरा और कल से इंदौर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट की शुरुआत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:21 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
2: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी हमारे सभी श्रोता और कृषक भैया बहनों को दो ही हाथ जोड़ के राम राम हम हैं अमृता जैन आज की ई किसान वाणी कार्यक्रम में आपकी अपनी साथी जब भी कार्यक्रम में आप लोगन से जुड़त हैं तो सोचत हैं कि ऐसी का जानकारी आप लोगन खा दे दें जो आप लोगन के लाने फायदेमंद हो और आपकी आय बढ़े संगे संगे हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत बने तो भैया बहनों देखो सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं तो हम आप लोगन को बताऊं रत हैं और आज ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं भारत सरकार की जो एक महत्वपूर्ण योजना है जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ई योजना को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू करो गो है और यदि हम ई योजना की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है योजना के अंतर्गत आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण को विकास करने की बात रखी गई है और इसके अलावा किसानों को उनकी फसल के बेहतर मूल्य मिले और जो फसलों की बर्बादी हो रही है वह कम हो सके रोजगार के अवसर बढ़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास लावे के लाने तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देवे के लाने जा योजना चलाई गई है अब हम बात करें कि जा योजना इतनी महत्वपूर्ण काय है कि देखो भैया बहनों लगभग ई योजना के अंतर्गत हमारे कई कृषक भैया बहन ई योजना से लाभान्वित हैं लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं हर साल लाखों टन खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता विकसित हो रही है अब हम कहें कि किसानन भैया बहनों को क्या फायदा है तो देखो एक तो फसलन के बेहतर दाम मिल रहे हैं भंडारण और प्रोसेसिंग सुविधाएं मिल रही हैं फसल खराब होवे या नुकसान कम होवे की संभावना जितनी हो सके उतनी कम करी जा रही है नए नए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं जिसे युवाओं के लाने भी नए अवसर मिल रहे हैं जिसे वे इन कार्यों से जुड़ सके अब यदि हम सरल भाषा में कहें तो यही बात है कि हमारे भैया बहन प्रोसेस के माध्यम से ज्यादा कीमत मिले ई पे काम हो रहा है और सरकार की जो योजना लगातार चलत है कि कैसे भी हमारे कृषक भैया बहनन को लाभ मिले उनकी आय बढ़े और उनकी खेती उन्नत बने आज आप लोगन को एक बढ़िया जानकारी सुनवा रहे हैं मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन की संभावनाएं एवं एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 जानकारी देवे में हमेशा

0: योग दो है बहन अंशु तिलेठे ने तो सुनत है जा महत्वपूर्ण जानकारी।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंशु तिलेठे आज संचालनालय मत्स्य उद्योग कार्यालय जो कि प्रदेश का मछली पालन विभाग का मुख्यालय है वहां उपस्थित हुई हूं। मैं आज यहां स्थल रिकॉर्डिंग के लिए आई हूं और आज हमारे साथ हैं श्री मनोज कुमार पथरोड़िया जी, आप संचालक मत्स्य उद्योग हैं, जिनसे हम मत्स्य पालन से जुड़ी शासन की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं?
2: सभी को नमस्कार, मैं अनुज कुमार पथरोड़िया, संचालक मत्स्य उद्योग मध्य प्रदेश। जैसा कि आपका प्रश्न है कि क्या क्या संभावना है, तो मैम एक्चुअली हमारे मध्य प्रदेश में ना जो वाटर बॉडी है वो पर्याप्त है, मतलब अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा वाटर बॉडी है, जल क्षेत्र है, हमारी नदियां बहुत अच्छी हैं और तालाब के क्षेत्र में, मतलब जो हमारे बड़े बड़े तालाब हैं, मेजर रिजर्वायर हैं जो मत्स्य महासंघ के आधिपत्य में है, जिला पंचायत तालाब हमारे विभाग के आधिपत्य में है, तो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज है। लेकिन हमारे साथ ये है कि हम इनका जो उत्पादन है वो आज हम जितना उत्पादन इनसे ले रहे हैं वो हम अभी इंडिया में, हमारा जो मध्य प्रदेश है वो 7वें स्थान पर है। लेकिन हमारी संभावना ये है कि अगर हम पूरे जल क्षेत्र का दोहन करते हैं, उपयोग करते हैं, तो शायद हम नंबर 2 पे भी पहुंच सकते हैं, 3 पे भी पहुंच सकते हैं, 3 या 2 पे मतलब जा सकते हैं। इसलिए कि आज हमारा मत्स्य उत्पादन हमारे जो ग्रामीण तालाब है उससे हमने पूरा पर केजी 5000 केजी पर हेक्टर उत्पादन ले लिया है, नदियों से भी हमारा पूरा उत्पादन हो गया है। जो हमारे बड़े तालाब है चूंकि उसमें हार्वेस्टिंग पूरा होता नहीं है, तो हम लोग 170-180 केजी पर हेक्टर हमने उत्पादन लिया है, जो अधिकतम है। लेकिन यदि हम इस उत्पादन को डबल करना चाहते हैं, जैसे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की ये परिकल्पना है कि हम अपने उत्पादन को डबल करें, तो उसमें हम यही कर सकते हैं कि जो हमारे तालाब है इनमें हम केज कल्चर, मतलब एक हमारी एक नीति आई है उसमें हम लोग केज स्थापित करते हैं और उसमें हम लोग पूरा वाटर बॉडी के जल क्षेत्र उसका दोहन कर सकते हैं। इसमें हमारी एक नीति भी अभी लॉन्च हुई है जो तो मार्च 2026 को माननीय सीएम साहब ने उसको अनुमोदित किया है, तो उस संभावना तो बहुत कुछ है, है ना।
1: सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि मछली पालन व्यवसाय से कौन कौन जुड़ सकता है और उनके पास क्या पात्रता या योग्यता होना आवश्यक है?
2: मछली पालन व्यवसाय से तो हर प्रत्येक व्यक्ति जुड़ सकता है। आज हमारे पास इतनी नई टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चे जो युवा बच्चे हैं, जो युवा वर्ग भी पढ़ के आए हैं ना, वो बहुत ही नई टेक्नोलॉजी को उपयोग करके हमारे मछली पालन को नई तकनीक से पालन करेंगे तो वो जुड़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जुड़ सकता, इसमें युवा वर्ग जुड़ सकता है, जो हमारी गृहिणी महिलाएं हैं वो भी हमारे मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और सभी लोग इसमें जुड़ सकते हैं,
1: कोई ऐसा विशेष पात्रता नहीं है, सभी। हाँ,
2: जो आदमी आगे आएगा, जो थोड़ा सा समझेगा और मत्स्य उत्पादन करेगा तो इसमें जरूर उनको फायदा तो होना ही है, लाभ का धंधा है, इसमें नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं।
1: जी सर, बहुत अच्छी जानकारी। सर, हमारे श्रोताओं को शासन की कौन सी कल्याणकारी योजनाओं द्वारा मत्स्य विभाग लाभान्वित कर सकता है?
2: हाँ, सही है आपका प्रश्न। कल्याणकारी योजनाएं भी हमारी बहुत सारी हैं और इसमें सबसे पहले PMSSY है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी, इसमें भी बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट आया है। सेकंड हमारी एकीकृत, जो अभी हमने बताया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 मार्च को अनुमोदित हुई है, वो भी बहुत अच्छी योजना है। इसमें हमारे बहुत सारे केज लग रहे हैं, हमारे पूरे मतलब केजों से अगर उत्पादन होता है तो हम आगे आ सकते हैं मत्स्य उत्पादन में। और एक CMSY है, मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण मछुआ समृद्धि योजना, वो उसमें हमारे फिश पार्लर बनते हैं, जो हमारे मछुआरे भाई बाहर दुकान लगा के सड़क पे और ऐसे लगाते हैं, तो अभी इस योजना हमारे फिश पार्लर बन रहे हैं जो बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में रहेंगे और उनसे हम लोग मछली को विक्रय कर सकते हैं।
1: जी सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे क्या मत्स्य पालक बैंक द्वारा लोन या क्रेडिट ले सकते हैं?
2: हाँ, मत्स्य पालन में लोन और क्रेडिट मिलता है। हमारे यहाँ मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना है, उसमें 40,000 से लेके और 2 लाख तक लोन ले सकते हैं, और दो वो जाता है जो प्रोजेक्ट बन के इससे जाके, और वो अपने उसमें जो भी उसका परसेंटेज होता है लोन का, उस परसेंटेज में वो लोन बैंक से ले सकता है।
1: जी सर, बहुत अच्छी जानकारी सर। हम आगे बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि मछली पालन के लिए सबसे जरूरी मत्स्य बीज कहाँ से आम नाभिक प्राप्त कर सकता है।
2: ये भी एक बहुत सही क्वेश्चन है, इसलिए कि हम जब भी मछली पालन करेंगे, कोई भी करेगा, जो अन्य व्यक्ति आएगा जुड़ेगा, तो सबसे पहली प्राथमिकता मत्स्य बीज की होती है, क्योंकि हम मत्स्य बीज अच्छा देंगे, क्वालिटी देंगे, क्वांटिटी अच्छी देंगे, तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। तो हमारे यहाँ मत्स्य बीज चूंकि बेसिक चीज है, जब भी हम मछली पालन करेंगे सबसे पहले बात आती है कि मछली बीज कहाँ से मिलेगा, अच्छा मिलेगा और सही प्रजाति का मिलेगा। तो वो हमारे जो प्रक्षेत्र हैं, शासकीय प्रक्षेत्र हैं, हर जिलों में है, हमारी हैचरी स्थापित है, हैचरी जिससे हम लोग ब्रीडिंग करा के, प्रजनन करा के और शीट उत्पादन करते हैं और अपने प्रक्षेत्र पे उसको रियरिंग करते हैं, मतलब संवर्धन करते हैं। और जब वो 26 mm का हो जाता है फ्राई स्टेज में या फिंगरलिंग, तब उसको हम लोग सप्लाई करते हैं, स्पान भी सप्लाई करते हैं, किसी को अगर स्पान रियर करना है तो वो भी हम लोग शासकीय प्रक्षेत्र, आप लिंग निजी मत्स्य प्रक्षेत्र भी हमारे बहुत अच्छे हैं, कुशल प्रगतिशील हैं, उनसे भी आप ये बीज प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी सर, आपने मत्स्य पालन के बारे में विस्तृत हमें जानकारी दी सर। यदि कोई इच्छुक नागरिक और जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह कहाँ संपर्क करे?
2: बिल्कुल सही है, अगर कोई इच्छुक व्यक्ति है और उसको मछली पालन करना है, पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह लोग हैं, किसी के मन में कभी आता है कि मैं मछली पालन करूं, तो अगर उनकी इच्छा है और करना चाहते हैं मछली पालन, तो हमारे जिलों में सहायक संचालक मत्स्य उद्योग, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, सभी जिलों में हमारे कार्यालय स्थापित हैं, और वहाँ जाके ऑफिस में वो अगर संपर्क करते हैं, मिलते हैं, तो उनको पूरी जानकारी मिलेगी कैसे करना है मत्स्य पालन, वो भी मिलेगा और कभी भी जा सकते हैं
1: और संपर्क करके
2: और अपनी जानकारी लेकर व्यवसाय कर सकते हैं।
1: सर, आपने हमारे श्रोताओं को मत्स्य पालन से संबंधित बहुत उपयोगी जानकारी दी, जिनसे निश्चित तौर पर हमारे श्रोता, हमारे किसान भाई लाभ प्राप्त करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: सभी को नमस्कार।
0: किसान भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश मत्स्य पालन की संभावनाएं एवं एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के बारे में हमने बात करी श्री प्रियंक श्रीवास्तव जी से। आप सहायक संचालक मत्स्य उद्योग संचालनालय मत्स्य उद्योग कार्यालय मध्य प्रदेश में पदस्थ हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, श्रोता किसान भाई बहन किस तरह से मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति को जाने समझे?
3: सभी को नमस्कार। यदि हम नीति की आवश्यकता की बात करें तो मध्य प्रदेश जल संसाधनों से समृद्ध राज्य है। प्रदेश के वृहद जलाशय, तालाब एवं नदियाँ मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं प्रदान करती हैं। इन संसाधनों का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से उपयोग कर प्रदेश के मछुआरे, युवाओं, महिलाओं, स्व सहायता समूहों एवं उद्यमियों के लिए रोजगार एवं आय के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं
1: जी।
3: तथा मत्स्य पालन को अतिरिक्त आय के सशक्त स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 100 हेक्टेयर से अधिक जल क्षेत्र के जो जलाशय हैं, इनके प्रभावी जल क्षेत्र, जिसे हम इफेक्टिव वाटर स्प्रेड एरिया भी कहते हैं, इसके एक निश्चित भाग में केज कल्चर विकसित किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा केज कल्चर को प्रोत्साहित करके मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ निजी निवेश, रोजगार सृजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि हेतु मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 लागू की गई है। यह नीति पारंपरिक मत्स्य पालन के साथ साथ केज कल्चर, एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, इको टूरिज्म, ग्रीन एनर्जी जैसी आधुनिक एवं नवाचार आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है
1: जी।
3: साथ ही मछुआ समुदाय, स्वयं सहायता समूह या सहकारी समितियां या FFPO या निजी निवेशक, इनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है। मत्स्य क्षेत्र में निवेश, रोजगार, मूल्य संवर्धन एवं निर्यात को बढ़ावा देने एवं तकनीकी मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता एवं निजी निवेश हेतु प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराती है। इस नीति के अंतर्गत प्रदेश के चिन्हित 100 हेक्टेयर से अधिक जल क्षेत्र के जलाशयों में केज कल्चर इकाइयों की स्थापना कर मत्स्य पालन हेतु उद्यमियों को जल क्षेत्र आवंटित किया जा रहा है, जिसमें निश्चित और बहुत ही न्यूनतम किराया देकर उद्यमी प्रदेश के स्वच्छ जल में केज स्थापना कर मत्स्य उत्पादन का व्यवसाय कर सकते हैं।
1: हम आपसे जानना चाहेंगे कि नीति अंतर्गत पात्र कौन है?
3: जी, मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के अंतर्गत प्रदेश की सभी पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियां, पारंपरिक मछुआरे, महिला स्व सहायता समूह या स्व सहायता समूह, FFPO, अनुसूचित जाति जनजाति, मत्स्य उद्यमी, निजी निवेशक, फर्म, कंपनी, LLPA सभी पात्र हैं एवं सभी इसका लाभ ले सकते हैं।
1: सर आपने कहा कि नीति अनुसार जल क्षेत्र को आवंटित किया जाता है, इसकी प्रक्रिया के बारे में हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे।
3: देखिए, जल क्षेत्र का आवंटन पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से होता है। देखिए, सबसे पहले केज स्थापना हेतु जल क्षेत्र को चिन्हित किया जाना है। इसमें 100 से 1000 हेक्टेयर के जलाशय जो हैं, इनमें हमारे जिला कार्यालय के द्वारा केज स्थापना हेतु जल क्षेत्र चयनित किया गया है, तथा 1000 हेक्टेयर से अधिक जल क्षेत्र के जो जलाशय हैं, इनमें हमारा जो मत्स्य महासंघ है उसके द्वारा चयन किया गया है। इन जल क्षेत्र को आवंटित करने संबंधी विज्ञप्ति भी विभाग एवं महासंघ द्वारा जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन आवेदनों का परीक्षण जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाना प्रावधानित है। वर्तमान तक नीति के उद्यमी मॉडल अंतर्गत 4.5 लाख से अधिक स्वयं के व्यय द्वारा केज स्थापित किए जाने हेतु आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
1: इस योजना के मूल्यांकन के क्या कुछ मापदंड हैं?
3: जो आवेदन हमें प्राप्त हो रहे हैं इनका मूल्यांकन, पात्र उद्यमियों का चयन, उनकी कार्य योजना, वित्तीय क्षमता, तकनीकी अनुभव, परियोजना संचालन क्षमता, व्यावसायिक अनुभव, निवेश क्षमता, प्रबंधन व्यवस्था, चयन के बाद ही अनुबंध किया जाएगा। समय सीमा में केज स्थापित किए जाने होंगे जिसका विभाग निरीक्षण भी करेगा। मत्स्य महासंघ के जलाशयों में मत्स्य महासंघ भी निरीक्षण करेगा। उद्यमी द्वारा उत्पादन प्रारंभ करना होगा और इस पूरे काम की नियमित मॉनिटरिंग होगी। उद्यमी को निर्धारित समय पर केज स्थापित करना होगा, गुणवत्ता युक्त मत्स्य बीज डालना होगा, उसे नियमित मत्स्य आहार देना होगा, इस सभी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके साथ ही पर्यावरण के जो मानक हैं उनका पालन करना अनिवार्य होगा। विभाग जो है निरीक्षण में सहयोग करेगा, इस कार्यवाही में सहयोग करेगा। उद्यमी को इसके अलावा केज की सुरक्षा भी करनी है, चोरी को रोकना भी है, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा भी करनी है एवं केज इत्यादि की नियमित मरम्मत, बीमा इत्यादि जो भी आवश्यक है वो सारी व्यवस्था करनी है। इन सब के साथ यह भी ध्यान रखना है कि हमारे प्रदेश के जो जलाशय हैं इनका जल जो है इनमें प्रदूषण नहीं होना चाहिए। इसके लिए उद्यमी जो है हमारे केज में जो मछलियां हैं उनमें अतिरिक्त फीड नहीं डालेगा, जो मृत मछलियां होंगी उनका वैज्ञानिक रूप से निस्तारण करेगा जिससे जलाशय की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो।
1: बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए। हम जानना चाहेंगे सर कि इस योजना में विभाग की क्या भूमिका है।
3: हाँ जी बिल्कुल, देखिए मत्स्य विभाग द्वारा जलाशय के जो जल क्षेत्र है उसका आवंटन किया जाएगा, आवश्यक अनुमति प्रदान की जाएगी, सबसे आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुबंध निष्पादन, निगरानी, ये सारे काम विभाग द्वारा या मत्स्य महासंघ द्वारा किया जाएंगे। परियोजना प्रारंभ करने से पूर्व विभिन्न विभागों से आवश्यकता अनुसार अनुमति प्राप्त करनी होगी। जैसे हमारा विभाग है, जल संसाधन विभाग है, जिला प्रशासन है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जहाँ भी आवश्यक है ये अनुमतियाँ हमें प्राप्त करनी होगी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो है ये आवश्यक मार्ग, इनके लिए आवश्यक मार्गदर्शन के साथ साथ भूमि आवंटन संबंधित विभागों से प्राप्त किया जाएगा। स्वीकृतियाँ प्रदान करने में विभाग उद्यमियों का पूर्ण सहयोग करेगा। चयनित लाभार्थी द्वारा परियोजना का विभागीय परीक्षण, जलाशय आवंटन, अनुमति, केज स्थापना एवं विभागीय निरीक्षण के बाद ही संचालित किया जा सकेगा। विभाग द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों, संचालन एवं रखरखाव संबंधी सभी नियमों का पालन करना उद्यमी के लिए अनिवार्य होगा।
1: बहुत अच्छी जानकारी सर। सर इस नीति में उल्लेखित फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है?
3: हाँ जी, देखिए उद्यमियों को फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। बैकवर्ड लिंकेजेस जो है ये जो है जैसे कोल्ड स्टोरेज है, कोई केज स्थापित कर रहा है तो उसके लिए मछलियों की निकासी के बाद उन्हें संरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है, बर्फ की आवश्यकता होती है, उसके लिए आइस प्लांट है और मछलियों के परिवहन के लिए इंसुलेटेड व्हीकल की या रेफ्रिजरेटेड व्हीकल की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें जो है उत्पादन के बाद की जो आवश्यकता है उन्हें बैकवर्ड लिंकेजेस कहते हैं। और फॉरवर्ड लिंकेजेस मतलब की फिश फीड मिल है, जैसे जो मत्स्य उत्पादन के लिए हमें मत्स्य बीज की आवश्यकता होती है तो उसके उत्पादन के लिए हेचरी रहती है, डियरिंग यूनिट होती है जिसमें हम मत्स्य बीज को छोटे से बड़ा करते हैं। तो इन सारी चीजों को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस में समाहित किया गया है जिनके लिए प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदाय किया जाएगा। इसके साथ साथ मत्स्य उद्योग विभाग या मत्स्य महासंघ ये जो है मत्स्य पालन संबंधी मूलभूत जो अधोसंरचनाएं हैं, जैसे लैंडिंग सेंटर है, रोग निदान गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला है या मोबाइल लैब है, ये सारा विकसित करके उद्यमियों को इनकी जो है हम सुविधाएं प्रदान करेंगे। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के द्वारा हम जो है उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
1: श्रोताओं, अभी हमने श्री प्रियंक श्रीवास्तव जी को सुना और जाना।
4: अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं उन हितग्राहियों के पास जिन्होंने मत्स्य पालन की योजनाओं का लाभ लिया, सरकार से अनुदान प्राप्त किया और मछली पालन की विभिन्न यूनिटों के माध्यम से खुद को तो स्थापित किया ही, साथ ही दूसरों को भी रोजगार प्रदान किया। तो सबसे पहले जुड़ते हैं हम एक महिला हितग्राही से।
5: नमस्कार, मेरा नाम रोचिता डे है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। पिछले 3-4 वर्षों से मैं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिश फार्मिंग बिजनेस कर रही हूँ। जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत करने का निर्णय लिया तब मेरे सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने मुझे सही अपॉर्चुनिटी और आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस दिया। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत मैंने ग्राम पिपलिया हटीला जिला भोपाल में 2 बायोफ्लॉक पॉन्ड स्थापित किया। इस दौरान भोपाल जिला मत्स्य विभाग ने मुझे समय समय पर ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस, सपोर्ट और सब्सिडी दिया। यही सहयोग मेरे सक्सेस की सबसे बड़ी वजह बनी। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यदि किसी भी व्यक्ति को सही गाइडेंस, आधुनिक टेक्नोलॉजी और सरकार की योजनाओं का सहयोग मिले तो वह अपना बिजनेस सफलतापूर्वक स्थापित कर सकता है। वर्तमान में मैं अपने दोनों बायोफ्लॉक पॉइंट से प्रतिवर्ष लगभग 20 टन फिश प्रोडक्शन कर रही हूँ। मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि आज मैं 3-4 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 5-7 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करा पा रही हूँ। इससे न केवल मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है बल्कि अन्य लोगों को भी मैंने रोजगार का अवसर दिया है। मैं सभी युवाओं, महिलाओं और किसानों से कहना चाहूंगी कि वे सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी लें और उनका लाभ उठाएं और अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने का प्रयास करें। सही मेहनत, सही दिशा और सरकारी सहयोग के साथ सफलता निश्चित रूप से मिलती है। धन्यवाद।
4: किसान भाइयों और बहनों, हम आगे बढ़ेंगे और अब सुनेंगे एक और हितग्राही की सफलता की कहानी।
6: सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं आपका भाई मत्स्य पालक कैलाश नारायण जाट, ग्राम रिछाड़िया कदीम, तहसील भेरुंदा का निवासी हूँ, जिला सीहोर। मैं पिछले 4 वर्षों से मत्स्य पालन का कार्य सफलतापूर्वक कर रहा हूँ। मुझे प्रधानमंत्री संपदा योजना अंतर्गत अनुदान भी प्रदान किया गया। इस विषय में आप सभी किसान भाइयों से इस व्यवसाय के बारे में अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मुझे इन 4 वर्षों में यह अनुभव किया है कि किसान के लिए मत्स्य पालन एक अच्छा व्यवसाय है। मैंने जब शुरुआत की थी तब 0.5 एकड़ से की थी, वही आज मैं 10 एकड़ में मत्स्य पालन का कार्य कर रहा हूँ। इन 4 वर्षों में मैंने IMC, पंगेशियस, चीतल, कॉमन कार्प प्रजाति की मछलियों का पालन किया है। 10 तालाब हैं, 2 नर्सरी में मैं मत्स्य पालन का कार्य कुशलता पूर्वक कर रहा हूँ। मैं सभी किसान भाइयों से कहूंगा कि अच्छी आमदनी के लिए मत्स्य पालन का व्यवसाय करें, लेकिन आज के समय में महंगाई में जो है किसानों के लिए इससे अच्छा कोई व्यवसाय नहीं है। सहूलियत मिलती है, सारे लोग हमारी मदद करते हैं। अच्छी आमदनी के लिए हम लोगों को ये कार्य करने में बड़ा समय भी बचता है, 6 माह का ये कार्य है। आप लोग किसी भी अनुभवी मत्स्य पालक से जानकारी हासिल कर बड़ी सफलता पूर्वक मत्स्य पालन कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। सभी किसान भाइयों को राम राम।
4: किसान भाइयों, अभी हमने मत्स्य उद्योग से जुड़कर वहाँ की नीतियाँ समझी और इस कार्यक्रम को आप सभी श्रोताओं के लिए एक स्थल रिकॉर्डिंग के रूप में तैयार किया। अब आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो सखी अंशु तिलठे को। नमस्कार।
0: भैया बहनों, अब बातें बहुत हो गई तो चलो करत हैं मनोरंजन और सुनत हैं एक मधुर लोकगीत।

0: भैया बहनों, अब कछु मौसम की जानकारी ले लें। इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से तेज बरसात होवे को सिलसिला चलत रहे है। सोमा किसान भैया बहनों से जा अपील करी जा रही है कि वे अपने खेतों की निगरानी करें। जल भराव की स्थिति में खेतन की मेड़ों में जगह बना लें जिससे कि पानी निकल सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि खेतों में जो फसलें हैं उन पे ध्यान दें। बरसात होवे से फसलन में जड़ गलन की समस्या ना हो, ये बात को ध्यान रखें। और भुंसारू और संजा बिरिया आप मेड़ पे धुआं करें जिससे कि फसलें बची रहें। तो जाहती आज की मौसम की जानकारी। आपको आज को कार्यक्रम कैसो लगो और हमें का कछु नव अपने कार्यक्रम में करने चाहिए, आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पतो लिख लें, किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। भैया बहनों, अब ले रहे हैं आप लोगन से विदा। आप सबको ये चलती विरिया अमृता बहन की राम राम।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: उतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अब पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुनवाने के लिए चलिए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: Terms of not only you know the statistics but also keeping in view the recent form, India routed their opponents in this tournament so far. They defeated Thailand by 94 runs. They went on to defeat Hong Kong, China by 137 runs, and then they beat Pakistan by 7 wickets. Remember, Pakistan were all out 55, and the Indian team as a bowling unit has been extremely impressive. Well, if there was any blemish, if there has been some vulnerability shown, well, then it was in the batting, as we have seen a couple of mini collapses, one against Thailand and one against Pakistan. Three wickets falling, and against Thailand also there were a few wickets in the middle order. So that has been the only vulnerability shown by the Indians. Otherwise, well, it has been a clinical performance so far by Harmanpreet Kaur and company.
2: बिल्कुल, और उसी अनबीटन रन को इस एडिशन के अंदर जारी रखना चाहेगी ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम। वहीं आप जब बांग्लादेश की टीम की बात करते हैं इस कॉन्टेस्ट के अंदर, तो उनकी कहानी किस प्रकार की रही है उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला मुकाबला जो आपने खेला इंडोनेशिया के खिलाफ, उसके अंदर आपको जीत मिली 71 रनों से, लेकिन उसके बाद जब श्रीलंका को खेले तो 4 विकेट से हार मिली थी, और उसके बाद आखिरी मुकाबला जब आपने यूएई की वुमेन्स टीम के खिलाफ खेला तो वहाँ पर बांग्लादेश को उस मैच में 34 रनों से जीत हासिल हुई थी। तो सेकेंड प्लेस टीम रहे थे ग्रुप बी के अंदर बांग्लादेश की टीम। श्रीलंका ने ग्रुप बी को टॉप किया था, इसलिए श्रीलंका का वो सेमीफाइनल मुकाबला होगा पाकिस्तान से, और वो मुकाबला है सेकंड सेमीफाइनल, क्योंकि वो सेकंड प्लेस टीम रही थी पाकिस्तान ग्रुप ए की, तो वन प्लेस टू, और इसी वजह से ग्रुप ए की टॉप रैंक टीम भारत, उनका सामना आज बांग्लादेश की टीम के साथ हो रहा है इस मुकाबले के अंदर। मरूफा अख्तर के हाथ में है गेंद, 50 मैचेस खेले उन्होंने अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में, 43 विकेट उनके नाम है। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का जो प्रदर्शन रहा है उनका, वो 3 विकेट 21 रन देकर उनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है किसी मैच में, वो गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी। और ये शायद बांग्लादेश की टीम का मजबूत पक्ष है, जिस तरह से वो गेंदबाजी करने की क्षमता रखती हैं, अगर शुरुआती विकेट्स निकालने में कामयाब रहीं तो शायद मुश्किल में डाल सकती हैं भारतीय बैटर्स को। पहली गेंद इस मुकाबले की, स्विंग मिलता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट, मध्यम तेज गति की स्विंग गेंदबाज हैं मरूफा, और गेंद स्विंग करती हुई आई स्मृति मंदना की ओर, पुश किया स्मृति मंदना ने, मिड ऑफ की दिशा में सिंगल ले लिया है, तो खाता स्मृति मंदना का भी खुलता हुआ और भारतीय टीम का भी खुलता हुआ। पहली गेंद पर एक बिना नुकसान।
1: Yes, Marufa has been the most successful bowler for Bangladesh. She has pace and she has variation. She has a swing, as you have just referred to. Marufa Akhtar has taken 7 wickets so far, and she is at number 3 in the wicket takers list.
2: अगली गेंद मरूफा की, इस बार शिफाली वर्मा जो कि दूसरी ओपनिंग बैटर हैं भारतीय टीम के लिए, ड्राइव किया उन्होंने मिड ऑफ की दिशा में, रन नहीं आएगा, सीधा मिड ऑफ की फील्डर की ओर ये शॉट खेला, इसलिए रन लेने का वहां मौका था नहीं, सोच जरूर थी पर सिंगल मिला नहीं, पर अच्छा स्विंग प्राप्त करती हुई मरूफा नई गेंद के साथ।
1: Yes, absolutely. And she has undone most of the batters with that swing as well, Marufa Akhtar.
2: जल्दी से आपको एक बात और बता दें कि दोनों ही टीम्स इस मुकाबले में अनचेंज्ड 11 के साथ उतरती हुई। अगली गेंद इस बीच मरूफा की, और इस बार गेंद को थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश दाएं हाथ की बैटर के लिए, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे भी रही, इतना ज्यादा उछाल नहीं था, और कीपर को मुश्किल हुई कलेक्ट करने में, सेकेंड बाउंस पे कीपर तक वो गेंद पहुंची है, पर हल्की सी सीम मूवमेंट, इस बार बाहर की तरफ गेंद को निकाला।
1: The ball to swing quite consistently, Marufa Akhtar. She took two wickets in the first match, 3 in the second, and 2 in the third against UAE.
2: Shefali strike par agli gain, ek in swinger andar ki taraf aati hui right-hander batter ke liye, इसको टर्न करने की कोशिश मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद और एक और डॉट डिलीवरी, तो अब बैक टू बैक तीन डॉट डिलीवरीज खेल ली हैं शेफाली वर्मा ने। और थोड़ा सा दबाव क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, इस वजह से एक अटैकिंग आक्रामक खिलाड़ी हैं शेफाली वर्मा, बल्ला चला के खेलना पसंद करती हैं, थोड़ा सा दबाव इन पे बनेगा।
1: And in the last match, she started with a six against Pakistan.
2: Release shot क्या आ रहा है? लग रहा है ऐसा बड़े shot की सोच होगी जरूर शेफाली की। अगली गेंद बाहरी किनारा, slip में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, third पे fielder जरूर die.

0: लगा कि अपनी बाई और उन्होंने बाउंड्री तो बचाई है, लेकिन इस बीच बैटर्स के पास इतना समय जरूर कि वो दो रन पूरे कर सकें। शेफाली वर्मा का खाता खुल गया इन दो रनों के साथ और भारतीय टीम का स्कोर अब 3 बिना नुकसान 5 गेंदों के बाद।
1: So lucky runs there for Shefali Verma. The ball was about to race towards the boundary, but ultimately just inside the boundary, the third man fielder did well to stop the ball.
0: Acha diving effort tha wo boundary rope pe, wideish third pe boundary rider tainat. Yaad rakhiye ki power play chal raha hai pehle 6 overs, yani keval do khiladi us 25 gaz ke ghere mein. Women's cricket ke andar men's cricket ki tarah hai, wo 30 गज का घेरा नहीं बल्कि 25 गज का घेरा होता है, तो दो फील्डर्स बाउंड्री के ऊपर उस घेरे के बाहर। पैड लाइन पर अगली गेंद, शॉर्ट फाइन सर्कल के अंदर, बीट कर दिया उस फील्डर को, 4 रन मिलेंगे शफाली को। ये 4 रन भारत के खाते में जुड़ते हुए और इन 4 रनों के साथ पहले ओवर की हुई है समाप्ति 7 बिना नुकसान पहले ओवर के बाद।
1: सो दैट वाज नॉट द बेस्ट ऑफ डिलीवरीज फ्रॉम मारूफा, स्ट्रेइंग डाउन द लेग साइड and asking for trouble, and Shefali Verma just pouncing on that and getting a boundary. So that's the first boundary for the Indian team, and that will release the pressure to some extent on the batters.
0: Jahan 50th T20 antarrashtriya mukabla khel rahi hai Marufa Akhtar, to dilchasp rahega ki विकेट्स की लय जल्दी पकड़ लें तो बेहतर रहेगा उनके लिए भी और बांग्लादेश की टीम के लिए भी, लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि 7 रन स्कोरबोर्ड पर पहले ओवर के बाद शिफाली और स्मृति मंदना के बल्ले से रन्स निकले, यही उम्मीद रहेगी सेमीफाइनल में जीत आए। पहले तो बड़ा स्कोर आए स्कोरबोर्ड पर, इसी की सोच रहने वाली है।
1: And now it's Sultana Khatun now bowling to Smriti Mandhana, and this time it was on the midland leg, and Smriti Mandhana flicks it towards square leg and gets an easy single. So first run and the first ball of the second over.
0: Yeah, because a left-handed batter Niladri crease par hai na, isi wajah se aapne ye soch rakhi ki ek off spinner ko laga dein us left-handed batter ke samne, soch rahegi ki gain turn karke bahar niklega, par Smriti Mandhana बहुत समझ बूझ के साथ वो सिंगल ले लिया है। अब शेफाली वर्मा स्ट्राइक पर हैं, ये दिलचस्प मैचअप रहेगा।
1: Absolutely, this time just a bit short and Shefali rocking to the back foot but can't pierce the infield there. 1, 2, 3, 4, 5 fielders manning the offside and it has been fielded by the point fielder over there and no run for that. So Shefali will be eyeing for a big shot as Sultana comes in, and this time Shefali goes over the top, over the bowler's head. That's very high. Did she clear? No, she didn't. Oh my goodness, she has been dropped in the long on just inside the boundary. And everything's happening here. So a first opportunity for Bangladesh goes a-begging.
0: सुल्ताना ने यहाँ पे ललचाया था शेफाली को एक बड़ा शॉट खेलने के लिए, गेंद की पिच तक नहीं पहुंची, उठाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश, फील्डर मौजूद थी बाउंड्री पे और फहीमा के द्वारा ये कैच जो कि लिया जाना चाहिए था वो कैच छूटा है और एक बाउंड्री चेक भी किया जाता हुआ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि क्या गेंद कहीं उनके हाथों से जब छिटकी है तो कहीं बाउंड्री कुशन को तो नहीं छू गई, जिन्हें ऐसा हुआ नहीं। अंत में केवल सिंगल शेफाली के नाम आया, पर दिलचस्प मुकाबला। अगली गेंद डॉट बॉल स्मृति मंदना के खिलाफ, तो बहुत कुछ घटता हुआ पहली 3-4 गेंदों में इस ओवर की।
1: एब्सोल्युटली, सो इट्स अ गुड कॉन्टेस्ट एंड नेक्स्ट डिलीवरी जस्ट अ बिट शॉर्ट एंड स्मृति मंदना प्लेज इट डिफेंसिवली टुवर्ड्स मिड ऑन एंड द बॉलर विल फील्ड इन हर फॉलो थ्रू। सुल्ताना खातून missed the first match against Indonesia, got one wicket against Sri Lanka and another one against UAE. The next delivery and Smriti Mandhana this time goes for a big one but mistimes it completely, and this time she is taken in the mid-on region. So Smriti Mandhana goes, the first wicket for India falls and Smriti Mandhana goes scoring only 2 runs. So both the Bangladeshi bowlers have been very tight with their length
0: and the Indians trying to accelerate. Shefali Verma is keeping, but this time Shruti Mandhana doesn't have the good luck. She has been caught. That was a well-judged catch in the mid-on area, and Shruti Mandhana's innings comes to an end.
2: Yeah, two runs banakar Shruti Mandhana catch out hui. Shorna ne liya wo catch mid-on pe, aur Sultana ke naam safalta unke over ki aakhri gain par. Shruti Mandhana ko 66 run aur chahiye the leading run getter banne ke liye T20I cricket ke andar. Susie Bates ke naam wo record hai, lekin aaj mauka tha Shruti Mandhana ke paas us record ko apne naam karne ka. लेकिन दो रन बनाकर हो गए हैं आउट. ये आंकड़े जो हैं, दिलचस्प स्टैट्स जो हैं आपकी तरफ आ रहे हैं कर्टसी मनोज कुमार जो हमारे स्टैटिस्टिशियन हैं आज के इस मुकाबले के लिए. पर फिलहाल तो वह किफायती ओवर अंत में बनता हुआ केवल दो रन दिए. एक सफलता भी अपने नाम रही वहां पर गेंदबाजी करते हुए सुल्ताना के नाम. हमारे इस मुकाबले के स्कोरर भगवत सिंह रावत ये सारे नंबर्स हम तक पहुंचाते हुए दो ओवर के बाद 9 रन स्कोरबोर्ड पे एक विकेट के नुकसान पे. नई बैटर प्रतिका, लेकिन फिलहाल जो ओवर की शुरुआत हुई है स्ट्राइक पर शिफाली वर्मा. मरूफा अपने दूसरे और पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत करते हुए पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में. 4 रन आएंगे शिफाली वर्मा के नाम. कोई वहां पे संदेह नहीं था उस शॉट को खेलते हुए. लेंथ को बहुत जल्दी पकड़ा, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और उस पे किया बड़ा प्रहार मिड विकेट के क्षेत्र में. 4 रन अपने नाम किए.
1: सो इमीडिएटली आफ्टर अ विकेट फॉल्स शिफाली वर्मा गोज फॉर अ पुल शॉट. दिस इज व्हाट कॉन्फिडेंस इज एंड शी हैज मेड लवली कांटेक्ट एंड गेट्स
3: 420 दोस्त
4: श्रीधरन मैं आप लोगों से मिलकर यहां आ गया. यहां से हम दोनों को बाजार जाना था. चलते चलते चाय पीने बैठ गए तो ना जाने एक मॉडल टाइप की कौन सी लड़की थी वो मेरे पास आकर बैठ गई और लगी इधर उधर की बेतुकी बातें हाँकने. मैं उसे जानता तक नहीं, पहचानता भी नहीं. बस उसी बात को लेकर ममता बिगड़ रही है.
5: रेखा अब आ भी जाओ ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 10 वर्षों के वैवाहिक संबंधों में दरार आ जाए.
3: भाई बंधु जी ने सोचा शायद यही मुबारकबाद कहना जानते हैं.
4: ममता ममता देखा मैंने कहा था ना कि ये मुझे मिसेस श्रीधरन ही लगती हैं. बदले हुए कपड़ों में मैं पूरी तरह से पहचान नहीं पाया था.
5: तुम भी तो सड़क पर चलते चलते हम दोनों के बीच में संदेह के बीज बो आए थे.
3: और अगर चंदन भाई ना आते तो हमारा वही युद्ध छिड़ जाता, इसलिए बंधु भाई को सबक सिखाना जरूरी था.
5: मेरा ख्याल बंधु जी आइंदा के लिए तुम शंका के बीज बोने की हरकत नहीं करोगे.
4: अरे बाबा कभी नहीं. ममता का गुस्सा देखकर तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई. मैं बखूबी अंदाजा लगा सकता हूँ कि निष्ठावान से निष्ठावान नारी भी आशंका की कितनी जल्दी शिकार हो सकती है.
3: तो आप लाइन पे आ गए
4: हमेशा के लिए.
6: हवा महल में अभी आप सुन रहे थे झलकी मुबारकबाद. इसके लेखक और निर्देशक थे गुरमीत रामल मीत. आकाशवाणी शिमला की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है.

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चमन सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

पेश है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कमाल खान, सुजैन, सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है साजिद वाजिद का और फिल्म का नाम है वांटेड।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: दोस्तों लीजिए सुनिए अगला गीत बेनी दयाल, सुनिधि चौहान और नाजिया हसन और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अनवर खालिद ने, संगीत है बिद्दू का और फिल्म का नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत। नीरज श्रीधर अलीशा चुनौई की आवाजों में, गीतकार हैं गुलजार, संगीत है शंकर एहसान लॉय का और फिल्म का नाम है झूम बराबर झूम।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश सुनिए यो यो हनी सिंह और जैस्मिन की आवाजों में। गीतकार संगीतकार है यो यो हनी सिंह और फिल्म का नाम है किक।

0: साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में। इस गीत को लिखा है पुनीत शर्मा ने, संगीत है रोशन का, रोहन का, और फिल्म का नाम है संजू।
1: प्राण प्रिय

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहाँ बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे। महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इंप्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी कामयाब रही।

सन 1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रही है। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन 3 विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
2: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must